शुरुआत छोटी है तो क्या, इरादे बड़े होने चाहिए। चाल धीमी हो तो भी कदम रुकना नहीं चाहिए। गिरना अगर किस्मत में है तो उठने की फितरत होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, बस खुद पर यकीन होना चाहिए।

कई बार अक्सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल, पर मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों को ज़रा संभाल के रखो, हर कोशिश काम आएगी। थोड़ी देर भले ही लगे राहों में, पर मंजिल करीब आ जाएगी। इम्तिहानों की अंधेरी रात के बाद जीत की सुबह मुस्कुराएगी।

नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो

मंदिर की लहरें बताती हैं कि लौटकर फिर उठना ज़रूरी है। हर बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगाना ज़रूरी है। मुश्किलें चाहे कितनी आए, हौसला बचाना ज़रूरी है। मंजिल खुद पास आ जाएगी, बस चलते जाना ज़रूरी है।

दोस्तों, इंसान भी अगर बीते हुए कल की निराशा को छोड़कर आज की शुरुआत मुस्कान से करे तो जीवन आसान हो जाता है। जो व्यक्ति हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठता है तो उसके दिल में शिकायतों की जगह खुशियां अपने आप आ जाती हैं।

देखते ही देखते आज की ये भोर सुहाने की सुबह अपने सुनहरे रंग आपके जीवन में बिखेर गई। उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई मुस्कान और नई सफलताएं लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नए विचारों और मधुर गीतों के साथ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि तदनुसार 1 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी समाचारों के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी सुनीता चौहान।

6:45 पर श्री रामचरित मानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड। 7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर कार्यक्रम होगा आज सवेरे। देश विदेश की खबरें आप सुनेंगे हिंदी में 8:00 और अंग्रेजी में 8:15। 8:30 उर्दू में समाचार होंगे।

8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी कार्यक्रम होगा, जिसमें आप स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य, युवा वर्ग, रूट सेफ्टी जैसे विषयों पर बात सुनेंगे। प्रस्तुत करेंगी सुनीता चौहान। इसी कार्यक्रम को फिर से 9:10 पर सुनवाया जाएगा। पेश करेंगी भावना संजीवा।

सुबह 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को होस्ट करेंगी भावना संजीवा। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सैर करवाएंगे महाराष्ट्र के पर्यटक स्थल इगतपुरी की। पेश करेंगी भावना। बारह बजकर 10 मिनट पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह, पुरुषोत्तम दास जयंती और लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर चर्चा। साथ ही कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले तथ्य जरूर जांचें। अवसाद से लड़ाई में मदद का हाथ, बदलते मौसम में रखें गले का ख्याल, ऐसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रस्तुत करेंगी राधा पाठक और श्रुति पुरी। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने को हैं अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें

0: दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड। 6:11 और 58 सेकंड हुए हैं। ये समय भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का है। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

कबीरदास जी ने कहा, तू तू करता तू भया मुझ में रही न मूं, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। अर्थात भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई, अब जिधर देखूं उधर वही ईश्वर है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर और फ्रीक्वेंसी है हमारी 100.1 मेगाहर्ट्ज़। समय नोट कर लें 6:36 और 29 सेकंड शनिवार की सुबह है और भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूं आज सुनीता।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये

मान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर और अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। और अब समय हो चला है समाचार का। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब सुनेंगे आप समाचार और सुनीता एक बार फिर लौट कर आएगी यहीं FM गोल्ड पर। प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात, समय 7:10। अब सुनते हैं समाचार।

0: उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक सञ्चारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं POJK इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरानदेशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदकसंख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें

0: करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए, और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward the misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in the national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct was understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
0: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करें। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
3: Prime Minister Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram. He will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Vishakhapatnam. After concluding his visit to Andhra Pradesh, the Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Viveka Smarka. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said India urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan yesterday. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A total of 12 new Project Tide Assistance PTA projects amounting to 332 crore rupees were approved. They cover sectors such as infrastructure, healthcare, agriculture, urban amenities and disaster management. The Union Cabinet has approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision reaffirms the government's commitment to harnessing the power of sports for youth development and nation building. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching two historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first ever bronze medal in the decathlon, and booking places for 10 boxers in their respective finals. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। घड़ी मिला लीजिए 7:10:54। सावन का महीना, बारिश की फुहारें और झूलों की पींगे। ये है गोल्ड सुप्रभात, मैं हूँ सुनीता।

0: पर चल के।
1: शकील बदायूनी ने लिखा और नौशाद साहब ने राग पीलू में कंपोज किया इस गाने को। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का ये डुएट फिल्म बैजू बावरा से था। जानी मानी अदाकारा महजबीन यानी मीना कुमारी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए मिला था। जन्म हुआ 1933 में, आज ही की तारीख थी यानी 1 अगस्त। द ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ शायरा भी थी। एज चाइल्ड एक्ट्रेस शुरुआत करने के बाद 33 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और अब ये अगला गाना फिल्म पाकीज़ा से।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वैसे दिल का मौसम अच्छा हो तो हर मौसम हसीन हो जाता है। अपने सॉन्ग्स के जरिए आपके दिल के मौसम को हैप्पी हैप्पी रखने का जिम्मा लिया है हमने। वैसे बाहर का मौसम मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, तापमान मौसम विभाग के मुताबिक।

कुमार जी और प्रदीप कुमार जी पर फिल्माया गया ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और फिल्म थी बहू बेगम। और अगला जो गाना है वो है चितलकर की आवाज़ में फिल्म अलबेला से। स्क्रीन पर भगवान दादा, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज, 1 अगस्त 1913 को हुआ था उनका जन्म।

एफएम गोल्ड पर सुबह 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में आज इगतपुरी महाराष्ट्र की तस्वीर होगी और दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में मीना कुमारी जी की बातें होंगी और

थोड़ी देर बाद 8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी लेकर एक बार फिर रहूंगी मैं आपके साथ। तो फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं। आप चाहें तो भगवान दादा स्टाइल में डांस भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से मूव्स होते हैं इस गाने के, ट्राई कीजिए।

0: यही गाना था आखिरी गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पर सुनीता फिर मिलेगी आपसे म्यूजिकल दिल्ली में। अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना।

0: बहाना बहाना करुणा बहाना आज पहली तारीख है।
1: अगस्त का पहला दिन और ये दिन दस्तक देने को तैयार है मानसून जो पूरे रंग में नजर आ रहा है। और तन्वी जानते हैं इस गाने की खासियत क्या है। एक जमाने में विविध भारती पे ये गाना हर महीने

0: की पहली तारीख को चलाया करते थे, और वो इसलिए कि वो दिन थे जब पहली तारीख को तनख्वाह ठीक आपके अकाउंट में आ जाती थी, नोट आपके हाथ में होते थे। लेकिन अब वो दिन गए, क्योंकि अब बैंक आपके हाथ में है, सब कुछ आपके फोन में है, पर स्टिल ये गाना आज भी उतना ही खूबसूरत है।
1: Absolutely, such a wonderful song. And yes, today is 1st of August, the 8th month of 2026. Well, where did the 7 months go, Naveen?
0: 7 महीने चले गए, और कैसे गए नहीं पता चला। लेकिन अब ये बचे हुए जो 5 महीने हैं ना, उनको नहीं जाने दीजिएगा, और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा कि आपको लगे कि 2026 वाला साल सारी जिंदगी आपको याद रखे।
1: True, today is Saturday, a very happy Saturday, and the weekend begins with Saturday, so maybe watch a movie, just like the song says. Meet your old friends, go out for dinner, make amazing plans, try and utilize the best of each and every moment of this day, this month, and this year. And with this, let's just tell you that this is our news magazine program, Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you till 8 a.m. So be with us and enjoy everything.
0: तो अगले आधे घंटे मेरे यानी नवीन और तन्वी के साथ बिताइए। अब फिर देखिए पूरा दिन हम आपका कैसे बना देते हैं। बहरहाल नजर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
2: बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: Social media company Meta's global team, which has been summoned by the center after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithm bias and their role in public order. Official sources told Akashwani News that Meta's global team is expected to be questioned sometime in the middle of next week. Meta will be asked to clarify issues around algorithm bias, how their algorithm operates, and the company's role in public order. The team will also appear before a parliamentary panel. The move assumes significance as the government earlier this week summoned a top Meta executive after Prime Minister Modi's recent post addressing India's youth and promising stringent measures against paper leaks was briefly restricted on Facebook. While Meta attributed the incident to a technical glitch and apologized, the Ministry of Electronics and Information Technology found the explanation inadequate.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश की यात्रा करेंगे, जहां वो विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है।
1: External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. J. Shankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party.
0: अगली खबर। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं।
1: And moving into the

0: चरण जो 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा उसमें घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना का कार्य शामिल होगा। तन्वी देश दुनिया की खबरों के बाद अब बात उस चीज की जिसका सबसे इंतजार सबको रहता है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही अगर आपने आसमान नहीं देखा तो फिर क्या देखा। दिल्ली की बात करते हैं, मौसम क्या कहता है। राजधानी में बादलों का डेरा रहेगा, हल्की से मध्यम बारिश की आज संभावना व्यक्त की गई है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन द मिनिमम 28 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस।
0: वही मुंबई कहता है कि उस पर भी बादल मेहरबान रहेंगे, बारिश की फुहारें दिन को सुहाना बनाएंगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, और समुद्र किनारे जाने का मन हो तो मौसम का हाल देख कर निकले।
1: सो बेंगलुरु इज समवॉट सिमिलर टू मुंबई बिकॉज इट्स फोरकास्ट सेज जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी रीचिंग 29 डिग्री सेल्सियस।
0: अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, मानसून का असर वहां भी दिखाई देगा, बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश, अधिकतम तापमान 31 न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जनाब तीनों शहरों में मौसम का संदेश लगभग एक सा ही है, और किसी कवि ने क्या खूब कहा है, बादल भी हैं, फुहार भी हैं, मानसून का पूरा श्रृंगार भी है।
1: एब्सोल्युटली, एंड हैदराबाद ऑफ कोर्स कम्स इन द सिमिलर सिटीज बिकॉज इट्स आल्सो लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और इवन थंडर शावर्स। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 24 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज सेल्सियस।
0: तन्वी और मैं ये कहना चाहेंगे कि अगर हैदराबाद में बारिश हो रही है और बारिश का आनंद ले रहे हैं तो एक कप ईरानी चाय या फिर जाफरानी चाय इसका मजा जरूर ले लीजिए, है ना?
1: Absolutely. So everyone loves tea. Most of the Indians, they are tea lovers and not coffee lovers. except the youth, maybe.
0: और तन्वी, चाय सिर्फ चाय पीना ही नहीं होता, चाय पीना एक बहाना भी होता है।
1: True.
0: ताकि मिलकर बात कर सके, बैठ कर सके और थोड़ी सी गप्पे लगा सके।
1: I couldn't agree more.
0: और अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है, ये जानने का कि क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में। लेकिन सबसे पहले आज का दिन क्यों खास है ये बताते चलते हैं।
1: Absolutely, there are multiple days that multiple things that we are celebrating today. Today we are observing World Wide Web Day. The web has revolutionized how people interact, learn and do business, driving major advances across sectors like education, healthcare and even research. The day also serves as a reminder to reflect on the web's evolution and to advocate for its ethical, inclusive and responsible use.
0: वर्ल्ड वाइड वेब डे, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में, और इस दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्न्स ली ने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में काम करते हुए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव रखा। सर टिम बर्न्स ली का उद्देश्य सूचना का एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक आसानी से एक्सेस और शेयर कर सकें।
1: And today we are also observing World Lung Cancer Day. Of course, we both wish that nobody gets cancer, nobody gets sick ever. You all stay healthy, please eat healthy, stay healthy and live a wonderful life. But today we are observing World Lung Cancer Day for your prevention, for early detection, for research and even support for those affected. This day aims to educate the people on risk factors, their symptoms and the critical need for timely diagnosis. A key focus is dispelling myths such as the misconception that lung cancer only affects smokers. No, non-smokers can also be at risk. Recognizing symptoms early and seeking prompt medical attention can improve treatment outcomes multifold. And this year's theme of World Lung Cancer Day is Stronger Together, United for Lung Cancer Awareness.
0: ये एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है, और आज का दिन फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए मनाया जाता है। हर साल लगभग 25 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिसमें से 7

0: 70-80% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। और आज है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चे के जन्म के बाद के 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग करने की सलाह दी जाती है। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत जरूरी है।
1: Absolutely, this is not just a day, but it's an entire week. If we talk about the theme for this year, it's the global campaign focuses on the theme breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works, highlights the nutrition, food security and poverty reduction. Focus on the campaign and goals dates.
0: और तन्वी, अब बातें आज के इतिहास की। कैलेंडर की हर तारीख सिर्फ एक दिन नहीं होती, बल्कि अपने भीतर इतिहास के अनगिनत किस्से समेटे होती है। सबसे पहले बात सन 1920 की। देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का असंतोष बढ़ रहा था, और ऐसे समय में आज ही के दिन सन 1920 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया।
1: Let's go a little back. In 1498, during his third voyage to the New World, Christopher Columbus became the first European to visit what is now Venezuela. And if we talk about 1914, on this particular day, Germany declared war on Russia, marking the beginning of the First World War. And in 1916, Annie Besant, in cooperation with Bal Gangadhar Tilak, started the Home Rule League movement with Dadabhai Naurokhji as its president.
0: आज के दिन सन 1831 में भारत में आधुनिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, तब उसे कलकत्ता कहा जाता था। और आज के दिन 1957 में NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई।
1: In the year 1958, Raman Magsaysay Award for Community Leadership was given to Acharya Bhave.
0: अब रुक करते हैं विश्व इतिहास की ओर। 1 अगस्त 1914, यूरोप में तनाव अपने चरम पर था, और इसी दिन जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और देखते ही देखते प्रथम विश्व युद्ध की आग पूरे यूरोप में फैल गई।
1: And if we talk about the year 1981, MTV, the first 24-hour music television network, was launched. Naveen, let me ask you, do you remember MTV and their VJs and the music that they used to play?
0: Tanvi, ek zamana tha jab TV ko kholte hi, jab channelon ki bharmar dheere dheere aani shuru hui thi, to music television yani MTV ek hi aisa source of entertainment tha jahan hame thoda sa kuch hatke milta tha. Aur ya yun kahe ki aaj ke jo Gen Z hai, उस समय की जो जेंजी थी वो MTV देखा करती थी।
1: Absolutely true. And along with MTV, I can also remember VTV that came later. And if we talk about the year 1996, George R.R. Martin published the epic fantasy novel A Game of Thrones, the first installment in his A Song of Ice and Fire series.
0: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को। सबसे पहले बात पुण्यतिथि की। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक नारे ने पूरे हिंदुस्तान में आजादी की आग फूंक दी थी। बाल गंगाधर तिलक, आज उनकी पुण्यतिथि है।
1: Today is his death anniversary, like you said, Naveen, an Indian nationalist and self-rule activist in the Indian independence movement. And before we talk about anything about him, let's know more about him through this particular clip taken from a documentary from Prasar Bharati archives. Let's play that.
2: बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आत्मा का तेज आज भी स्वतंत्र भारत के हृदय में जगमगा रहा है, उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें विद्यार्थी देशभक्त बने। उनका साथ दिया उनके पुराने मित्र आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और नाम जोशी ने। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज बना। लेकिन थोड़ी समय बाद तिलक ने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें डर था कि अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण संस्थाओं की स्वतंत्र भावना का नाश कर देगा। उन्होंने अपने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का काम संभाला। तिलक की जोरदार लेखनी ने अत्याचार की तलवार से लोहा लिया। उनके शब्दों ने देशवासियों को सदियों की नींद से जगाया।
0: आज ही के दिन 1913 में हिंदी के पहले तिलस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री जी का भी निधन हुआ था। और तन्वी, चंद्रकांता एक ऐसा महान उपन्यास है जिसे कोई नहीं भूल सकता, और कहते हैं कि उस समय लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। वो इसलिए सीखी थी क्योंकि ये वो उपन्यास था जिसमें तिलस्म था, जिसमें जादू था, जिसमें जादुई किले थे, और बहुत कुछ ऐसा था कि वो 90s का जो दौर था ना, उसमें टीवी खोलते ही हर कोई पहले चंद्रकांता ही देखने की कोशिश करता था।

0: such a magnificent actress, Meena Kumari. And yes, her acting was so real, so touching that we still can relate with her acting and her performance. Moving further in our list, today is the birthday of Tapsee Pannu, an Indian actress who primarily works in Hindi, Telugu and even Tamil films. I'm sure you must have seen her in movies like Baby, Pink, Thappad, Manmarziya, Mulk, The Ghazi Attack, Mission Mangal and Rashmi Rocket and even Donkey. So let's just hear one of the very strong dialogues of hers from the film Thappad.
1: खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं. हाउसवाइफ हूँ, चॉइस थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था. कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट खुश थी उसके ड्रीम्स में, उसकी लाइफ में पार्टिसिपेट करके. तो शायद इस सब में ने आपको ऐसा बना लिया जिसको थप्पड़ मारा जा सकता होगा. ये अनरीजनेबल नहीं है, नहीं मार सकता. जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता.
2: तुम क्या चाहती हो?
1: खुश रहना चाहती हूँ. जब बोलूँ कि खुश हूँ तो झूठ ना लगे.
0: And moving further, today is also the birthday of another film actress, Mrunal Thakur, who works predominantly in Hindi and even Telugu films. So you have seen Super 30, where she

0: तन्वी, जब भी बॉलीवुड में डांस की बात होती है तो हमारे दिमाग में ऋतिक रोशन, गोविंद या मिथुन चक्रवर्ती का नाम आता है। लेकिन जानते हैं हिंदी सिनेमा का सबसे पहला डांसिंग सुपरस्टार कौन था?
1: कौन?
0: भगवान दादा। एक ऐसा शख्स जिनकी अनोखी डांस स्टेप को अमिताभ से लेकर सुल्तान, सलमान खान सब ने कॉपी किया, और जब भी गाना बजता था ना तो लोग झूम उठते थे।

भगवान दादा का जन्म आज के दिन बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। असली नाम था भगवान आभाजी पल्लव। फिल्मों में आने से पहले कपड़ा मिल में काम किया, शादियों में खाना खाया और यहाँ तक कि मजदूरी भी की, लेकिन उनका दिल सिनेमा के लिए धड़कता था। साइलेंट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया और तन्वी जानती है उनकी किस्मत पलटी सन 1951 में, जब राज कपूर के कहने पर उन्होंने एक फिल्म बनाई अलबेला, और इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, ओ बेटा जी।

दोस्तों, ये गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था बल्कि खुद भगवान दादा की जिंदगी का सच बन गया था। लेकिन उनकी फिल्म का वो गीत जिसे सुने बिना या जिस पे थिर के बिना हम उन्हें नहीं भूल सकते, वो है कुछ यूं, शोला जो भड़के।

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मुझे नवीन और तनवीन को दे इजाजत।
1: हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने

0: वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
2: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while

0: Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, South Interior Karnataka, Konkan, Goa, Kerala and Mahe today. The IMD has also predicted heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and some parts of Northeast India. The weather agency has forecast thunderstorm accompanied by lightning over Gujarat, Chhattisgarh, Vidarbh, Assam and Tripura for today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Naresh. Newspapers have prominently covered Prime Minister Modi's video message on their front pages. PM, I forgive children who abused me. Let's show them the way. Headlines, The Indian Express. Pak forces target women, kids in PUK. India calls for global scrutiny. 40 killed in stir since July 27, says The Asian Age. Life term for Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case is a top headline in The Pioneer. The Tribune under the headline, uniform was soaked in blood. Cops skin recount trauma after CJP protest violence. Reports that the family members of police personnel injured during the violence at the CJP protest have shared their ordeal and sought justice. In its editorial, How Apps Have Built the Modern Consumer, the Financial Express writes that modern life has a way of creating inconveniences out of the conveniences it promises. The paper says that they promise a user-friendly interface but become a surprisingly accurate portrait of their owners. The paper concludes that what began as an alternative to the website has evolved into a system of hyper-personalized nudges, inducements and playful jabs on our phones. A top headline in The Hindu says, Trump touts Gaza deal. Hamas seeks Israeli exit, saying Hamas acknowledges the deal only if Israel withdraws the troops and stops killing Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper league bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जम्हूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमलों से गुरेज करे। इटली ने सियूटा माइग्रेंट्स बहरान के मामले पर खुली सरहद के रास्ते आने जाने की सहूलत मुअत्तल कर दी है। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत ने जूडो में सोने के दो तमगे जीते हैं, जो एक तारीख है। भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थोलॉन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराहकुन नौजवानों के तई हमदर्दी अख्तियार करने की अपील की है जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर

0: नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाक़े का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालिम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाक़ात का नज़ारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इम्तिहानात के 2026 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त तर सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निज़ाम में कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में विजय नगरम जिले के भोगापुरम इलाके में अल्लूरी सीतारामा राजू बैन-उल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 18,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शहर मैसूर में नौजवानों के स्वामी विवेकानंद सकाफती मरकज विवेकानंद स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। ये मकाम भारत के सबसे अजीम रूहानी रहनुमाओं में शामिल स्वामी विवेकानंद के तारीखी दौरे की यादगार है, जो उन्होंने 1982 में किया था जो उन्होंने 1892 में किया था। इस दौरे में वो मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मिले थे और उन्हें महाराजा श्री चमाराजेंद्रा वडियार के हाथों माली मदद हासिल हुई थी। ये माली मदद शिकागो में मजहबों की पार्लियामेंट में शिरकत के मकसद से अमरीका जाने के लिए दी गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: विवेक स्मारक का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के हाथों आज मैसूर में किया जाएगा। ये यादगारी मकाम स्वामी विवेकानंद की तालीमात और फलसफे को फरोग देने के लिए है। 75,300 मुरबा फुट के रकबे पर 4D तजर्बेगाह, नुमाइश हॉल, एम्फीथिएटर, क्लासरूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और एक मेडिटेशन और योग हॉल कायम किया गया है। बेंगलुरु से सुधीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: मरकजी काबीना ने तौसीशुदा खेलो इंडिया स्कीम और कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन ANSFS की इमदाद में इजाफे को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर में स्पोर्ट्स की ताकत को मनवाने के तई हुकूमत के अज़्म का इआदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सभी नौजवानों की सलाहियत को बेहतर से बेहतर बनाने और इसके लिए वाज़ेह राह हमवार करने को यकीनी बनाया जा सकेगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि इस स्कीम से पूरे मुल्क में समाज की बिल्कुल निचली सतह से टारगेट पोडियम ओलंपिक स्कीम की सतह तक हर तरबियती मरकज कायम करने में मदद मिलेगी। मगरबी बंगाल में आज से मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो रहा है, जो 2 मरहलों में डिजिटल तौर पर किया जाएगा। इस मशक का मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुक्ते नजर के जरिए अपडेट शुदा आबादियाती डेटा इकट्ठा करना है, जिसमें रियासत भर में जामे कवरेज को यकीनी बनाने के लिए 2 मरहले के अमल को डिजाइन किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: पहले मरहले में मगरबी बंगाल के बाशिंदे मर्दमशुमारी के सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी तफसीलात जमा करके आज से 15 अगस्त तक खुद की गिनती के अमल को ऑनलाइन तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। इसका दूसरा मरहला 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान मर्दमशुमारी करने वाले अहलकार घरों की फहरिस्त और इब्तदाई गिनती के लिए घर घर जाएंगे। आखिरी मरहला آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا، جب مردم شماری کرنے والے اہلکار ہر گھر کے فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کریں گے، جس میں نام، عمر، جنس، ذات اور مذہب کی بنیاد پر آبادی کا حقیقی طور پر اندراج ہوگا۔ کولکاتہ سے

0: संदीपोन दास गुप्ता और श्यामलाल गोस्वामी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात पाकिस्तानी इंतजामिया को शर्मनाक तरीके से मुस्तरद करने के मुदरातिफ हैं। नई दिल्ली में नामा नगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी इंतजामिया कश्मीर के अपने जेर कब्जा इलाके में पुरअमन शहरियों के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा 40 से ज्यादा शहरियों की अलमनाक मौत और बहुत सों के जख्मी हो जाने की शक्ल में बरामद हुआ है। रूसी फौज में भारतीय शहरियों के बारे में तर्जमान ने कहा कि रूसी फौज में बखिया भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए भारत रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से अभी तक 139 भारतीय शहरी रिहा कराए जा चुके हैं। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ते की बहाली होगी। तिजारत की बहाली से 6 साल तत्तुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तिजारत की बहाली से सरहद पार तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम अपने ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची से बात की और मगरबी एशिया खित्ते में जारी कशीदगी पर भारत की गहरी तशवीश का इजहार किया। फोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरतहाल में तजारती जहाजरानी और समंदरी अमले पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी फरीक की जानिब से किए गए इस तरह के किसी भी हमले की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मौजूदा वाकयात और जारी बातचीत के ताल्लुक से ईरान के मौकिफ से भी रोशनास कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बातचीत और सिफारतकारी की तायीद करता है। इटली ने स्पेन के साथ खुली सरहद के रास्ते सफर की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है, क्योंकि मराकश की जानिब से स्पेन के सियूटा इलाके में आने वाले माइग्रेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था। इस कदम से परवाजों और समंदरी ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। नेज स्पेन के शेंचिंग खुली सरहद के सफर की सहूलत पर असर पड़ेगा, जिसे हाल ही में मुअत्तल किया गया है। अभी तक इस सहूलत के तहत लोग 29 यूरोपीय मुल्कों में आजादाना तौर पर आमदोरफ्त करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म एंड्री बर्नमैन से बातचीत की और ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातचीत में टेक्नोलॉजी इख्तरा, दिफा, सलामती, साफ सुथरी तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के रिश्तों ने इस भारत बरतानिया जामे अहम शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ममालिक भारत और बरतानिया के अवाम की खुशहाली और तंदुरुस्ती के मकसद से तिजारत और सरमायाकारी के उन मौकों को भी पूरी तरह फरोग देंगे, जो भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर हाल ही में अमल दरामद से पैदा हुए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, बिहार, जेली, हिमालयी मगरबी, बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल भारत ने फिर से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने जूडो में सोने के 2 तारीखी तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भी 2 यादगार तमगे हासिल किए हैं, जबकि डेक्थलॉन में उसने अब तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। नेज 10 मुक्केबाजों ने अपने मुतअल्लिका जुमरों में फाइनल्स में जगह बनाई है। सरे 10 भारत सोने के 5, चांदी के 12 और कांसे के 6 तमगों के साथ कुल 23 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में 10वें मकाम पर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अपना 2 रोज़ा भूटान का सरकारी दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दौरान जनाब मिस्री ने भूटान के 13वें पंज साला मनसूबे के लिए 5वीं भारत भूटान तरक्याती ताबुन मुजाकरात की मुश्तरका सदारत की। 5वें मनसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंज साला मनसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये की इमदाद की मजमू पेशरफ्त और अमल आवरी का जायजा लिया। मजमू तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मनसूबों के लिए माली ताबुन से मुतालिक 332 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, ज़रात, शहरी सहूलियात और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा کی عالمی ٹیم جسے وزیراعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ پر بندش لگائے جانے کے بعد مرکز نے طلب کیا ہے اس نے الگور

8:45 और 50 सेकंड आपकी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट का स्वाद बढ़ाने के लिए एवरग्रीन मेलेडीज होती हैं यही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिकल दिल्ली की शुरुआत 1 अगस्त 1910 को जन्मे शायर एनएम राशिद साहब के शेर के साथ की, हसरत इंतजार यार न पूछ, हसरत इंतजार यार न पूछ, हाय वो शिद्दत इंतजार न पूछ, मैं हूं ना आशनाए वसल हुनूज, मैं हूं ना आशनाए वसल हुनूज, मुझसे कैफिए विसाले यार ना पूछ। सुनीता है आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी में।

1988 की वारिस। सॉन्ग से जुड़ी इस जानकारी के अलावा एक और इन्फो जो मेरे पास है वो जुड़ी है आपके इंटरनेट सर्फिंग से। जी हाँ, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, आप डालते हैं www। आज इसी का दिन है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसे क्रिएट किया था सर टीम बर्नर्स ली ने। और अब मैं

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये फिल्म थी सीता और गीता और ये आवाजें आशा भोंसले और किशोर दा की। अब देखिए ना, ये गाना था हमारी इस सेगमेंट का आखिरी गाना और अब म्यूजिकल दिल्ली यहीं छोड़कर मैं जा रही हूँ सुनीता अगले शनिवार मिलने के वादे के साथ। फिलहाल समय हो चला है समाचार का, तो आप जानिए देश दुनिया का हाल और बस ये जो मुस्कुराहट है ना इसे यूं ही बरकरार रखिए। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, हंसते रहिए, खुशियां बांटते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे है, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे।

श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में यामिनी को बधाई देते हुए कहा कि जूडो के प्रति यामिनी का जुनून उनके प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से झलका। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

हमने बुलाया और आप आए। 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी का ये प्रोग्राम शुरू होता है और आप एकदम अपने रेडियो सेट के साथ सट के बैठ जाते हैं। एकदम यही मोहब्बत की पहचान है। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती। मोहब्बत की कोई रूपरेखा नहीं होती, किसी को चाहने की इंतहा नहीं होती। ये तो बस एहसास है दो दिलों के दरमियाँ, इसके अलावा इश्क की कोई परिभाषा नहीं होती।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हुजूरे वाला बात धीरे से भी कही जाए तो भी दिल तक पहुंच ही जाती है। जो दिल के करीब होते हैं वो दिल में धड़कते हैं, और हमारा फर्ज है कि हम भी हमेशा उनका और अपना ख्याल रखें उनके लिए। सड़क पर चलते वक्त सड़क के नियमों का पालन करें और सदैव सुरक्षित रहें। कभी भी बेवजह गाड़ी का हॉर्न ना बजाएं। कुछ लोग मजाक करने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए या फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेवजह हॉर्न बजाते हैं जोर शोर से। ऐसा करना गलत है। सड़क पर चलते वक्त ऐसा करना, ऐसी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। सड़क से जाइए मगर संभल कर।

हम बहुत सारे नियमों का पालन भी करते हैं और सड़क पर बिल्कुल संभल कर चलते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी दुर्घटना घट जाती है और ऐसे में फिर अपनी और अपने परिवार की चिंता होना तो बहुत ही लाजमी सी बात है। लेकिन इसमें हमारा साथ देता है हमारा बीमा। अलग अलग तरह की योजनाएं चलती हैं बीमा की, जिससे अगर गलती से कभी कोई दुर्घटना किसी के जीवन में घट भी जाए तो उसको कोई असर उसका बहुत ज़्यादा उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ पाए। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर। इसके अलावा अगर कभी भी चोट लग जाए तो ओपीडी और सभी प्रकार की जांच जो है वो पूरी तरह से निशुल्क मुफ्त सरकारी और निजी अस्पतालों में। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, ये अगर सुविधा मिले तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ अगर कभी कुछ हमारे साथ हो भी गया ना तो हमें इलाज की सुविधाएं मिल जाएंगी, हमारे परिवार को उतना भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये है MMA योजना, ये जो मैंने भी बताया ना 10 लाख रुपए का

कवर है दुर्घटना बीमा का 25 लाख रुपए तक का, कैशलेस उपचार है, ओपीडी सुविधा जो है वो निशुल्क उपलब्ध है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MMA योजना, ये बहुत ही खास योजना है, राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना है और बहुत ही खास है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये इस राज्य के बाहर, राजस्थान के बाहर देश के जो दूसरे सूचीबद्ध अस्पताल हैं इस योजना के तहत, उनमें भी अगर आप इलाज करवाते हैं तो वहाँ पर भी इसका पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो इतनी खास योजनाएँ हम सब के लिए सरकार लेकर आती हैं, अलग अलग राज्यों की या केंद्रीय स्तर पर भी, ताकि हम सबको कोई गम न सताए, कोई दुर्घटना अगर घट भी जाए तो हम उससे उबर पाएं और हमारे जीवन में सदैव बहारें आती रहें और हमें कभी कोई गम न सताए।

0: हमारे जीवन में बहार आए, खुशियां आए, इन सब के लिए हमारे समाज सुधारक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बहुत योगदान दिए हैं, बहुत काम किए हैं। आज 1 अगस्त है और आज के दिन राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती हर साल मनाई जाती है। हिंदी के प्रबल समर्थक थे ये और हिंदी के उत्थान में, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत रत्न से उन्हें 1961 में सम्मानित किया गया, उनकी महान सेवाओं के लिए, देश के प्रति उनके समर्पण के लिए। संविधान सभा के सदस्य भी वो रहे और देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। उन्हें राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आज के दिन यानी 1 अगस्त को 1882 में इनका जन्म हुआ था।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 9:35 और 40 सेकंड हो गए हैं।

अंदाज में नयापन हर किसी को अच्छा लगता है। ये नयापन रोजमर्रा की जिंदगी में छोटा सा बदलाव हो सकता है, कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा नयापन जो है ना वो है कार्य प्रणाली का नयापन। यानी जो भी काम हम करते हैं डेली रूटीन में, जो हमारा काम है उसको नए नए तरीकों से करना बहुत अच्छा लगता है ये। और नई नई तकनीक, नए नए साधन अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहने चाहिए, और ऐसा करने से जीवन में नयापन आता है। हम अपने आप को स्मार्ट और आधुनिक भी बनाते हैं, और इससे हमारा दिमागी जो विकास है ना वो भी और ज़्यादा होता है, और हम दिमागी तौर पर चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ भी इससे पैदा होते हैं।

एक अगस्त है और एक अगस्त का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनके महान योगदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उनके महान

0: योगदान को याद करते हुए आज के दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा है। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी और उन्हें लाल बाल पाल इस तिकड़ी के रूप में देश में स्वदेशी और पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूत उन्होंने किया और सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
5: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
4: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
5: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
6: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार है। जब माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाती है तो आंखों में प्यार और आंसू दोनों छलक उठते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त के बीच हर साल ये मनाया जाता है। माँ और बच्चे की सेहत के लिए उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसको बताने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। माँ के दूध के फायदे क्या हैं, बच्चों की सेहत पे वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं और कितना जरूरी है माँ का दूध अपने बच्चे के लिए, ये बताने का सप्ताह है ये। और जो कामकाजी महिलाएं हैं ना, जो काम पर जाती हैं, उनको भी अपने बच्चों को स्तनपान कराने का अधिकार और सुविधाएं मिले इसके लिए भी आज का दिन मनाया जाता है। शिशु के विकास के लिए प्रोटीन जो जरूरी होता है वो माँ के दूध से उसे मिलता है। बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है जीवन भर। कहते हैं ना कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है क्या, मतलब वो ताकत जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। और प्रसव के बाद जो माँ का स्वास्थ्य है वो भी स्तनपान से सुधरता है, अच्छा होता है। इसी के बारे में बातें करने का सप्ताह मनाया जा रहा है, तो हम भी इस सप्ताह को मनाते हैं और माँ और शिशु के लिए स्तनपान कितना आवश्यक है इन सब बातों को जानते हैं, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत खास होता है।

0: इसी के साथ भावना को म्यूजिकल दिल लगी से दीजिए विदा। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू

0: रखी है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मित अडे और हर्षिंग ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. In Karnataka, Prime Minister Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka today. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and in national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of the students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. The flood situation in Odisha continues to remain critical, with hundreds of villages still marooned as several rivers

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि POJK के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारने का प्रमाण है। रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि अब तक 139 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और करीब 24 अन्य भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने लोगों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से भी सावधान रहने की सलाह दी। अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष अब तक 1260 भारतीयों को वापस भेजा गया है। पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा।

0: उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें चल रहे घटनाक्रम और चर्चाओं के संबंध में ईरान के दृष्टिकोण से भी अवगत कराया गया। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थक है। भारत और चीन के बीच आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। कोविड के कारण 2020 से दर्रे से होकर सीमा पार व्यापार निलंबित था। सीमा पार व्यापार को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पंजीकृत व्यापारियों, परिवहन संचालकों और संबंधित व्यवसायों को लाभ होगा। नाथुला के माध्यम से व्यापार 4 दशक से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिसरी भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद कल स्वदेश लौट आए। इस दौरान श्री मिसरी ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन की समग्र प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। कुल 12 नई योजनाबद्ध सहायता परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत 332 करोड़ रुपये है। एक रिपोर्ट।
1: ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शहरी सुविधाएं और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। विदेश सचिवों ने भूटान और भारत के एक्जिम बैंक के बीच अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते के बारे में भी बात की, जिसके तहत भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट को चालू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अनुसंधान और सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव मिस्त्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोगपे और विदेश व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी एन घुंगेल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश संपर्क, जन जन संबंधों के साथ साथ पारस्परिक महत्व के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार के लिए मृगनयनी पांडे।
0: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार उर्लोविच कल से 4 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मोरक्को से स्पेन के सेउटा इनक्लेव में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इटली ने स्पेन के साथ मुक्त सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे हवाई और समुद्री यातायात प्रभावित होगा और स्पेन की शेंगेन सीमा मुक्त यात्रा व्यवस्था भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इसके माध्यम से 29 यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा की जा सकती थी। एक रिपोर्ट।
2: इटली की विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इटली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए स्पेन के साथ शेंगेन समझौते का अस्थायी निलंबन आवश्यक था। ताजानी के अनुसार मोरक्को से हजारों प्रवासियों के सेउटा में प्रवेश करने के बाद ये कदम आवश्यक हो गया। उन्होंने कहा कि ये कदम यूरोपीय संघ के नियमों के अंतर्गत अनुमत है और आज से 1 महीने तक लागू रहेगा। इस बीच सेउटा से 48,000 से अधिक प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं, जहां हाल के दिनों में लगभग 60,000 लोग पहुंचे थे। स्पेन और मोरक्को ने सेउटा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी प्रवासियों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए उपायों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रैंडे मार्लस्का ने कहा कि दोनों देश स्थिति को संभालने और सीमा नियंत्रण बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
0: ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो वह पश्चिम एशिया में स्थित इसराइल के प्रमुख बुनियादी ढांचे और अमेरिका की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर संभावित नए हमलों की तैयारी के आदेश दिए हैं। रूस ने कल रात यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें 3 लोग मारे गए और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के 2 दिन बाद हुआ। इसमें 10 नागरिक मारे गए थे और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा

0: में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। टेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। New Delhi calls upon international community to hold Islamabad accountable for ruthless use of force against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Border trade between India and China through Nathula Pass to resume in Sikkim from today. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India has urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
3: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. The External Affairs Minister said in a social media post that he was also apprised of Iran's perspective of current developments and discussions which are underway. He said India is always supportive of dialogue and diplomacy. Foreign Secretary Vikram Misri concluded

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपके दिल की बात सबको बताते हैं और आपके पसंद के गाने सबको सुनवाते हैं। मैं हूं आपके साथ भावना। हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़ गए हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं जुड़े हैं, जिन्हें हमारा ईमेल आईडी या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनको बता देते हैं। fmgoldairdelhi@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। एक बार फिर fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868687 5-3। तो सबसे पहला जो हमारे पास संदेश आया है, गांधी चौक वाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार है। राजस्थान के रामदेवरा से दिनेश चौहान है, डांगरी से बाबूराम जयपाल है और खुदाबख्श है खलीफों की बावड़ी से। सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, गाना सुनना चाहते हैं ही।

0: कभी कभी।
1: धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, इनका संदेश हमें मिला है और इन्होंने आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, हमारा संदेश शामिल कर लीजिए किसी भी गीत के साथ, ऐसा लिखकर भेजा है। तो लीजिए, हमने आपका संदेश जो है वो शामिल कर लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ का पुणे महाराष्ट्र से हमारे पास संदेश आया है और भी बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हैं, कहाँ से हैं ये सब, जी जी जी जी जी, ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, इन सबका हमारे पास संदेश आया है, प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखकर भेजा है आपको भी। सुनील पाठक हैं, कमल पाठक हैं, दीपिका मल्होत्रा हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं, सुच्चा सिंह पाठक हैं, अनारकली बाजार जगराओं से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। गोयल साहब भी हैं जी, एसपी गोयल हैं, ये हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, सत्य प्रकाश सनोठिया, इन्होंने अपना नाम लिखकर भेजा है, रोहिणी दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है गोयल साहब का। इसके अलावा हमारे साथ सलीम अख्तर हैं, रेशमा बेगम हैं और जीएम यानी गुड मॉर्निंग

इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। और कहाँ से आपने? अलीगढ़ से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हमारे पास आया है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, इन सब का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये फिल्म लोफर से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
5: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
4: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
5: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। ये प्रोग्राम है दिल का मेल बॉक्स। ईमेल आईडी हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। मैं हूँ आपके साथ भावना और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं ये कौन है जी। ये होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल हैं। सचिन अमन दीपांशु खोरवाल हैं हमारे साथ। बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हैं, लेकिन पहले इनकी फरमाइश का गीत सुन लेते हैं। फिल्म का नाम मेरा साया, आवाज आशा जी की।

उग्रसेन यादव जी हैं, साथ में शकुंतला यादव है, गरिमा है। नई दिल्ली से इनका संदेश हमारे पास आया है, एक रिक्वेस्ट इन्होंने लिखकर भेजी है। मैं कोशिश करूंगी आपकी रिक्वेस्ट को प्ले करने की। इसके अलावा प्रज्ञानंद देवांगन है, नंदिनी देवांगन है, प्रकाश देवांगन है, गायत्री है, यशवर्धन है, यशस्वी है, बाघा मूड़ा, कोमा खान, छत्तीसगढ़ से इनका संदेश हमें मिला है। मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना है, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोडाना जी, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के से ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप भी हमारे साथ जुड़े हैं। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत ये सुनना चाहते हैं, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गाना लता जी की आवाज़ में।

प्रकाश गोगिया हैं और मनोहर लाल गांधी जी हैं दिल्ली से, इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा संदीप मकर जी हैं, इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा टी डी एच मोहाली ये हमें संदेश मिला है। ताज मोहम्मद जी भी हैं और इसके अलावा कौन है, ये टी डी एम मोहाली से हमारे पास टी डी मल्होत्रा जी हैं, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक हैं, अनिल शर्मा हैं, जयवीर सिंह हैं, डॉक्टर अमनदीप हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हैं मोहाली चंडीगढ़ से, इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश हैं वो हैं तुलसी मस्कीन जी का संदेश हमें मिला है, फारूक अली खान साहब का है, मुकेश कुमार जी का है, मस्कीन दादा जी हैं, इसके अलावा सतीश अनेजा जी भी हैं, बिमला अनेजा जी के साथ चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं, नवी हसन हैं, ये सहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं और सुहेल हैं, अनम हैं, यशफ अब्बासी हैं, रसीद वारसी हैं, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुमन खान भी हैं हमारे साथ ये। और इसके अलावा ये जो इनका संदेश आया था नबी हसन साहब का और उनके पूरे परिवार का, मारहरा दरवाज़ा एटा उत्तर प्रदेश से ये संदेश था हमारे पास। तो बहुत सारे हमारे सभी साथी जुड़ रहे हैं। कौशल्या देवांगन जी भी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशन लाल हैं, हेमलता डिम्पल देवांगन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब ने हमें इतना प्यार भेजा है और कोई कोई तो जादू है हमारी बातों में, ऐसा भी लिखकर भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये तो आपका प्यार है। और अब जो गीत मैं सुनवाने वाली हूँ, जिनकी फरमाइश का वो गीत है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी सुनकर। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम से भावना को दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर लेकर। भावना आपके साथ ही रहेगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे ग्लेरिज्म में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से ताजा जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य को महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह, एक नई डेस्टिनेशन लेकर चलते हैं। तो आज जहां हम जाने वाले हैं, बहुत ही खास जगह है। वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की कुछ सबसे ऊंची चोटियों से घिरा, प्रकृति के अद्भुत नजारों से सजा, प्राचीन मंदिर और किलों से युक्त इगतपुरी, महाराष्ट्र के इगतपुरी की सैर करेंगे आज। आपके साथ हूं मैं

0: चले।
1: बिल्कुल अपने कदमों के निशान बनाते हुए चलते हैं, जो भी जाते हैं इगतपुरी वो पहुंचते हैं त्रिंगलवाड़ी किला। ये जो किला है इसको 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था और कोंकण से नासिक तक जाने वाले व्यापार मार्ग की निगरानी के लिए एक निगरानी मीनार के रूप में इसे बनाया गया था। शानदार थाल घाट के पास है ये, और इस किले को ऐसा माना जाता है कि ये उन 16 किलों में से एक किला है जिसे अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित त्र्यंबक किले की हार के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। तो अंग्रेजों ने इसे कब्जे में लिया था, वो वाला किला है ये जिसे बाद में हमने अपना जो है वो छुड़वा लिया जब अंग्रेज यहाँ से चले गए। त्रिंगलवाड़ी जो किला है इसकी चढ़ाई कठिन नहीं है, मतलब लोग यहाँ पर आसानी से चढ़ सकते हैं, और रास्ते में पड़ने वाली छोटी छोटी गुफाएं जब आप देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। पांडवलेनी गुफा है जिसमें एक सभा मंडप है, हनुमान जी और ऋषभनाथ जी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार मूर्तियां हैं, और जब भी आप यहाँ पर आए त्रिंगलवाड़ी किले में तो यहाँ पर आप अपने साथ खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा ना लाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना छोटे गांव हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बहुत मतलब वेलकम करते हैं वो लोग, और बहुत अच्छे से आप वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ पे उनकी जो स्पेशल है वो ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत आनंद आएगा आपको यहाँ आकर इस किले को देखकर भी, और यहाँ की इन प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात करके भी।

खबर तो पूरी रखनी चाहिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं उसके आसपास क्या क्या है खास देखने लायक। इसका पहाड़ी इलाकों की ना एक खास बात होती है कि यहाँ पर जो मानव निर्मित संरचनाएं होती हैं, जो यहाँ के मंदिर हैं, किले हैं, दूसरी वास्तुकलाएं हैं, वो आपको और प्रकृति से जोड़ देती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक परिवेश में बनी हुई होती हैं। यहाँ का ना एक मंदिर है बहुत ही प्यारा, जिसको कई नामों से पुकारा जाता है। घाट देवी का मंदिर भी से कहा जाता है, घाटा देवी मंदिर भी कहा जाता है, और घाटान देवी का मंदिर भी इसको बोला जाता है अलग अलग तरह से। सह्याद्री पर्वतमाला की हरिहर, त्रिमुख और दुर्वार, इन चोटियों की पृष्ठभूमि में ये मंदिर जो है बहुत बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो मंदिर है ना, यहाँ की रक्षक देवी हैं घाट देवी, उनको समर्पित है। और खास बात यह है कि यहाँ चारों ओर हरियाली, सुंदर घाटी इस मंदिर को और भी ज़्यादा शांत, खूबसूरत और पवित्रता से भरा हुआ बनाती है। यहाँ पर ना जब मानसून है, जैसा कि अभी जो महीना चल रहा है, इस मौसम में खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 3 किलोमीटर दूर है ये इगतपुरी रेलवे स्टेशन से। यहाँ की सुंदरता का वर्णन करना जो है वो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि समझाना, इतनी खूबसूरती को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग यहाँ जाकर इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, ख़ासकर इस मौसम में जब हरियाली जो है अपने चरम पर है और बारिश से पूरी धरा जो है वो धुली हुई है, फूल खिले हुए हैं, तो नज़ारा कुछ और ही हो जाता है।

अमृतेश्वर मंदिर है इगतपुरी के खास तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान शिव का ये मंदिर है, लगभग 1200 साल पुराना इसे माना जाता है। ये पहाड़ियों से घिरा है मंदिर, काले और लाल पत्थरों से इसे बनाया गया है और इस मंदिर में हेमाडपंथी शैली की वास्तुकला देखने को आपको मिलेगी। यानी बाहरी दीवारों पर तो आपको नक्काशी मिलेगी, काले पत्थर पर नक्काशी बहुत ही खूबसूरत लगती है इस मंदिर की, और भीतरी जो दीवारें हैं उन पर आपको मूर्तियां और भित्ति चित्र बने हुए दिखेंगे। और मंदिर परिसर में ना एक तालाब भी है और उसकी दीवारों पर छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं ना उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अमृतेश्वर मंदिर जो है वो उसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इगतपुरी से आप मंदिर तक गाड़ी से या फिर टैक्सी से आसानी से जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है इगतपुरी से मंदिर जाने का इस मौसम में, यानी इस बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में, बहुत बहुत खूबसूरत हो जाता है।

इस मौसम में आप जहां भी घूमेंगे, जहां भी जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि हरियाली, खुशहाली चारों तरफ फैली हुई मिलेगी आपको। म्यांमार गेट एक जगह है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, धम्मगिरी विपश्यना ध्यान केंद्र का प्रवेश द्वार है ये। यदि आप केंद्र में किसी ध्यान या योग पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं भी लेना चाहते, कोई योजना ऐसी नहीं बना रहे यहाँ पर दाखिला लेने की, तब भी आप म्यांमार गेट की यात्रा कर सकते हैं। इगतपुरी के बहुत खास आकर्षण जो है ना, उनमें से एक है ये, और इस प्रवेश द्वार को बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है, गुलाबी और सुनहरे रंगों से सजाया गया है। एंट्री करते ही ना आपको खुला स्थान दिखाई देगा एकदम, और यहाँ से एंट्री करने के बाद से जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार दृश्य है, वो आपका स्वागत कर रहा होगा कि आओ अंदर आओ, मुझे निहारो और इस खूबसूरती को अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद करके ले जाओ। यहाँ हरा भरा सुव्यवस्थित बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत, आराम करने के लिए बेंचेस उसमें लगे हुए हैं। एक पैदल मार्ग है वो बुद्ध पार्क की ओर जाता है, और इस मतलब बुद्ध पार्क में जो है गौतम बुद्ध के जीवन के चित्र और एक अलंकृत स्तूप भी है। गेट और बगीचे सैर और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर इस मौसम में। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ का मौसम, यहाँ का समा आपका दिल लूट लेगा, दिल और चैन दोनों कहीं खो जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के इगतपुरी की। आपके साथ मैं हूं भावना, और बात करते हैं इगतपुरी के पास वैतरणा बांध की। बहुत ही खूबसूरत है ये बांध। मुंबई और उसके आसपास के जितने भी एरिया है ना, जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पानी और बिजली के लिए जो मुख्य स्रोत हैं, उनमें से एक है ये वैतरणा बांध। निर्मल झील चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरा, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो इगतपुरी आते हैं, इस वैतरणा बांध की यात्रा ज़रूर करते हैं। इसके अलावा भाटसा नदी घाटी है। भाटसा नदी घाटी मतलब आप इस घाटी पर जाइए, दूर दूर तक हरे भरे जंगल, ये देखिए पहाड़ और ऊपर छाई धुंध बहुत ही खूबसूरत बना देती है इस जगह को। ये व्यू पॉइंट जो है ना, यहाँ से दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और घाटियाँ दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि हम कितने बौने हैं और प्रकृति कितनी विशाल है। प्रकृति के आगे हम सब बहुत छोटे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो अंदाज है, बोली है प्रकृति की, वो आपको समझ में आएगी। मतलब जो वहाँ की पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, हवा की आवाज़, उसको जब आप सुनेंगे ना, तो लगेगा कि बस यहीं रुक जाएं, इसी हरियाली में खो जाएं।

इगतपुरी आने वाले लोग यहाँ के मानस मंदिर भी आते हैं। मानस मंदिर ये जैन मंदिर है और महावीर जी की पीतल की प्रतिमा और आदेश भगवान की पंचलोक प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जिसे देखने लोग आते हैं। महुली पहाड़ियों की तलहटी में है ये खूबसूरत मानस मंदिर। इसके अलावा रतनगढ़ किला, ये अपनी प्राचीनता के साथ साथ चट्टानों और दरारों में खिलने वाली झाड़ियाँ, जंगली फूल, खूबसूरत जंगली फूलों के लिए उनको देखने के लिए ये जाना जाता है। और यहाँ पर ना पर्वतारोही जो हैं वो भी आते हैं। ट्रैकिंग जो है, यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ख़ास है, लोग करते हैं जो इगतपुरी आते हैं वो रतनगढ़ किला में ट्रैकिंग ज़रूर करते हैं। यहाँ पर पहाड़ी के किनारों पर ना लोहे की सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं जिससे आसानी हो ट्रैकिंग करने में। और यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानी चोटी है रतनगढ़ किला पर, जिसे सुई की नोक कहा जाता है। लोग उसको भी ध्यान से देखते हैं क्यों इसको सुई की नोक कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो जो चट्टानी दरारों में, बड़ी बड़ी दरारों के बीच जो फूल खिलते हैं, तरह तरह के जंगली फूल, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।

फोटोग्राफी करते हैं। इसके अलावा दो ट्रैक भी हैं, पहाड़ी किले हैं जिनकी ट्रैकिंग लोग करते हैं, कुलगंड और बिटागंड। ये दोनों जो है पहाड़ी किले हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और मतलब दूसरी जो चोटियाँ उनके मनोरम दृश्य भी देखते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रैकिंग भी बहुत ख़ास मानी जाती है। इसके अलावा हमने आपको जो कुछ भी बताया वो सब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप सुकून भरी छुट्टियाँ बिता सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रैकिंग और कैंपिंग के भी आनंद को उठा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है महाराष्ट्र का इगतपुरी, एक बार यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ के माहौल को देखिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारिए। और इस मौसम में यानी मानसून के मौसम में तो यहाँ की खूबसूरती और भी दुगनी हो जाती है।

0: इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, उसके बाद 12:10 पर घर आंगन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12

0: घर आंगन। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। अगस्त का पहला दिन, शनिवार की छुट्टी और हवाओं में आजादी के महीने की वो मीठी सी खुशबू जो मन को एक अलग से सुकून से भर देती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं श्रुति। शनिवार का दिन हो, सुबह की चाय हो और रेडियो पर अपना कोई सुनाई दे, इसे बेहतर दोपहर और क्या हो सकती है।
0: और जब वो आवाज़ें घर आंगन की हों तो फिर बात कुछ अलग ही होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ श्रुति पुरी
1: और मैं हूँ राधा पाठक। नमस्कार, स्वीकार करें हम दोनों का।
0: हाँ नमस्कार।
1: हम दोनों मिलकर आपकी इस आंगन में दस्तक दे रहे हैं। खूब खूब स्वागत है आपका कार्यक्रम घर आंगन में।
0: दोस्तों, यहाँ बातें होती हैं दिल की, तजुर्बे को सलाम किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि इस 50 मिनट के सफर को मधुरता की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है।
1: और यही तो हमारे कार्यक्रम की रूह है श्रुति, कि इस घर तक आप पहुंच सकते हैं कई रास्तों से। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
0: और इंद्रप्रस्थ के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और हमारे जो डिजिटल परिवार के जो देश विदेश में फैला हुआ है ना, वो हमें सुन सकते हैं AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर।
1: और श्रुति, ये डिजिटल परिवार तो अब बहुत बड़ा हो गया है। कभी कभी सोचती हूँ कि रेडियो की ये आवाज अब कितनी दूर दूर तक पहुँच रही है, कितने घरों को रोशन कर रही है।
0: यही तो ताकत है ना रेडियो की राधा। ना स्क्रीन की जरूरत है, ना चश्मे की। बस कान दीजिए, दिल खोलिए और हम आपके बन जाते हैं।
1: और जो दिल खोलता है श्रुति, उसमें से निकलती है वो बातें, वो जो बहुत जरूरी है सुनना। इसलिए हम अब हमेशा अपने श्रोताओं से बात करते हैं, उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे मन में एक सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और श्रुति जी लेकर आई हैं वो सवाल।
0: बिल्कुल। और सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को जब देखा, तो उस दौर में आपको किस बात ने या किस शख्स ने सबसे ज्यादा हिम्मत दी? वो लम्हा क्या था जब आपने ठान लिया कि नहीं, अब मैं नहीं टूटूंगा?
1: ये सवाल सुनकर ही मन भावुक हो जाता है। हमारे श्रोताओं ने जो भी देखा है, जो झेला है, जो सहा है, निश्चित ही उनकी वो कहानियां हम सबके लिए किसी प्रेरणा पुंज से कम नहीं होंगी।
0: बिल्कुल। और इसीलिए दोस्तों, अपने दिल की वो हर बात हमसे साझा कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। दोबारा सुनिए, fmgoldga, GA stands for घर आंगन @gmail.com।

com। हर खत को हम पूरे प्यार और ध्यान से कार्यक्रम में पढ़ते हैं, तो देर मत कीजिए दोस्तों। और अभी के लिए एक सुरीले गीत के साथ हम आपका दिल से स्वागत करते हैं।

0: आया सावन झूम के, इस फिल्म में ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: देखो राधा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी अक्सर कहा करते थे कि जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी हर शक्ति समाज के हित में लगा देना ही एक सच्चा सुख है। ये विचार, ये सुविचार है आज का
0: दिन। बिल्कुल, वही मैं सोच रही थी कि आपका सुविचार आने ही वाला है।
1: हाँ, और ये आज के दिन के साथ बड़ा गहराई से जुड़ता है, क्योंकि 1 अगस्त की तारीख में ही समाज को समर्पित 2 महान जीवन आपस में मिलते हैं।
0: जी हाँ, 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली थी। उन्होंने केसरी और मराठा नाम के समाचार पत्र शुरू किए थे। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के मन में गूंजता है। इसी वजह से जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी।
1: और उसी 1 अगस्त की तारीख को 1882 में इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म हुआ था। टंडन जी हिंदी भाषा के अनन्य सेवक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी सादगी और त्याग को देखते हुए उन्हें राजर्षि कहा गया। 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: श्रुति, यानी कि एक ने कलम से जनता को जगाया तो दूसरे ने भाषा को राष्ट्र की एकता का सूत्र बनाया। मंजिल दोनों की ही एक थी, भारत की आजादी और स्वाभिमान। आज इसी 1 अगस्त को इन दोनों महान व्यक्तित्वों को नमन करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की।
1: राधा देखो, किसी भी शिशु की जिंदगी में पहली कहानी माँ की गोद से शुरू होती है। वहीं उसे ममता मिलती है, सुरक्षा मिलती है और जीवन का सबसे पहला संपूर्ण आहार भी। और शायद यही कारण है कि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया विश्व स्तनपान सप्ताह मनाती है। ये केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाने का एक वैश्विक प्रयास है।
0: बिल्कुल श्रुति, और बिल्कुल सही बताया कि आज से शुरू हो गया है विश्व स्तनपान सप्ताह और इस वर्ष की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, यानी जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी है उसे और सशक्त बनाइए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल माँ की इच्छा नहीं बल्कि परिवार, अस्पताल, कार्यस्थल और समाज सभी का सहयोग स्तनपान को सफल बनाता है।
1: देखो राधा, जो व्यवस्थाएं पहले से अच्छा काम कर रही हैं ना, उन्हें और मजबूत बनाने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सलाह है कि शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराया जाना चाहिए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध दिया जाना चाहिए। जन्म के बाद निकलने वाला जो पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
0: और श्रुति, मुझे एक बात यहाँ याद आ रही है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो जगह बनाते हैं, स्पॉट्स बनाते हैं, तो जगह जगह मैं देखती हूँ गैर सरकारी और सरकारी संस्थान है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, रेलवे स्टेशन, यहाँ भी ब्रेस्ट फीडिंग स्पॉट्स बनाए गए हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो वहाँ पिला सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह को केवल जागरूकता की ही बात ना करें। तुम कुछ कहना चाह रही थी।
0: बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि ये भी याद रखना चाहिए कि स्तनपान का लाभ केवल शिशु को नहीं होता है श्रुति, माँ को भी मिलता है। ये माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और माँ बच्चे के बीच जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, वो और गहरा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि स्तनपान को केवल एक व्यक्तिगत निर्णय न माना जाए बल्कि पूरे परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए,
1: और बल्कि हर माँ को सही जानकारी, सम्मान और सहयोग देने का भी हमें आज संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब जीवन की शुरुआत स्वस्थ होती है तभी भविष्य भी स्वस्थ और सशक्त बनता है।

0: ये गीत हमने लिया था मेरा गांव मेरा देश, फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस गीत को सुनते सुनते मैं देख रही थी श्रुति आप बहुत मुस्कुरा रही
1: थी। अरे मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि सावन शुरू हो गया और मेरे घर कल आया घेवर और मैंने खूब सारा घेवर खाया।
0: तो सावन में और होता ही क्या, झूले पड़ते हैं, हरियाली है और घेवर और फैनी की बाहर तो रहती है, इंदर से की गोलियां वो भी बिल्कुल।
1: और देखो राधा, जब घर परिवार के साथ बैठकर इन खुशियों को मनाया जाता है ना, तो ये छोटी छोटी खुशियां भी बहुत आनंद दे जाती है।
0: घर परिवार में तो कहती हूँ दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, और ये जो सावन है ना, ये तो सहेलियों का ही त्योहार है।
1: और देखो राधा, हमने प्रश्न भी यही पूछा था कि जब आपका कोई कठिन समय था, आपके जीवन का कठिन दौर था, तब आपने किससे मदद पाई, किसने आपकी हिम्मत बढ़ाई। तो एक मेल हमारे पास आया है और ये हमें मेल लिखा है गौरी शंकर वर्मा जी ने नांगलोई से, और ये लिख रहे हैं कि दोनों बेटियों को राम राम। 1986 की बात है, मेरे काम में मेरा बहुत नुकसान हो गया था और इस दौरान मेरी घरवाली ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत बढ़ाई और कहा कि जीवन का ये एक तजुर्बा है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना,
0: बहुत ही सही
1: और
0: बात है।
1: और ये आगे लिख रहे हैं कि आज उनका जन्मदिन है और
0: हमारी
1: उनका
0: तरफ
1: नाम
0: से
1: राजरानी
0: जी को हमारी तरफ से घर आंगन परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो।
1: बिल्कुल, हमारा सारा आकाशवाणी परिवार आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है आज, है ना। और देखिए जिंदगी के 68 साल गुजर गए हैं ये कह रही हैं राजरानी जी, और पता ही नहीं चला अब सब कुछ ठीक हो गया है। गौरी शंकर
0: और एक मैसेज मुझे भी मिला है श्रुति जी, ये लिखते हैं रोहिणी से प्रवीण कुमार जी, ये लिखते हैं जब ऐसा महसूस हुआ मैं टूटने लगा तब मेरे साथ थे मेरे माता पिता जिन्होंने

0: कहा कि सब्र और धैर्य से काम लो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है।
1: देखो राधा, ये बात सही है कि जब कठिन समय आता है ना तो कुछ लोग उसको झेल नहीं पाते हैं और अवसाद में चले जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज के हाँ, समय की सबसे बड़ी समस्या है ये।
1: हाँ, ये आज के दौर में कुछ ऐसा ही है कि हर कोई मानसिक रूप से एक लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से देखने में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सामने वाला व्यक्ति भीतर से कितना टूट रहा है, इसीलिए किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसके व्यवहार से आंकना शायद गलत होगा। अवसाद अब हर ओर अपने पैर पसार चुका है, न इससे हमारे आपके दोस्त अछूते हैं, न हम और न ही हमारे फिल्मी सितारे भी, जिन्हें लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं।
0: बिल्कुल श्रुति, और इस भागती दौड़ती जिंदगी में यही माना जा रहा है कि अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। जो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार देखा जाता है ना, लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो हाँ, दोस्त कहने लगते हैं अरे ये तो उदास रहने हाँ, लगा ये हाँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। उसे बेचारा कहकर उसके असहाय होने का एहसास दिलाना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे कठिन समय में उसे सहयोग दें, उसे समझाएं, जहां तक संभव हो अवसाद से उभरने में उसकी मदद करें, वो ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसकी मदद अवश्य करें और एक सकारात्मक सोच रखें।
1: हाँ देखो, अगर कोई परेशानी बताता है अपनी तो हम उसे तुरंत सीख देने लग जाते हैं, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन उसे प्रेरित करने के लिए किसी परामर्शदाता का चोला पहन लेते हैं हम, ऐसे बन जाते हैं कि जैसे हम ही उसके सबसे बड़े
0: और सारे गुरु हम ही हैं और हम ही उसे सब समझा देंगे कि क्या ठीक है क्या गलत।
1: हम ये भी नहीं सोचते कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। किसी के असली दर्द को तभी समझा जा सकता है जब खुद कोई उस पीड़ा से गुजरा हो। इसीलिए अवसाद से वो कैसे बाहर निकले और उसे इससे बाहर निकालना चाहिए और ज्ञान बांटने की बजाय उसकी बात को सुना जाना चाहिए पूरे धैर्य के साथ, बिना किसी निर्णय पे पहुंचे और बिना कोई निष्कर्ष निकाले, बिना उसकी गलतियों को गिनते हुए उसकी मन की गांठों को खुलने का अवसर देना चाहिए।

0: आई मिलन की बेला, इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे।
1: श्रुति जी, बहुत देर से देख रही हूँ, बहुत खराश लग रही है मुझे आपके गले में।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गला खराब है, गला ठीक ही नहीं होने को आ रहा राधा।
1: बिल्कुल, और हमारा हम आगे अपने घर आंगन में यही विषय लेकर आए हैं अपनी महिलाओं के लिए, अपने श्रोताओं के लिए।
0: मुझे देख कर ये विचार लिया है तुमने।
1: बिल्कुल, क्योंकि मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम और गले की तकलीफें आम हो जाती हैं, लेकिन यदि गले में खराश, सूखी खांसी या दर्द लंबे समय तक बना रहे तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज हम इसी बात पे बात करेंगे, ठीक नहीं हो रहा है क्यों गला।
0: देखो, गले में खराश के कई कारण हो सकते हैं। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, टॉन्सिल की सूजन हो सकती है, एलर्जी, धूल और प्रदूषण हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, और बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्म चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं, यहाँ तक कि एसिडिटी भी अगर होती है ना, तो गले में जलन और दर्द का कारण बन सकती है। और आमतौर पे ये जो वायरल संक्रमण है ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, पर मेरा भी जैसे नहीं हुआ, लेकिन यदि गले में दर्द लगातार बना रहे, तेज़ बुखार आए, निगलने में कठिनाई हो, आवाज़ बैठ जाए या गले में सूजन बढ़ती जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं श्रुति, क्योंकि एक बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाई लेना। याद रखिए, हर गले का संक्रमण बैक्टीरिया नहीं होता है। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती हैं। इसका अनावश्यक उपयोग भविष्य में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। अगर गले में हल्की खराश है तो कुछ घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं। दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में आप नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा पानी पिए, गर्म सूप, हर्बल चाय लें, धूल और धुएं से बचें और आवाज को आराम दें।
0: और देखो, यदि आप लोग धूम्रपान करते हैं तो ये आदत गले की परेशानी को और बढ़ा सकती है। धूम्रपान न केवल गले को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। तो श्रोताओं, हमारा गला हमारी आवाज़ का आधार है, इसीलिए इसकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। सही इलाज, संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन करके आप गले के अधिकांश समस्याओं से जल्दी ही राहत पा सकते हैं।
1: तो अगली बार यदि आपका गला लंबे समय तक ठीक ना हो तो खुद से इलाज करने की बजाय विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वस्थ रहिए और अपनी आवाज़ का खास ख्याल रखिए।
0: और देखो राधा, अगर ये देखो मौसम ऐसा है ना, अगर गला ठीक होगा तो हम गाने गा भी सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: लिख भी सकते हैं। और देखो क्या है कि ये जो सावन का मौसम है ना, इसमें गानों को रचा भी जाता है, गढ़ा जाता है और उनको अपनी भावनाओं का आकार दिया जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आपने जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा को सुना, और जो श्रुति जी आपने सवाल पूछा था उसकी मैं देख रही हूँ कि आपने मेल खोल रखी है, जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो एक मेल तो मैं पढ़ देती हूँ, मेरे पास है ये भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कृष्ण कुमार गुप्ता
1: जी।
0: ये लिखते हैं कि बात 2001 की, जब मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मुझे हड्डी से संबंधित बीमारी हो गई थी। असहनीय दर्द के कारण बहुत बार रोना आता था, लेकिन मेरी माँ ने बड़ी दीदी के पास इसकी खबर पहुंचा दी। दीदी ने बिना समय गवाए फोर व्हीलर भेजकर इलाज के लिए कानपुर मुझे बुला लिया और मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ से मेरा इलाज चला। हम लोग शाकाहारी हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर, जो मेरी पत्नी और माँ अंडा भी नहीं छूते थे, उन्होंने मेरे जीवन के लिए सब कुछ किया। अब मेरी माँ बड़ी दीदी इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श और सादर नमन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि परिवार वाले जो भी बेस्ट हो सकता है वो हमेशा साथ होते हैं।
1: और देखो एक ऐसी ही मेल मेरे पास भी आई है, ये मेल लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। ये कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते
0: बहुत
1: हैं।
0: बहुत ही सुंदर विचार इन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, और देखो इन्हीं विचारों के चलते चलते ऐसा ना हो कि हम अपनी बातों को कहना भूल जाएं। तो देखो जैसे अभी हमने मोबाइल से मेल पढ़ी ना, तो वैसे ही सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल में हाथ आता है और मोबाइल हाथ में आ जाता है और परिवार के ग्रुप में कोई संदेश पर निगाह पड़ जाए, बस उंगलियां बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देती हैं। और ये सोचकर कि अगर खतरे की बात है तो सबको पता चल जानी चाहिए। कई बार यही जल्दबाजी जो होती है ना, हमें बिना जाने अफवाह फैलाने वाला बना देती है, क्योंकि जो संदेश हमें मिलता है वो कई हाथों से गुजर कर आता है और हर हाथ में थोड़ी तोड़ मरोड़ हो चुकी होती है। इसलिए संदेश के ऊपर बना फॉरवर्ड का जो निशान होता है ना, वो हमें ये बताता है कि ये किसी और ने भेजा है। और अगर दो तीर का निशान बना हुआ आए तो पता है क्या समझना चाहिए, कि संदेश बहुत बार आगे बढ़ चुका है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानकारी वाली बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई, क्योंकि आजकल तो नकली आवाजें और नकली चेहरे बनाकर फर्जी वीडियो तक बनाए जा रहे हैं, जिन्हें असली से अलग पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार की फैक्ट्स चेक यूनिट PIB किसी भी संदिग्ध संदेश की सच्चाई जांचने में मदद करती है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7879971159 पर, मैं नंबर फिर से बता देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर संदेश भेजा जा सकता है, या factcheck.pib

0: www.gov.in पर जांचा जा सकता है। इसलिए अगली बार कोई चौंकाने वाला संदेश मिले तो पहले देखिए कि क्या ये विश्वसनीय स्रोत से आया है, और अगर मन में थोड़ा सा भी संदेह हो तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि एक झूठ को फैलने से रोकना भी उतना ही बड़ा काम है, सतर्क रहना भी अपनों की सबसे बड़ी हिफाजत है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने राधा।

0: नेत्री फिल्म में ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: और देखो राधा, हमें लगातार मेल्स मिल रही हैं और ये मेल हमारे पास आई है वैशाली से। रश्मि कपूरिया ने लिखी है, ये कहती हैं कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे सही शिक्षा देती हैं, वो भगवान में बहुत भरोसा करती हैं और यही कहती हैं कि सब समय ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, माएँ हमेशा बच्चों की बहुत चिंता करती हैं और हमेशा सही सही बात बताती
0: हैं। हम रश्मि कपूरिया जी से यही कहेंगे कि बिल्कुल उनकी मम्मी ने सही कहा, और सभी श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि समय सब सही करेगा, ये बिल्कुल सही बात है।
1: देखो

लेकिन एक मेल हमें और आई है कल्पना शुक्ला की, और ये तो हमारी साथी भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये कह रही हैं कि परिवार तो हर परिस्थिति में साथ देता ही है, लेकिन हर बात हम परिवार से तो नहीं कर पाते हैं, तो कुछ हमारा निजी भी तो होता है ना। तो ये कह रही है कि उसको मैं कविता और कहानी के माध्यम से गीतों में कह देती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात कही कल्पना तुमने।

0: क्योंकि हमारा जो परिवार है ना, मैंने देखा ज्यादातर जो मेल आई है उसमें यही लिखा है कि परिवार ने और दोस्तों ने साथ दिया, तो मैक्सिमम यही होता है या तो परिवार वाले या दोस्त आपके साथ हमेशा हर तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं।
1: और एक और मेल आई है हमारे पास, ये हैं उग्रसेन यादव जी, ये भी हमें नियमित मेल लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा नमस्कार, जब भी कठिन दौर आया तो मेरे माता पिता ने बिल्कुल हमेशा हमें हिम्मत दी, हमारा साथ निभाया, ये मेरे लिए मेरे हीरो हैं। तो सही बात है, बिल्कुल माता पिता तो हीरो होते ही हैं।

0: गीत आपने लिया है फिल्म पाकीज़ा से, आपने ये गीत सुनवाया बिल्कुल लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और जानती हो इस गीत में जो अभिनेत्री है वो कौन है?
0: मीना कुमारी जी, आज उनका जन्म दिवस है। बिल्कुल मैं समझ गई श्रुति जी, इसीलिए आपने ये गीत सुनवाया उनकी इस मशहूर फिल्म से।
1: हाँ, और उन्होंने बहुत सारी यादगार भूमिकाएं भी निभाई हैं और ये पाकिजा उनमें से एक
0: और है। बिल्कुल, उन्हें भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता
1: और चलते
0: है।
1: चलते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि राधा, ये जो हमने मेल पढ़ा था उग्रसेन यादव जी का, इनकी मेल अधूरी पढ़ पाए थे हम, तो इन्होंने आगे लिखा है कि समय के साथ साथ मेरे दोस्तों ने भी कठिन समय में मेरा साथ निभाया और हम भी उनके कठिन समय में काम आते हैं।

0: राधा, अब देखो समय हमसे कह रहा है कि हम अपना बोरी विस्तरा समेटे इस कार्यक्रम से।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा श्रुति जी। और हम घर आंगन के सभी श्रोताओं से कहते हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार दोस्तों के साथ घुलते मिलते रहिए।
0: तो मुझे श्रुति पुरी को
1: और मुझे राधा पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: 당근.
1: 아프게 아스티트와 아프게 벽티트와 세 주라. 아프가 घर 앙근.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872.50, मुंबई में 2,691.50 और चेन्नई में 2,906 हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
4: నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను.
5: సాథియో, బీతే 12 ఇయర్స్ మే దేశ్ కే ఏవియేషన్ సెక్టర్ నే అసాధారణ ప్రగతి కీ. 2014 తక్ దేశ్ మే కేవల్ 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है.
3: Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center or Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892. When he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. Price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paise, and in Mumbai it will be 2,691 rupees 50 paise, and in Chennai 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. In Jammu and Kashmir, the second labourer injured in the terrorist attack in the Kelam area of Kulgam district succumbed to his injuries this morning, taking the death toll to two. The two labourers working at a brick kiln were fired upon by unidentified terrorists last evening. Soon after the incident, the area was cordoned off and a massive search operation was underway to trace the terrorists. Chief Minister Omar Abdullah has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each from the Chief Minister's Relief Fund for the next of the kin of the deceased, in addition to 6 lakh rupees immediate assistance to be provided by the Kulgam District Administration. The Election Commission has revised the schedule for the special intensive revision of the electoral rolls in Telangana. The Commission said the revision of the schedule has been carried out following a request from the Chief Electoral Officer of Telangana. According to the revised schedule, booth-level officers will conduct house-to-house verification till the 10th of this month. Rationalization and rearrangement of polling stations will also be completed by the same date. The draft electoral roll will now be published on the 17th of August. The period for filing claims and objections will continue from 17th of August to 16th of September, while their disposal will be completed by 15th of October. The final electoral roll will be published on 19th of October. The India Meteorological Department, IMD, has said that rainfall over the country is likely to be below normal during the second half of the southwest monsoon season. The IMD said rainfall is expected to be less than 94% of the long period average in this month. The weather agency added that these conditions are expected not to prevail over many areas of eastern peninsula India, some areas of northwest, central India and isolated areas of east and northeast India. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूँ आज आप सभी के साथ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक छोटी सी लड़की की छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक थे मास्टर अली बख्श, फिल्मों में काम करते थे, पारसी रंगमंच के भी मंझे हुए कलाकार थे और कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर संगीतकार भी काम किया था। दो बेटियां थी उनकी और तीसरी औलाद की चाहत थी, उम्मीद थी कि एक बेटा जन्म लेगा, दो बेटियों के बाद एक बेटा आएगा और खुशियों से उनका दामन भर देगा। लेकिन जब खबर आई तो पता चला कि उनकी जो तीसरी संतान है वो भी बेटी ही है और ये सुनकर मास्टर अली बख्श ने अपना माथा पकड़ लिया कि इस बार भी उनके घर बेटी ने ही जन्म लिया। तो हुआ क्या, मास्टर अली बख्श ने तय किया कि वो उस बच्ची को घर नहीं लेकर जाएंगे बल्कि उस बच्ची को अनाथालय में छोड़ देंगे। और यही हुआ भी, उस बच्ची को ले जाकर उन्होंने अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसुओं ने मजबूर कर दिया उन्हें कि वो जाकर अनाथालय से उस बच्ची को लेकर आएं। बच्ची का चांद सा माथा देखकर उसकी मां ने उसका नाम रखा महजबी। बाद में यही महजबी बनी फिल्म इंडस्ट्री की मीना कुमारी। तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज 1 अगस्त है और आज मीना कुमारी का जन्मदिवस है। बने रहिए हमारे साथ FM गोल्ड के साथ। कई सारे खूबसूरत गीत आपको तो जानते ही हैं, सुनाएंगे ही, लेकिन मीना कुमारी के फिल्मी सफर की ढेर सारी हम बातें भी करेंगे।

तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज हम याद कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मीना कुमारी को। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो 6 बरस की उम्र में ही मीना कुमारी को फिल्मों में काम करना पड़ा और स्कूल भी उनका छूट गया। वर्ष 1939 की बात है जब बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। मीना कुमारी की प्रारंभिक जो फिल्में थीं, शुरुआत की जो फिल्में थीं, वो ज़्यादातर पौराणिक फिल्में थीं, पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में थीं, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, इस तरह की फिल्में थीं। और अपनी पहचान बनाने में मीना कुमारी को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 10 बरस लग गए। तो वर्ष 1952 की बात है जब मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म की सफलता ने तो मीना कुमारी को बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। तो उनका नाम मीना कुमारी इसी फिल्म से पड़ा। बैजू बावरा से अभिनय की शुरुआत हुई और इस फिल्म ने उन्हें पुरस्कार भी दिलाया। तो मीना कुमारी के आने के साथ ही भारतीय सिनेमा में नई अभिनेत्रियों का एक ख़ास दौर शुरू हुआ जिसमें नरगिस थीं, निमी थीं, सुचित्रा सेन थीं और नूतन भी शामिल थी।

आजाद फिल्म से हमने ये गीत आपको सुनाया। आपने ये फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो देखिएगा, डबल रोल है इसमें दिलीप कुमार का। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओहो, जो शहंशाह फिल्म है अमिताभ बच्चन की, वो इसी से प्रेरणा लेकर बनी है। और कुछ सीन तो हूबहू शहंशाह में जो है वो कॉपी किए गए हैं। तो आज शनिवार है, कल रविवार है, अवकाश का दिन है। तो अवकाश जो है क्यों आता है? अवकाश इसलिए आता है कि हम अपने हिस्से का आकाश तलाश सकें। तो छुट्टी का दिन है, इन फिल्मों को ज़रूर देखिएगा। और मीना कुमारी का एकदम अलग अंदाज, ट्रेजेडी क्वीन हम उन्हें कहते हैं, लेकिन उससे एकदम अलग अंदाज में इस फिल्म में वो दिखाई देती हैं। मीना कुमारी को हम याद कर रहे हैं तो 1953 तक मीना कुमारी की 3 सफल फिल्में आ चुकी थीं, जिनमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय नारियों के आम जिंदगी की तकलीफों को दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसी फिल्म की वजह से उनकी छवि सिर्फ दुखांत भूमिकाएं करने वाली एक नायिका की होकर रह गई। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उन्होंने अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू जो है, जो उनका अंदाज था, वो हमेशा हमेशा दर्शकों पर छाया रहा। अभी हम कौन सा गीत आपको सुनाएं? दिल अपना और प्रीत पराई से सुनाएं क्या ये गीत आपको?

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

0: विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।

0: फिल्म फेयर के 3 अलग अलग वर्गों में नामित किया गया था। और अब हम आरती फिल्म से सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: जहां मौत जिंदगी पर हंसती है
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

जाने कितनी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है मीना कुमारी की, जो फिल्में क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में आती हैं। गुरुदत्त की फिल्म साहेब बीवी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू के किरदार को जीवंत कर दिया। इस फिल्म के जरिए मीना कुमारी ने बहुत खूबसूरती से, एक तरह से देखा जाए तो अपनी निजी जिंदगी को भी रुपहले पर्दे पर साकार किया। ये फिल्म आज भी हिंदी की कला फिल्मों में शुमार की जाती है। और इसके बाद आती है एक और कमाल की फिल्म पाकीज़ा। इसके निर्माण में लगभग 14 वर्ष लग गए और इस दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकीज़ा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। और साल 1972 में जब पाकीज़ा सिनेमा हॉल में आई, प्रदर्शित हुई, और फिल्म में जब मीना कुमारी का अभिनय लोगों ने देखा तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए उन्हें देखकर। और आज भी मीना कुमारी को उस फिल्म में, हालांकि सिर्फ उस फिल्म का जिक्र नहीं कर सकते हैं, साहेब बीवी गुलाम है, आरती है, चित्रलेखा है, और जाहिर सी बात है पाकीज़ा है, उसको जो है उसके अभिनय के लिए उन्हें याद किया जाता है। चलिए पाकीज़ा फिल्म से सुनाते हैं ये गीत।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज हम कमाल की अदाकारा मीना कुमारी को याद कर रहे हैं। मीना कुमारी की जोड़ी अशोक कुमार के साथ खूब जमी। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों की अगर बात की जाए तो कई फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। उनमें तमाशा है, परिणीता है, बादबान, बंदेश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा और पाकीज़ा भी है। लेकिन हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफ़ी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आज़ाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और इन फिल्मों को तो आप ज़रूर देखिएगा, कमाल की फिल्में हैं ये। और अभिनय में जो बिल्कुल एक सा अभिनय न लगे इसलिए अलग अलग चरित्र अभिनय भी उन्होंने किए। चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी खुद को ढाला और चरित्र अभिनेत्री के रूप में जो उनकी फिल्म थी जवाब और दुश्मन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और चलिए फिर हम यहूदी फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

ये सिलसिला ऐसा है कि मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जब मीना कुमारी जैसी अदाकारा का हम जिक्र करें तो वक्त बहुत कम लगने लगता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है सच में कि कौन सा गाना चलाएं और कौन सा गाना ना चलाएं, क्या बातें कहें और क्या बातें ना कहें। लेकिन अगर हम उन्हें मिले पुरस्कारों की अगर बात करें तो 1953 में बैजू बावरा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, 1964 में परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, इसके बाद 1962 में साहेब बीवी गुलाम के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला और 1965 काजल के लिए भी, फिल्म काजल के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी अगर अभिनेत्री नहीं होती, अगर कलाकार नहीं होती, तो निश्चित तौर पर वो एक शायरा होती। गीतकार और शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा था कि ये जो एक्टिंग मैं करती हूं उसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझ में नहीं जन्मा है, ख्याल दूसरे का, किरदार किसी का और निर्देशन किसी का, मेरे भीतर से जो जन्मा है वो लिखती हूं और जो मैं कहना चाहती हूं वो मैं लिखती हूं। तो चलिए फिलहाल हम आपको सुनाते हैं दिल एक मंदिर से ये गीत।

और अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मीना कुमारी की लिखी गज़ल की चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगी। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। कितनी कमाल की पंक्तियां हैं और बहुत सारा उनका रचा हुआ है जो बाद में प्रकाशित किया गया, और ये जिम्मेदारी मीना कुमारी ने सौंपी थी गुलजार को कि वो उनके जो है गजलों के संग्रह का प्रकाशन करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे कहना यह है कि आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, और हाँ 2:30 पर हम फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम क्या संगीत.com।

0: अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया, इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए गए हैं जिनमें सड़कें और तवानाई की यकीनी फराहमी शामिल है। इससे आंध्र प्रदेश की तेज तरक्की में तरक्की होगी।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: नए हवाई अड्डे की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये फख्र की बात है कि ये हवाई अड्डा अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है और इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह ऐसी सरजमीन पर किया गया है जहां मुजाहिद आज़ादी ने कबायली तबकात के हकूक के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश, खसूसा शिमाली आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में जुमेरात को मंजूरी दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त सजाएं मुकर्रर करके और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करके गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इस बिल में इम्तिहान के निजाम में एक कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए शफाफ और सही तौर तरीकों और दयानतदारी की बात कही गई है ताकि बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के केलम इलाके में कल शाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जो दूसरा मजदूर जख्मी हुआ था वो भी आज सुबह जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। पुलिस के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि जख्मी मजदूर श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूरों पर कल शाम नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी जो ईंटों के एक भट्टे पर काम कर रहे थे। इस वाकये के फौरन बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है और मारे गए मजदूरों के कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो इस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में अपनी कार्रवाई और तेज करें। जनाब अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुंभों के लिए वजीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी। कीमत में कमी के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2,738 रुपए होगी। इसी तरह कोलकाता में 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए होगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत का इतलाक आज से हो गया है। इस फैसले से ढाबों, होटलों और खुराक मशरूबात के कारोबार से वाबस्ता अफराद को काफी राहत मिलेगी। साजो सामान और खिदमत टैक्स जीएसटी की वसूलियाबी

0: 83,065 करोड़ रुपए थी। इस तरह इसमें साल ब साल 15.4% का इजाफा दर्ज किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी आरजी आदाद शुमार के मुताबिक मजमू घरेलू GST रेवेन्यू 1,44,695 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 10.1% ज्यादा है। चुनाव कमीशन ने तेलंगाना में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी के लिए अपने प्रोग्राम में फिर तब्दीली कर दी है। कमीशन ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी का प्रोग्राम तेलंगाना के आला इंतखाबी अफसर की दरखास्त के बाद अंजाम दिया गया है। नजरसानी प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरान इस माह की 10 तारीख तक तस्दीक के लिए घर घर जाएंगे और उसी तारीख तक पोलिंग स्टेशनों को माकूल बनाने और उनके दोबारा इंतजाम का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव कमीशन ने कहा कि अब इंतखाबी फहरिस्तों का मुसवदा 10 अगस्त को शाये किया जाएगा। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला पास के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तातुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतालिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तर रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ओडिशा में महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जिससे दरिया से मुत्तसिल नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों का जायजा लेने के लिए आज सैलाब से मुतासर इलाकों का फजाई सर्वे किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महानदी दरिया में मुसलसल पानी बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरधा जिलों के नशेबी इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा बढ़ गया है। वजीर आला ने भद्रक, बालासोर, जाजपुर और क्यूंझर के सैलाब से मुतासर जिलों का भी फजाई सर्वे किया, ताकि मौजूदा सूरतहाल और इमदादी कार्रवाईयों का जायजा लिया जा सके। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के दूसरे निसफ हिस्से के दौरान मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि इम्कान है कि इस माह बारिश तवील मुद्दती औसत का 94% से भी कम होगी। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि मशरकी जजीरानुमा भारत, शिमाल मगरब के कुछ इलाकों, वस्ती भारत और मशरक और शिमाल मशरकी इलाकों में इस तरह के हालात रहने का इम्कान नहीं है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा और कांसे का तमगा हासिल करने पर यशवीर सिंह को मुबारकबाद दी है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल करने के बाद खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गईं। 17 साल तन्वी ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अलूरी सीताराम राजू बैन अल्कवामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों में 18,000 करोड़ रुपए की मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी कर दी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapur.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

0: मंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतक

0: की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना और गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये न जाना था कि उस महफिल में दिल रह जाएगा, ये न जाना था कि उस महफिल में दिल रह जाएगा, हम ये समझे थे चले आएंगे दम भर देखकर, लेकिन ये मुमकिन तो है नहीं कि कोई एफएम गोल्ड के करीब आए और बग़ैर दिल दिए चला जाए। तो जनाब, ये एक ऐसी महफिल है जो हमें आपको मजबूर करती है अपने पास आने के लिए। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं संगीत.com और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे खूबसूरत गीत और उन गीतों का फिल्मी सफ़र, तो बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

कार्यक्रम है संगीत.com और संगीत.com में आज हम गानों के फिल्मी सफर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अनिल दा यानी कि अनिल बिस्वास से लता ने वो गुर हासिल किया जो आज तक उनके गायन की खासियत मानी जाती है। जी हाँ, वो सांस जो कभी सुनाई नहीं देती। अनिल दा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गीत गाते समय सांस कहाँ तोड़नी चाहिए और अगर तोड़े तो इस तरह की खटके नहीं। अनिल दा कहते, पंक्ति को तोड़ना अगर बहुत जरूरी ही है तो इस तरह तोड़ो कि उसके अर्थ को आंच ना आए। तो अनिल दा ने सिखाया कि दो शब्दों के बीच सांस लेते समय हौले से चेहरा माइक्रोफोन से दूर कर लो और सांस लो और तुरंत यथास्थान लौटकर गाना जारी रखो। ये तरीका जो है वो सुनने में जितना आसान लगता है ना, अमल में लाना उतना ही मुश्किल है। माइक से आंख मिचौली की इस प्रक्रिया में आखिरी शब्द का अंतिम अक्षर और नए शब्द का पहला अक्षर दोनों जरा जोर से गाना चाहिए। अब जब लता दी का कोई गाना सुने ना, तो इस बाबत जरा गौर फरमाइएगा। और कोई क्यों, हमें आपको सुनाते हैं वो गीत लता दी के कमाल के हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट कम से कम है और जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ है और जहाँ उनके सांस की जरा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सुनिए इस गीत को।

0: कुछ भी नहीं।
1: चलिए हम याद करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा को, एक जानो पहचाना नाम। संगीत की उन्होंने बहुत सेवा की है और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर उन्होंने फिल्मी संगीत की भी बहुत सेवा की है। लेकिन आप शायद ये न जानते होंगे कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने एक बार एसडी बर्मन के लिए संतूर छोड़ तबला भी बजाया है, और क्या खूब बजाया है। जानना चाहते हैं वो कौन सा गीत है? चलिए हम आपको ये गीत सुनवा देते हैं। फिल्म है गाइड, गौर से सुनिएगा इस गीत को और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के तबले को।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: कार्यक्रम है संगीत.com और मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। फिल्म गाइड से हमने आपको गीत सुनाया और हमने तबले का जिक्र किया, तो चलिए एक और फिल्म से हम आपको एक गीत सुनाते हैं। फिल्म है मेरी सूरत तेरी आंखें और इस गीत के लिए तबला सम्राट पंडित सामता प्रसाद को एसडी बर्मन साहब ने खास तौर से बनारस से बुलवाया था। पंडित सामता प्रसाद के जादू को आप खुद सुनिए और महसूस कीजिए इस गीत के जरिए।

अच्छा, पुरानी फिल्मों में हारमोनियम का बड़ा कमाल का प्रयोग होता था, नहीं? आजकल फिल्मों में होता है पर बहुत ही कम नज़र आता है हारमोनियम का प्रयोग। और पता नहीं, हारमोनियम जब बजता है ना तो एक अजीब सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, बहुत अपना सा लगता है हारमोनियम।

मुझे लगता है कि एक वो भी ज़माना था जब हारमोनियम हर घर में हुआ करता था, और हारमोनियम को एक मकाम तक पहुंचाने की अगर बात करें तो ओपी नैयर का जिक्र किए बिना तो बात बनती नहीं है। लेकिन अभी हम ओपी नैयर की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? अगर सच में हारमोनियम की हम बात कर रहे हैं और अगर आप क़यामत का नज़ारा देखना चाहते हैं ना, तो फिल्म लोफर का एक गीत मुझे याद आ रहा है। कौन सा गीत? कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नच दी फिरा। आशा भोसले की आवाज़ के पहले ओपनिंग में जब हारमोनियम बजता है तो उफ़ क्या लगता है, लगता है कि बस अब उठ जाओ और नाचना शुरू कर दो। हारमोनियम की ये जादू भरी आवाज़ निकालने वाले फनकार का नाम है मास्टर सोनिक। जी हाँ, संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के मास्टर सोनिक जो थे वो बड़े कमाल की बेमिसाल पेटी बजाते थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लगभग सारे हारमोनियम पीस इन्होंने ही बजाए। तो एक सलाम मास्टर सोनिक को और यही गीत आपके लिए।

संगीत.com का ये सफर फिलहाल इतना ही। तो संगीता को इजाजत दीजिए और इस वादे के साथ जाते हैं कि जल्दी ही होगी आपसे फिर मुलाकात। स्टूडियो में नुपुर आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल जो वक्त है वो है समाचारों का। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार आंध्र विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड

0: कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं, इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई 2906 रुपए मिलेगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। 17 साल की तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराया, जबकि मुकाबले में अपनी जगह इन्होंने पक्की की। फाइनल में तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन ग्युएन से होगा। उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में थुई लिन ह्युएन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमैद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे।
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत डोभाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता है कि अजीत डोभाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती, क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेम्बलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना। मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा। जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
3: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो हैं वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज़ जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। It is a fabulous move. कंपटीशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
2: आप एफसीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखें?
3: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था, जो वो देश की खासियत थी वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ।

0: आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम ऑफ द इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी।
0: फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नम्बे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज़ पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आएं देखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया उस सेट पे, जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह सकते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कॉम्पिटिशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पे राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पे जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज

0: the talent that is important that I have.
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया थ्री इडियट्स, तनुवेड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेशन ही था. मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला. हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवेड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग हैं. विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे हैं एक्चुअली. और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे टू में मुझे एक मौका मिला. उसके अलावा मुझे लगता है लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं.
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा? क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर. ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं. सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है. कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को. पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है. तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए. सबको पता था कि हमें करना क्या है. कोई अपनी ओर अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है. कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है. तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल. हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है.
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है. क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता. तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी.
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं. माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है. माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. नमस्कार.
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत. इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा. ये प्रसारण DD News के सहयोग से किया गया.
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी.

बिल्कुल, आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है जिसे आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम है मन भावन और मैं हूँ नुपुर। हर दिन की भागदौड़ के बीच अगर कुछ पल अपने मन के लिए मिल जाए ना, कुछ बातें दिल की हो जाएं और कुछ मुस्कुराहटें बांट ली जाएं और इन सब के साथ अपने ही मन के पसंद के गीतों का साथ मिल जाए, तो यकीन मानिए दिन बेहद खूबसूरत हो जाता है। तो आइए अगले कुछ मिनटों तक आपके भेजे हुए मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स और फरमाइशी गीतों के साथ इस सफर को मनभावन बनाएंगे हम और आप मिलकर। मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए भेजिएगा, नंबर है 9868 68753 9868 88 68753 और ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। और मुझे पता है कि ये नंबर और ये ईमेल आईडी दोनों ही आपके पास एकदम रिजर्व्ड रहते हैं और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है ईमेल्स और मैसेजेस आने लगते हैं। तो लीजिए, ईमेल आ गया है विवेक शर्मा जी का, भोपाल से लिखते हैं, नुपुर जी जिंदगी में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, बस ये कुछ पुराने गीत ऐसे हैं जो सुनते ही लगता है वक्त कुछ देर के लिए मेरे लिए ठहर गया है, कृपया मेरी पत्नी के लिए एक मधुर गीत सुनवाएं। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, संगीत बिल्कुल समय की सबसे खूबसूरत डायरी जैसा है। कोई धुन सुनते हैं हम और ऐसा लगता है बरसों पुरानी कुछ यादें, चेहरे और मौसम फिर से हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपकी पसंद का गीत मैं सुनाऊंगी, लेकिन आपके साथ साथ इस गीत की फरमाइश में जो कुछ और लोग शामिल हैं उनके भी नाम यहाँ पर ले लेते हैं। यह है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, पप्पी और तमन्ना, और ये ईमेल पहुंचा है, आपने 3-4 ईमेल भेज दिए हैं, कोई बात नहीं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, और लिख रहे हैं हमें ज़रूर याद कर लेना मैडम जी, रुलाना मत नुपुर जी। कमलकांत जी बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं होता आपको क्या किसी को भी हम रुलाएं, कभी भी रोइए मत, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ना खुश रहकर और हंसकर स्वीकार कीजिए, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है, क्योंकि पता है क्या होता है, जो हमारे पास है ना बहुतों के पास वो भी कुछ नहीं होता। तो रोना वोना छोड़िए और बस खुश रहिए, और एफएम गोल्ड तो आपका साथी है ही ना। ये हैं जी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिया नायाब जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हुए हैं एफएम गोल्ड के साथ। और ये भाटिया जी की लगातार बहुत सारी मेल्स ने ना सबकी ईमेल्स को पीछे छोड़ दिया है, मतलब अगर रेस लगानी हो ना तो बिल्कुल अव्वल नंबर पर इनकी ईमेल्स आएंगी। कोई भी गीत, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ हैं, अर्चना हैं, प्रणय रामन और किशोर आपकी बिल्कुल फरमाइश पूरी कर देंगे जी। कोई भी गीत, आपका नाम शामिल हो गया इस गीत के साथ जो कि एक्चुअली विवेक शर्मा जी सुनना चाह रहे हैं। और ये हैं दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल साथ में हैं। चलिए रुख करते हैं व्हाट्सएप की ओर, थोड़े से व्हाट्सएप मैसेजेस भी यहाँ शामिल कर लेते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और कमला रानी का ये व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस मैसेज पहुँच गया है। ये कौन हैं आप, हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर, और खुशनुमा गीत कोई भी सुनवा दीजिए, सारे ही खुशनुमा होते हैं क्योंकि वो एफएम गोल्ड पर सुनाए जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आपका व्हाट्सएप मैसेज आ गया है मेरे पास। और ये कौन है, होस्ट नुपुर जी गुड आफ्टरनून, किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में संदेश जरूर पढ़ लीजिएगा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मेघा, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा ये रोमांटिक सा गीत आप तक पहुँच रहा है। फिल्म सच्चा झूठा से आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

वैसे सच है ना, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी धुन बहुत देर तक दिलो दिमाग में बनी रहती है। दिलों का नेटवर्क कहते हैं, जब सच्चा होता है ना तब सिग्नल्स ढूंढने नहीं पड़ते, रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं, बस एहसास होना चाहिए इन रिश्तों के होने का। एक प्यारा सा व्हाट्स

एक मैसेज आया है पूजा गुप्ता का मेरठ से, लिखती हैं, मनभावन सुनते हुए शाम की चाय का स्वाद ही बदल जाता है और दिल का मौसम बदल जाता है। बिल्कुल, वैसे पूजा जी दिल्ली में इन दिनों ना मौसम भी कुछ दिलचस्प हो चला है। कभी धूप मुस्कुरा देती है, कभी बादल बिना बताए मेहमान बनकर चले आते हैं। और देखा जाए तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है, हर मौसम का अपना रंग। अगर बरसात ना हो तो इंद्रधनुष कैसे मिले, और अगर कठिन दिन ना आए तो खुशियों की कीमत कैसे समझ आए, है ना। ये ईमेल मिला है सीमा अरोड़ा जी का, जयपुर से आया है। लिखती हैं, जब भी अकेलापन महसूस होता है FM गोल्ड लगा लेती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही साथ बैठा बातें कर रहा हो। सीमा जी, यही तो रेडियो की सबसे बड़ी पावर है, खूबसूरती है ना। ये सुनने वाले के बहुत करीब होता है, कभी दोस्त बनकर, कभी हम सफर बनकर, हम कदम बनकर, और कभी अपने घर के ही किसी सदस्य की तरह। एक व्हाट्सएप मैसेज है, ये लिखा है ब्रह्म सिंह जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक सावन के ऊपर गाना सुनना पसंद करूंगा। ये गुजारिश नहीं, मुझे तो ऑर्डर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ मैं जब पढ़ रही हूँ ना मैसेजेस, तो बहुत सारे मैसेजेस कह रहे हैं कि जी सावन का एक गीत सुना दीजिए, बनता है जी, मौसम भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है। बिल्कुल, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है, लेकिन हाँ कुछ नाम उससे पहले यहाँ पे शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद बिल्कुल सावन से भरा, उसकी खुशबू से भरा और उसकी महक से भरा और उसका ना एहसास से भरा एक गीत आप तक पहुँचेगा। जवाहर नगर दुर्ग से हैं RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का ये ईमेल। ईमेल पहुँच गया है मेरे पास ओम गायकवाड़, आम्रपाली, अविष्कार, अनामिका और प्रणिता का। बहुत ही प्यारे अच्छे अच्छे से नाम है आप सभी के। आप हैं तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से बहुत सी ईमेल पहुंच रहे हैं। यह है रेलवे कॉलोनी बिलासपुर से वलीउल्ला और W उल्ला साहब, रेशमा नाज, और आपने भी बस मनभावन में अपनी जो है अटेंडेंस लगवा दी है। और ये हैं जी इंदिरा बिहार दिल्ली से, याकूब, यूसुफ, इमरान और इरफान, आप सभी का ईमेल। धनौली तेलीवाड़ा उत्तराखंड से है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू लिख रहे हैं, हमको किसी भी गीत में शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी बिल्कुल, लीजिए शामिल कर लिया आपको हमने किसी भी गीत में। क्या आप तो जो हमारे FM गोल्ड परिवार के सदस्य हो गए ना, तो आप तो हमारे हर गीत में, हर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। और अबासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका ईमेल भी आया है और व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी आया है। FT खान फैमिली भी हमारे साथ है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र, चीपा, कपिल, ईशान और पूजा भी हमारे साथ है। व्हाट्सएप पर भी नज़र डाल लेती हूँ, ईमेल्स ही शामिल करते जा रही हूँ। ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और सौभाग्यवती उषा पाटिल का व्हाट्सएप मैसेज। और जी व्हाट्सएप आ गया है, अच्छा जी अब्बासी परिवार ने व्हाट्सएप भी कर दिया है। ये हैं निगत परवीन, मोहम्मद सईद, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और आपके परिवार के सभी सदस्य। एक व्हाट्सएप जो मेरी नज़रों के सामने है, ये है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और जी ये आ गया है हमारे बहुत पुराने श्रोता मनोहर लाल गांधी, मधु किरण, प्रकाश कोगिया, सत्य प्रकाश कोयल, और आप सभी इस वक्त जुड़े हुए हैं FM गोल्ड के साथ। तो चलिए, बहू बेगम फिल्म से गीत आप तक पहुँच रहा है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर जी की, आशा भोसले जी की और इनके साथ बहुत सी अन्य आवाज़ें भी हैं। ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, ये गीत नहीं, ये नहीं गीत नहीं, इस गीत को बहुत जल्दी है आप तक पहुंचने की, लेकिन फिलहाल हम और आप सावन का एक गीत सुन रहे हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: और FM गोल्ड पर प्रोग्राम मन भावन, साथ मैं नूपुर और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स। थैंक्स फॉर लवली सॉन्ग्स लिख रहे हैं प्रवीण रावत जी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी। और ये है किसका मैसेज है जी, ये छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी, थैंक यू आपने मैसेज भेजा है हमें। और चंडीगढ़ से हैं सतीश और विमला अनेजा। व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आ गया है हमारे पास सतप्रकाश सनोठिया जी का। और ये अगला मैसेज है जी राजस्थान से दिनेश सोलंकी, विजय कुमार, राजकुमार, पंकज और राकेश जी हैं। आप लिख रहे हैं हम भी FM गोल्ड के साथ हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप FM गोल्ड से जुड़े हैं और सुन रहे हैं FM गोल्ड को। ये हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से और मनाली हिमाचल से मैसेज आ गया है व्हाट्सएप के जरिए हर्ष, विनय, विनीत और रोजास का। आपके साथ आपके दोस्त हैं चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश। और यही आपने दो बार लिख दिया है, चलिए मैंने दो बार पढ़ा इसको। चौटाला हरियाणा से दारा जी हैं, संजय और प्रियंका शर्मा जी का व्हाट्सएप के जरिए मैसेज पहुंच गया है हमारे पास। और ये हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, लिख रहे हैं प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हों, दुआ में याद रखना जी। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी दुआओं में हम रहें और हमारी दुआओं में आप रहें, इससे अच्छी कोई बात हो ही क्या सकती है। क्योंकि ये दिल होना बड़ा भोला होता है, जिससे दो मीठी बातें हो जाएं, जिससे दो मीठी बातें सुन लेता है ना, उसी का हो जाता है, उसी को अपना समझ बैठता है। इसलिए मीठी बातें मैं खुद भी करती हूँ और मीठी बातें मैं बोलती हूँ, सभी को करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, दिल से कीजिएगा मीठी बातें। ज़िंदगी में हम पासवर्ड ज़रूर बदलते रहते हैं, लेकिन रिश्तों का भरोसा ना हमें कभी नहीं बदलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय में चीनी कम लेते हैं और बातों में मिठास ज़्यादा रखते हैं, तो बस ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखिए ज़िंदगी, क्योंकि ना दोस्त कोई स्पीड टेस्ट नहीं है, खूबसूरत प्लेलिस्ट है, इसमें अपने पसंद के गाने डालिए, सुनते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और खुश रहिए। क्योंकि खुश रहना यानी मुस्कुराहट जो होती है ना, उसको कोई MRP कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और दिल की जो बैटरी है वो प्यार से चार्ज होती है, और दोस्ती उसका फास्ट चार्जर है, ठीक वैसे ही जैसे कि दोस्ती है हमारी और आपकी। ईमेल के ज़रिए भी हम दोस्ती निभा रहे हैं ना। ये है शरफुद्दीन, फातिमा और सुमित रमेश साहू बक्सर बिहार से, बक्सर से ही हैं श्रद्धा, परमानंद और पंकज। ये हैं जी राज, SD अंसारी, आसमा खातून और इकबाल। और किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, हर गीत में शामिल हैं आप हमारे, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको इग्नोर करते हैं। मोहम्मद कलीम अंसारी हैं, जहीरा और मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, आपने कहाँ से, गंज डुंडवारा कासगंज से आपने ईमेल पहुंचाया है। पोटिया काला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा का, ये बड़ा बड़ा आपने बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखकर ईमेल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और ये हैं रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी। और एक और जो ईमेल आया है और व्हाट्सएप भी है वो है, बहुत सारे हमारे नियमित श्रोता हैं, नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन और संजय ढींगिया, आप सबने एक साथ एक मैसेज डाला है दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब की ओर से। आप लिख रहे हैं और गीत की फरमाइश जो है वो है धर्मात्मा फिल्म से, किशोरदा की आवाज़ में, तेरे चेहरे में वो जादू है। तो ये गीत चलिए मिलकर सुनते हैं हम भी।

0: चाहता
1: हूँ। नुपुर जी, आज हमारा मैसेज शामिल नहीं होगा, क्या ऐसा लिख रहे हैं आप? हमारे श्रोता एफएम गोल्ड के नजफगर जयविहार से फारूक, शाहरुख, शहनाज, शबनम और चीकू, अब बताइए नाम सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? और एक ना बहुत ही प्यारा सा ये मैसेज मेरी नज़रों से गुजरा, प्लीज़ मनभावन को 5 बजे तक कर दें। गुरमीत सिंह जी लिख रहे हैं, लेकिन गुरमीत सिंह जी मैं आपको बता रही हूँ, अगर 5 बजे तक कर देंगे तो आप फिर बोलेंगे प्लीज़ इसे 7 बजे तक कर दीजिए, और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ना बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ जितनी रहती है ना, जितनी उसकी लिमिट रहती है ना, उतनी ही बस इन्जॉय करने के लिए होती है, और उसी में हमें खुश रहना चाहिए। क्या कहते हैं आप बताइएगा ज़रूर। कस्बा बिलराम से हैं इरशाद अहमद शाह, शानस शाह, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब का ये व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया है मेरे पास, और ये हैं जी छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। और जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, तो आप टाइपिंग भी कर रहे हैं तो मुझे नज़र आ रहा है, और आपका मैसेज ना ऐसे ऐसे डांस कर रहा है ऊपर नीचे, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ, मैं तो यही चाहूँगी। ये आपका ईमेल भी आ गया है, और उसमें आपने लिखा है कि प्यार भरा आदाब आपको, आपकी मधुर आवाज़, प्रस्तुति का नायाब अंदाज बहुत सटीक और शानदार, आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आप भी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी भी तमन्ना है। हमारा नंबर कब आएगा जी? जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु, आप कहाँ से लिख रहे हैं? होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से। तो नंबर आपका आ गया है, सबका नंबर लग जाए तो बहुत मुश्किल है ना, बताइए। इतनी सारे स्पीड से ना एक के बाद ईमेल्स यहाँ पर आ गए हैं, और उतनी ही ज़्यादा स्पीड से व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए हैं। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग का ये ईमेल मेरी नज़रों के सामने से जो गुजर रहा है। अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम, आप हैं मलियान सरगना मेरठ से, और जय जिनेन्द्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। शेरवानी स्कूल गंजुनवारा से ये हैं रियाज, अनवर और लुबना, आप सबका ईमेल पहुँच गया है हमारे पास। और देख रही हूँ किसका है जी, ये ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद रहता है कि कौन सा पढ़ा है, ये ईमेल भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए व्हाट्सएप की ओर नज़र डालते हैं। एक थैंक्स फॉर प्लेइंग लवली सॉन्ग्स रिस्पेक्टेड होस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस, कैसे हैं आप? बहुत

अली पाठक का व्हाट्सएप मैसेज हाय लिखकर कोई भेज रहे हैं लिसनर, लेकिन नाम नहीं लिख रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ और प्रस्तुति शैली का कोई मुकाबला नहीं। जनाब, हमारे जो लिसनर्स हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं। आपके मैसेजेस का अंदाज़ और आप जो लिखते हैं ना, क्या कहूँ मैं, तो बिल्कुल कायल हूँ। और अब मैं जब नज़र डाल रही हूँ ना टाइम पर, तो ये इतनी जल्दी से भाग गया है कि मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल लास्ट ये गाना आप तक पहुंचा रही हूँ, ज़माने को दिखाना है फिल्म से ये गीत है, शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़। उत्तम नगर से हैं जयराज, सचिन, अमन, दीपांशु जिन्होंने फरमाइश भेजी, और ये हैं जी के परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल गुजरात से, आपके साथ गणेशपुर गंजुनवारा से एम फारूक, शमा, साइमा, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान, आप सबकी तरफ से गीत एंजॉय कीजिए और FM गोल्ड से जुड़े रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र की तेजी से होते विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में परिचित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना के ने आम नागरिकों

0: के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आतंकवादियों की तलाश जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बीच मौसम विभाग ने मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रीति पवार और जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में, वहीं जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक अपने देश के नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said, "The projects launched today spanning roads and energy security reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development." Highlighting the significance of the new airport, the Prime Minister said it would serve as the runway for the growth and development of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and act as a launch pad for a brighter future and greater opportunities for the youth of the state.
2: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 years में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: Prime Minister Modi also witnessed a traditional Thimsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra.

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं और वक्त है कुछ प्यारे से फिल्मी गीतों का. पहुंचा रही हूं आप तक 1970 एक हिंदी रोमांटिक फिल्म का गीत. फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं. सुरेश सैगल द्वारा निर्मित और रमेश सैगल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नजर आए धर्मेंद्र, साधना, बिस्वजीत, कामिनी कौशल, लीला मिश्रा, अभी भट्टाचार्य, जगदीप, नादिरा और हेलेन. वेल, इस फिल्म में धर्मेंद्र और साधना ने एक रोमांटिक पेयर के रूप में काम किया और माना जाता है कि जी एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक साथ काम किया और क्या खूब काम किया और गीत भी क्या खूब है. पहुंच रहा है आप तक, गाया है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब ने.

पहुंच रहा है आप तक इन्हीं दो प्यारी आवाजों में। अगला गीत फिल्म धरती से 1970 की ही ये फिल्म है, एक एक्शन फिल्म है। इसे सी वी श्रीधर जी ने लिखा, निर्देशित भी किया। राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और शिवाजी गणेशन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। और कमाल की बात, 1969 में बनी तमिल भाषा की फिल्म शिवंधा मन का रीमेक है ये बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म धरती।

0: उपप्रबंधक तकनीकी खनन, सहायक प्रबंधक तकनीकी खनन और उपप्रबंधक तकनीकी वाणिज्य और खरीद। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव अपेक्षाएं, छूट, पोस्टिंग का स्थान और अन्य संबंधित विवरण संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपप्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी आईटी, प्रबंधक तकनीकी आईटी, उपप्रबंधक तकनीकी आईटी तथा उपप्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन गैर तकनीकी पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक विधि, प्रबंधक विधि, वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा और प्रबंधक सुरक्षा। इसी क्रम में कुछ अन्य पद हैं: वरिष्ठ प्रबंधक चिकित्सा, महाप्रबंधक वित्त, मुख्य प्रबंधक वित्त, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त E4, उप प्रबंधक वित्त E2, सहायक प्रबंधक वित्त E1, उप महाप्रबंधक विपणन E6, उप प्रबंधक बिक्री E2, उप प्रबंधक विधि और HRM E2, उप प्रबंधक HRM प्रशासन, सहायक प्रबंधक HRM, सहायक प्रबंधक राजभाषा और सहायक प्रबंधक कंपनी सचिव। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव अपेक्षाओं, छूट, पोस्टिंग के स्थान और अन्य संबंधित विवरण के लिए देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। आवेदन 10 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: किया। वहीं आज से विश्व स्तनपान सप्ताह भी शुरू हो रहा है। एक ऐसा सप्ताह जो उस मां को नमन करता है जो अपने आंचल में केवल बच्चे को नहीं बल्कि उसके स्वस्थ भविष्य, उसकी पहली सुरक्षा और अपना निस्वार्थ प्रेम भी संजोए रखती है। एक अवसर हमें हर महिला के सम्मान और अधिकारों का संदेश देता है तो दूसरा अवसर उसकी ममता और जीवनदायिनी शक्ति को सलाम करता है। ये केवल दो अवसरों का संयोग नहीं बल्कि हर उस स्त्री को नमन करने का अवसर है जो अपने अधिकारों की रक्षा भी करती है और अपने प्रेम से जीवन को पोषित भी करती है।
1: And a truly meaningful start to the August month, isn't it? Well, today it's 1st of August. So celebrating both a women's right to equality and her extraordinary gift of nurturing life. And beyond these two significant observances, there are three more important global days being marked today. We'll take our listeners through them in our Dateline segment.
0: बिल्कुल परिक्रमा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कार्यक्रम में हम जिन चीज़ों की बात करेंगे और जिनको लेकर आए हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, राष्ट्रीय समाचार भी होंगे और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नज़र रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जन्मदिवस या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश। वेल, वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू बी विद यू एंड टू प्रेजेंट आवर प्रोग्राम परिक्रमा फॉर आवर लिसनर्स। वेल, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। वेल, विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर लिसनर्स व्हाट विल बी कमिंग अप फॉर देम इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
0: बिल्कुल।
1: Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh.
0: प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया।
1: In Jammu and Kashmir, a second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries.
0: 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई।
1: Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas.
0: और भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची।
1: So this is our segment Dateline India. First, let's begin with this quote actually. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. It's such a profound thought. Those timeless words by American poet William Ross Wallace remind us that when we nurture mothers, we nurture the future itself.
0: जी हाँ, प्रत्येक वर्ष पहली से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस अभियान की शुरुआत 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन ने दुनिया भर में स्तनपान को बढ़ावा देने, उसे सुरक्षित रखने और उसका समर्थन करने के लिए की थी।
1: So World Breastfeeding Week 1-7 of August and it also commemorates the 1919 Innocenti Declaration adopted in Florence, Italy, where governments and international organizations pledged to create policies that encourage and protect breastfeeding.
0: जी हाँ, अफ्रीका की एक बहुत सुंदर कहावत है, जिस बच्चे को गांव अपनाता नहीं है वो उसकी गर्माहट महसूस करने के लिए उसे ही जला देता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ बच्चे की परवरिश करना कभी भी सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, ये परिवारों, कार्यस्थलों, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
1: So let's talk about the composition of breast milk. This is often called a baby's first vaccine.
0: जी.
1: So the breast milk, the first thick yellowish milk, it is known as colostrum. This is packed with antibodies that help protect newborns against infections and it's very powerful and it strengthens their developing immune systems. The first one.
0: बिल्कुल शगुन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सलाह देते हैं कि जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाए, पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान कराया जाए और 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ साथ स्तनपान जारी रखा जाए।
1: Well, that is true, Mukesh. And as we mentioned in the beginning of the program that this day is also observed in India as Muslim Women's Rights Day, right?
0: बिल्कुल, ये दिन 2020 से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की याद में मनाया जाता है, जिसने तुरंत 3 तलाक या तलाक बिद्दत की प्रथा को गैर कानूनी और अमान्य घोषित कर दिया था।
1: Well, right, and the observance Mukesh, it marks a significant legal milestone and which is aimed at strengthening the rights, the dignity and legal protection of Muslim women. Former United Nations Secretary General Kofi Annan once said, there is no tool for development more effective than the empowerment of women. And how right?
0: बिल्कुल, आज के दिन ये शब्द बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जब महिलाओं को समान अधिकार, कानूनी सुरक्षा और अवसर मिलते हैं तो परिवार समृद्ध होते हैं, समुदाय मजबूत होते हैं और देश आगे बढ़ते हैं.
1: True. The society, I believe, cannot succeed when half of its population they are held back, whether it is ensuring that every newborn receives the healthiest possible start through breastfeeding or also ensuring that every woman can live with equality, justice and dignity. So today's observances, they carry the same message, Mukesh, that empowering women, it is not simply about improving one life, it is about building a better future for all.
0: बिल्कुल शगुन, जब माताओं को सहयोग मिलता है तो बच्चे फलते फूलते हैं. जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज तरक्की करता है और जब सम्मान एक साझा मूल्य बन जाता है तो मानवता सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ाती है.
1: Also, we have World Lung Cancer Day, World Wide Web Day, National Mountain Climbing Day as well, Mukesh.
0: जी हाँ, ये दिन माताओं और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान तो केंद्रित करता ही है लेकिन दुनिया तीन अन्य महत्वपूर्ण अवसरों को भी मना रही है जो हमें स्वस्थ जीवन जीने, बड़ी सोच रखने और नई चीज खरीदने के लिए खोजने के लिए प्रेरित करते हैं.
1: सो फर्स्ट वन, let's take it one by one. World Lung Cancer Day. This is observed every year on 1st of August and it was established in 2012, World Lung Cancer Day. And this was done by the Forum of International Respiratory Societies in collaboration with the International Association for the Study of Lung Cancer and other global health organizations.
0: जी हाँ, इसका मकसद फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है और साथ ही इसकी रोकथाम, शुरुआती पहचान, समय पर इलाज और मरीजों के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है.
1: And we also hear from our elders that prevention is better than cure. So avoiding tobacco, reducing exposure to air pollution, also harmful substances and seeking timely medical advice can significantly reduce the risk of lung cancer.
0: तो आइए हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे आगे बढ़कर उस वेब की बात करते हैं जो दुनिया को जोड़ता है.
1: जी.
0: 1 अगस्त को मनाया जाने वाला वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक है. वर्ल्ड वाइड वेब का जश्न मनाया जाता है और इसे 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था.
1: एंड इट वाज डिजाइन टू मेक इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल अक्रॉस द इंटरनेट. द वेब ट्रांसफॉर्म द वे वी लर्न, वी वर्क, वी कम्युनिकेट, वी इनोवेट एंड सो ऑन.
0: जी हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नहीं बल्कि इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है जो हमें वेब ब्राउजर के जरिए वेबसाइट को एक्सेस करने की सुविधा देती है.
1: सो रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज इन्वेंशन, हुज इन्वेंशन, सर टिम बर्नर्स-ली वंस सेड दैट द वेब डज नॉट जस्ट कनेक्ट मशीन्स, इट कनेक्ट्स पीपल. Wow. And 3 decades later, those words, they continue to define the power of technology that has brought the world closer than ever before. Right?
0: जी हाँ, और आखिर, बिल्कुल बिल्कुल. और आखिर में हम उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि आसमान भी कोई सीमा नहीं है, पहले अगस्त को मनाया जाने वाला नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे रोमांच और दृढ़ संकल्प की भावना का सम्मान करता है.
1: And this day commemorates the achievements of Bobby Matthews, who is credited with climbing all 46 high peaks of New York's Adirondack Mountains by 1st August 1970.
0: बिल्कुल, मशहूर पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी के शब्दों से बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती. वे तेंजिंग नोर्गे के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे. उन्होंने मशहूर बात कही थी, हम पहाड़ को नहीं बल्कि खुद को जीतते हैं.
1: राइट, वी आर टेलिंग यू अबाउट एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी, ऑल्सो माउंटेनियर बॉबी मैथ्यूज एज वेल. एंड एवरी समिट रिमाइंड्स अस दैट द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर ऑफन ओवर आवर ओन फियर्स, डाउट्स एंड आवर लिमिटेशंस.
0: बिल्कुल शगुन, चाहे बात हमारे फेफड़ों की देखभाल की हो या वर्ल्ड वाइड वेब की असीमित संभावनाओं की हो या नई ऊंचाइयों को छूने का साहस करने की हो, आज ये आयोजन हमें एक साझा संदेश देते हैं कि स्वस्थ जीवन जिए, लगातार सीखते रहें और हमेशा और ऊंचे अपने लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करते रहें. और आकाशवाणी पर परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है

0: अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ उनके पास विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले पौंडीचेरी चलें।
1: Exactly. How did you know about it? So we will talk about the Manifest Dance Film Festival. Celebrating the artistic fusion of dance, movement and cinema, this is underway at Vision Vivekanand Studio on Old Auroville Road near Puducherry. So the second day of the three-day festival features a packed schedule of workshops, international film screenings, discussions and live performances. Let's gather more details from our correspondent.
2: The day began with the ripple effect, an embodied movement practice, a contemporary movement workshop conducted by Mumbai-based dancer and educator Melita D'Souza. This was followed by a walking techniques workshop led by Kolkata-based artist Sangram M. and Movement as Ritual, a session conducted by classical dancer and arts-based therapist Mrunmoy Majumdar. A panel discussion later explored various aspects of dance film practice and screen choreography. The evening program features two curated packages of international short dance films. The first, Edge of Reason, brings together films from Spain, Canada, United States, Finland, and Netherlands. The films explore themes ranging from human relationships and environmental concerns to climate grief and emotional resilience. The second package, Persistence, showcases films from Nigeria, United States, Germany, Brazil, and United Kingdom, exploring identity, memory, family, womanhood, and belonging through movement-based storytelling. The festival's live performance segment presents a double bill featuring Melita D'Souza Ripple Effect and Sangram M's Empress Queen vs. Skyrathi 2026. The day's events will wrap up with Under the Stars, an open-air screening of international dance films from the United States, Mexico, Poland, Finland and Hong Kong. The festival will conclude tomorrow. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
0: और पुदुचेरी से शगुन आप अपने श्रोताओं को ले चलते हैं गोवा।
1: ओके।
0: गोवा अपनी समृद्ध स्थापत्य विरासत को आधुनिक तकनीक और सतत विकास के साथ जोड़ते हुए देश के लिए एक नई मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गोवन आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विरासत संरक्षण, हरित भवन, जलवायु अनुकूलन, विकास और भविष्य की शहरी योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में नीति निर्माताओं, प्रसिद्ध वास्तुकारों, शहरी योजनाकारों, सतत विकास विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और देश विदेश से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। इसमें गोवा की वास्तुकला और विरासत संरक्षण के साथ हरित भवन, जलवायु अनुकूल निर्माण और सतत विकास जैसे विषयों पर मंथन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा
4: कि मैं अभिनंदन करना चाहता हूं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी का और गोवा सरकार का कि उन्होंने ऐसे कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट पर जो केवल भारत के लिए नहीं, केवल विश्व के लिए नहीं अपितु मानवता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यशाला, इसका भाव और इस पर होने वाला डिस्कशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए, सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, उसकी साकार अभिव्यक्ति की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। आज जब दुनिया कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रही है, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, तब इस तरह का विचार मंथन करने के लिए आयोजित की जाने वाली सेमिनार जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है और दूरगामी परिणाम करने वाली भी होंगे।
3: सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विरासत संरक्षण और आधुनिक विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का समन्वय गोवा को सतत विकास का एक प्रेरक मॉडल बना सकता है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: और शगुन, गोवा से अब अपने श्रोताओं को ले चलते हैं उड़ीसा।
1: Exactly. So as dawn breaks over the plains of western Odisha, the rhythmic beats of dhol, tasa and muhuri fill the air. Women draped in vibrant sambalpuri saris, men wearing colorful gamchas and children in traditional attire, they come together with pride. It is Sambalpuri Din, a celebration of the language, culture, traditions and enduring spirit of western Odisha.
5: Observed every year on the occasion of the birth anniversary of Guru Satyanarayan Bohidar, Sambalpuri Din is a tribute to the visionary who devoted his life to the promotion and preservation of Sambalpuri language and literature. Let's

0: hear more from a folk researcher, Sapan Mishra.
1: Serious poetry and standardizing the language in terms of grammar was the main contribution of Satyanarayan Bahidhar. He proved that this language has the capacity to express higher thoughts. The 1st of August is celebrated as Sambalpuri Din to highlight the language, literature, tradition and culture of this region, which is classed apart from the main culture of Orissa.
0: Across all the districts of Western Orissa, the occasion is marked by colorful rallies, literary gatherings, cultural programs, folk performances and handloom exhibitions. The celebration is incomplete without the rhythm of Dalkhai, the grace of Rasarkeli and the devotion of Karma and the vibrant sounds of traditional percussion. Equally remarkable is the world-renowned Sambalpuri Ikkat handloom, whose exquisite craftsmanship has become a cultural ambassador of Odisha across the globe. Sambalpuri Din also reminds us of our collective responsibility to preserve the language, protect folk traditions, support artisans and inspire the younger generation to embrace their rich cultural heritage. For Parikrama, this is Supriti Mishra, Akashvani Sambalpur.
2: और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। गोरखपुर शहर के विकास में पिछले 23 जुलाई को एक और उपलब्धि जुड़ गई। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.65 किलोमीटर लंबे 6-लेन फ्लाईओवर की सौगात दी। गोरखपुर शहर के विकास की दृष्टि से इस फ्लाईओवर को प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहे गोरखपुर शहर को पहले 6-लेन फ्लाईओवर की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है। इसके माध्यम जितने तेज होंगे उतनी ही तीव्र गति से प्रगति होगी। प्रगति से समृद्धि अपने आप आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान की संकल्पना को और आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 3 साल 4 महीने में ट्रांसपोर्ट नगर और पैडले गंज के बीच बना यह 6-लेन फ्लाईओवर गोरखपुर शहर को सिर्फ जाम से मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि विकास की रफ्तार को अर्थव्यवस्था की पटरी पर और तेज करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर में निवेश आकर्षित होगा, नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगे तथा एमएसएमई, परिवहन, वेयर हाउसिंग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
4: बैक टू दिल्ली।
2: जी,
4: so Organ Retrieval Banking Organization of AIIMS New Delhi today felicitated 38 organ, tissue and whole body donor families in New Delhi. We have a detailed report.
5: The event aimed at nurturing students as future ambassadors who will carry the message of organ and tissue donation as well as help dispel prevailing myths, participate in awareness building activities, foster a spirit of collective participation and further strengthens the cause of organ and tissue donation. It featured a training program for doctors and school competitions. Director of AIIMS New Delhi, Professor Nikhil Tandon, said that every year organ and tissue donation gives a new lease on life to patients with end-stage organ failure. He described the decision of donor families to give amid personal grief as a noble deed that grants new life to many and stands as an enduring testament to human compassion. The event brought together donor families, transplant recipients, transplant experts, government officials, police officials and civil society partners. With Nisha and Arzu, Soumya Sharan for Parikrama, Akashwani Delhi.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं कि खेल की हलचल में क्या है। तो जानते हैं कि ग्लासगो ओपन में ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वहां पर क्या हो रहा है।
6: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
4: So at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxer Jasmine Limboria today clinched the gold medal in women's 57 kg weight division. Jasmine defeated defending champion Michaela Walsh of Northern Ireland 5-0 to back the

0: the yellow medal, which is gold. And this marks the second gold for India in the boxing event at the Commonwealth Games. Earlier, another Indian boxer, Preeti Pawar, won a gold in the women's 54 kg category. The reigning Asian champion defeated Scarlett Delgado of Canada 5-0 in the final clash to win India's first gold medal in the boxing event at the Commonwealth Games 2026. So India will have multiple medal opportunities today, with boxing taking center stage, led by Olympic medalist Lovlina Borgohain. She competes in their respective finals, all the other people as well. Indian boxers have marked India's best ever boxing performance at the Commonwealth Games.
1: और अब हम याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए।
3: राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया।
2: राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमना लाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया।
3: गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था।
2: 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया।
1: और अब हम याद कर रहे हैं विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की थी। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी और इसके वे अध्यक्ष रहे तथा 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आजादी के लिए संघर्ष में मुस्लिम एकता का प्रावधान था। तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पुणे में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिन तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया।
0: Today we are also remembering Neeraj C. Chaudhary. Well, the prolific author, best known for works like The Autobiography of an Unknown Indian, The Continent of Sirks, An Essay on the Peoples of India. For The Continent of Sirks, he was awarded the prestigious Duff Cooper Memorial Award in 1966. It's a very prestigious award and making him the first and only Indian to bag that.
1: और हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा, कटोरा भर और भूतनाथ जैसी रचनाएं की थी। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब हम याद कर रहे हैं भगवान दादा को। जी हाँ, भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक रहे हैं। भगवान दादा अपनी प्रसिद्ध सामाजिक और हास्य फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले भगवान दादा ऐसे अलबेला सितारा थे जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित हैं। तो क्यों ना भगवान दादा का पहले ये डायलॉग सुना जाए।
4: मेरे बाप दादा फ्रांसीसी हुकूमत के जमाने से घरों की देखभाल करते थे। आज मैं वही वर्दी पहन के वही काम कर रहा हूं। जानती है, सरकार के 500 घोड़े मेरे कब्जे में हैं।
5: अरे अपना दिल तो मोटर का दिल है, पेट्रोल हो तो झटपट वरना फटफट। आखिर देख लेना मेरी बात सच निकलेगी, आने दो मालकिन।
6: हाँ हाँ, मैं अभी जाकर मालकिन को बुला लाती हूँ।
7: आपके कब्रे में 5 रुपए मिठाई,
6: 5000 रुपए की मिठाई।
7: दुआ कबूल हो गई तो दुआ निकल जाएगा।

0: How great we were remembering Bhagwan Dada. And now, you listeners, for decades, Indian cinema has romanticized and enshrined the sorrow of Meena Kumari. Well, the tragedy queen. What began as a screen title gradually became a reflection of her life, where the sorrow she portrayed on screen and the heartbreak she endured in real life became one and the same.
1: जी हाँ, इनका पूरा नाम महज़बी बानो था. मीना कुमारी अपना दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रहीं. उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, परनीता, बहू बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में रहीं. तो क्यों ना साहिब बीबी और गुलाम का ये डायलॉग सुना जाए.
2: जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी. पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना. स्वामी ही औरत का देवता है. पर यहाँ आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते. अब तुम ही बताओ, सेवा करूँ तो किसकी. सच अजीब घर है ये, अजीब घर. इतने बड़े घर की बहू बनी मैं. इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है. पर ये सारे सुख खोखले हैं, भूतनाथ खोखले.
0: Well, the voice, the expressions and everything, the emotions. Now let's listen to a song which she herself has penned.

और मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सीमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजडी को उतारते हुए गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी जिंदगी में भी ट्रेजडी का ही रोल निभाना पड़ा। और उनकी हमने एक गाना और निकाला है, वो सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
3: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा।

0: इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met Diwan of Mysore Sir K. Seshadri Iyer and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. The Prime Minister was shown around the Vivek Smarak, where he paid floral tributes at the Swami Vivekanand statue. He also planted a sapling at the Smarak. The Prime Minister will be addressing the gathering in a short while from now. Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitarama Raju International Airport in Bhogapuram in Vizianagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today, spanning roads and energy security, reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Highlighting the significance of the new airport, the Prime Minister said it would serve as the runway for the growth and development of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and act as a launch pad for a brighter future and greater opportunities for the youth of the state.
2: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है प्रोग्राम गाते गुनगुनाते में, मैं हूं नूपुर। साथियों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिन्हें जिया जाता है। उनमें कभी तो कहीं कॉलेज के कैंटीन की हंसी होती है, कहीं पहली मोहब्बत की धड़कन होती है, कभी इन गीतों में दोस्तों की शरारतें, तो कहीं किसी अपने की मीठी सी याद बसी होती है। आज की महफिल सजी है 80 और 90 के दशकों के सदाबहार मेलेडी से भरपूर नगमों के नाम, जिन्होंने न जाने कितनी ही पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। कहते हैं ना कि अच्छे गीत कभी बूढ़े नहीं होते, सिर्फ ऐसा होता है कि उन्हें सुनने वाले, उन्हें चाहने वाले थोड़े उम्र में बड़े हो जाते हैं। तो 80 और 90 के दशकों के गीतों की बात करें तो यही तो इनकी खूबसूरती है। ना सोशल मीडिया था उस समय, ना प्लेलिस्ट, ना स्ट्रीमिंग एप्स थी, लेकिन फिर भी हर घर में एक रेडियो था, एक कैसेट प्लेयर था और थी ढेर सारी धुनें, मेलोडीज, म्यूजिक था जो पूरे परिवार को ना एक साथ बैठने का बहाना दिया करता था। तो चलिए फिर आज की शाम हम साथ चलते हैं इस खूबसूरत सफर

पर। और जो गीत आप तक पहुंच रहा है वो गीत है 1981 की फिल्म सिलसिला से, आवाज़ लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। और इस फिल्म के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म इसे माना जाता है, जिसे यश चोपड़ा जी ने निर्देशित किया, निर्मित किया। और कहानी जो है वो एक रोमांटिक नाटककार की है, अमित जिनका नाम है, उनकी पत्नी है और उनकी पूर्व प्रेमिका है, और एक प्रेम त्रिकोण हमारे सामने रखती है ये फिल्म। संगीत शिव हरी ने तैयार किया, और जो गीत है, बहुत सारे इस फिल्म में गीत हैं, सबने बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखे, जावेद अख्तर साहब, हसन कमल, देन मीराबाई, निदा फासली, राजेंद्र कृष्ण, हरिवंश राय बच्चन, सब ने गीतों को लिखा है और आप तक पहुँच रहा है एक बहुत ही प्यारा सा लोकप्रिय गीत इस फिल्म से। आइए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: हम वहां आ गए हैं साथ साथ चलते जहां हमें आना ही था, यानी एफएम गोल्ड की इस प्यारी सी डगर पर गाते गुनगुनाते के इस खूबसूरत सफर पर। तो बस रहिएगा साथ, कुछ जरूरी बातें हासिल कर लेते हैं, मालूमात जान लेते हैं और फिर आगे बहुत सारे गीत अभी आप तक पहुंचना बाकी हैं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा ये नगमा है। इसकी बड़ी खासियत यह है कि इसमें फारसी और ब्रज हिंदी का अनूठा संगम है। फिल्म गुलामी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार गुलजार, मूल रचना जो है वो अमीर खुसरो साहब की है। और ये गीत कुछ ऐसा है जो कानों में भले ही पड़ता हो लेकिन सीधा दिल तक पहुँचता है, दिल

सुना जाता है और दिल छूकर ही मानता है, क्योंकि कुछ गीत ना समय की सीमाएं पार कर जाते हैं। एक कालजयी गीत है जिहाल मस्की। ये गीत होते हुए भी इसकी जड़ें जो है लगभग 700 साल पुरानी साहित्यिक परंपरा से जुड़ी हैं। महान सूफी कवि अमीर खुसरो जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना में फारसी और हिंदी भाषा को एक साथ पिरोया था और सदियों बाद गुलजार साहब ने उसी भावभूमि को आधुनिक फिल्मी गीत में बड़ी ही नज़ाकत, नफासत और खूबसूरती से ढाल दिया। ये गीत नई पीढ़ियों तक भी उसी ताजगी के साथ पहुंच रहा है जितना तब ये ताज़ा महसूस हुआ था जब ये आया था, यानी 1985 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब हमने सुना था इस गीत को। और जितनी बार भी सुनते हैं इस गीत को, एक ना ये नया सा एहसास छोड़ जाता है। और मेरी प्लेलिस्ट में तो यकीनन ये जो गीत है ये हमेशा ही रहता है। तो कभी कभी ना जब पता नहीं था मुझे, तो मेरे भी जहन में ये सवाल उठता था कि ये जिहाल मस्की का मतलब क्या होता है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि इस बेबस प्रेम में डूबे दिल की हालत से यूँ बेखबर मत रहो। और यकीनन मोहब्बत की एक ऐसी पुकार है इस गीत में जिसमें शिकायत भी है, एक प्यारा सा अपनापन भी है। जैसे आजकल हम कहते हैं ना टाइपिंग, लास्ट सीन, ब्लू टिक, लेकिन उस दौर में दिल की बात समझने के लिए ना तो टाइपिंग था, ना लास्ट सीन था, ना ब्लू टिक थी, बस थी तो एक प्यारी सी नज़र या एक कभी कभी खत या फिर ऐसा कोई गीत जो सब कुछ कह दिया करता था।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन बने। प्री रजिस्टर्ड भर्ती दिल्ली और बेंगलुरु में 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आज की शाम गाते गुनगुनाते प्रोग्राम में आप तक पहुंच रहा है फिल्म जाबाज से ये रोमांटिक सा गाना। 1986 की इस फिल्म में इस गीत के लिए आवाजें दी किशोर दा और साथ में सपना मुखर्जी ने, और संगीत की रचना की कल्याण जी आनंद जी ने।

कुछ सॉन्ग्स की ना यही खूबसूरती और खूबी होती है कि वो आकर चले जाते हैं, हमारे कानों से टकराते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके बोल, उनका म्यूजिक बहुत देर तक ना हमारे साथ रहता है, एक कह सकते हैं ना हॉन्टिंग म्यूजिक की तरह। तो क्या आपको याद है वो दौर जब किसी एक कैसेट में चार पसंदीदा गीत आपके होते थे, और अगर पांचवा गीत भी सुनना हो ना तो पहले पूरी कैसेट के वो चार गाने सुनिए और उसके बाद इंतज़ार कीजिए और फिर पांचवें गाने पर आइए, या फिर बार बार फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाते जाइए जब तक उस गाने पर ना पहुंच जाए। लेकिन इस सब में भी ना एक अलग सी खुशी थी। आज यकीनन हजारों गाने क्लिक पर उपलब्ध हैं, लेकिन रेडियो की यही तो अदा सबसे प्यारी है कि ये हमें वही सुनाता है और उस वक्त ही सुनाता है जिस वक्त ना जिस पल में शायद हमें सबसे ज्यादा जरूरत उस सॉन्ग की होती है। अगर आपके पास भी 80s और 90s की प्ले

प्लेलिस्ट है हुजूर, तो प्लेलिस्ट का एक मस्ट हैव सॉन्ग आप तक पहुंच रहा है फिल्म रॉकी से। आवाजें किशोर दाल, लता मंगेशकर जी की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक क्रिएट करके मैजिक क्रिएट किया आरटी बर्मन जी ने।

बस इसी मैजिकल टोन को हम पकड़ कर रखते हैं और फिल्म बरसात का ये गीत सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की बाकमाल आवाजों में। 1995 की ये फिल्म है, राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित, धर्मेंद्र जी द्वारा निर्मित और एक रोमांटिक एक्शन फिल्म के तौर पर ये रिलीज हुई। इसमें डेब्यू किया बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने और इनके साथ डेनी डेंजोंगपा, राज बब्बर और मुकेश खन्ना ने सहायक भूमिकाएं अदा की। और कमाल की बात है कि ये जो दोनों नए कलाकार पर्दे पर आए, दोनों ने ही फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू बॉबी देओल और सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू ट्विंकल खन्ना। साथ ही साथ इस फिल्म ने जीते दो और फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ छायाकार के लिए जो मिला संतोष सिवन जी को, और फिर राकेश रंजन ने सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। और कहते हैं जी जब ये रिलीज़ हुई तो 210 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज़ हुई, शानदार प्रतिक्रिया मिली इस फिल्म को, बहुत अच्छा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई ये फिल्म। पहुंच रहा है ये गीत आप तक, सुनिए इसको और लुत्फ उठाइए 90s के दौर के इस मैजिक का।

बढ़ रहे हैं हम अगले गीत की ओर, जो चुना गया है फिल्म शक्ति से किशोर दा, लता मंगेशकर जी की आवाजों में। म्यूजिक आर डी बर्मन का, गीत लिखा आनंद बख्शी ने। और आर डी बर्मन जी के संगीत की बात करें तो उनकी खूबी यही थी कि वे फिल्म के मूड को समझ कर ना धुन बनाते थे। अब शक्ति जैसी गंभीर फिल्म के लिए भी उन्होंने ऐसा रोमांटिक मधुर गीत रचा जो कहानी की गति को रोके बिना ही उसमें एक नजाकत, कोमलता सी घोल देता है। वैसे जनाब, मोहब्बत भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है, कब कहाँ कैसे हो जाए, इसका कोई जीपीएस लोकेशन तो होता नहीं। और शायद इसीलिए इस गीत को आज के दौर में जब सुना जाए तो अपना सा लगता है। और हमेशा ना एक बात महसूस होती है कि पुराने दौर में, मतलब 80 का दशक, 70 का दशक, 90 का दशक, उस दौर में ना प्रेम गीत सिर्फ प्यार का इजहार नहीं करते थे, बल्कि नज़रों की झिझक, मुस्कुराहट की भाषा और खामोशी की आवाज़ भी हमें सुना दिया करते थे। आजकल लोग कहते हैं रिलेशनशिप स्टेटस, उस दौर में स्टेटस नहीं, सिर्फ एक गीत काफ़ी होता था। और अगर रेडियो पर कहीं आपकी पसंद का गीत प्ले हो जाए तो बस समझ लीजिए जनाब, दिल की बात पहुँच गई दिल तक। तो आइए इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं फिल्म शक्ति का यह बेहद खूबसूरत नगमा, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। फिल्म का ये गीत सुपर डुपर हिट रहा और इस फिल्म के लिए बहुत सारे फिल्म फेयर पुरस्कार जीते गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के पुरस्कार जीते इस फिल्म ने।

किशोरदा और लता दी दो बेहद प्यारी आवाजें एक बार फिर पहुंच रही हैं आप तक। इस बार इन आवाजों में सुनते हैं फिल्म सागर से ये एक रोमांटिक सॉन्ग। जी 1985 की फिल्म सागर। कैलेंडर में साल भले ही थोड़ा पुराना जान पड़े मगर अच्छे गीतों की उम्र कैलेंडर से नहीं दिलों से और उस गीत के लिए जो चाहत है ना दिलों में उससे तय की जाती है। गाते गुनगुनाते की आखिरी पेशकश और इसके बाद सुनेंगे समाचार। सुनते रहिए FM गोल्ड। नूपुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य

0: मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekananda Cultural Youth Center Vivek Smarak in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in 1892, when he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Vadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekananda truly embodied the spirit of India. He highlighted that the country's youth are driving global growth.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram in Vizianagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today, spanning roads and energy security, reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for the 10th of August. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees, while in Kolkata it will now be 2,872 rupees 50 paise. In Mumbai it will be 2,691 rupees 50 paise. In Chennai 2,906 rupees. The new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. The decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. The Indian Army paid its final tribute to General Vishwanath Sharma, retired, a former chief of the Army staff. General Sharma's last rites were conducted with full military honours in New Delhi today. He passed away yesterday morning in New Delhi at the age of 97. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, India's Soman Rana won the gold medal in the men's shot put F57 para-athletics with a best throw of 13.4 metres. India registered a double podium finish in the event as Shubham Jual claimed silver, finishing just behind compatriot Soman Rana. India is currently placed 6th in the overall medal standings with 30 medals, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुद्र में मौजूद तेल और गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन को नई गति देना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और इस क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस आधुनिक समुद्र मंथन की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ये योजना उसी विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
5: देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है।
4: आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि समुद्र मंथन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को किस प्रकार नई गति देगी और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विकास की इस तेज रफ्तार के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आज भी आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अन्य वैश्विक भू राजनीतिक तनावों ने दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालात का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू ऊर्जा संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने समुद्र मंथन योजना शुरू की है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
6: समुद्र मंथन योजना के तहत समुद्र में बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सिस्मिक यानी भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि संभावित तेल और गैस भंडारों का बेहतर आकलन किया जा सके। इसके अलावा गहरे और अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में खोज के लिए ड्रिलिंग को तेज किया जाएगा। सीमांत बेसिनों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग भी की जाएगी। योजना में अपतटीय क्षेत्रों से तेल और गैस के उत्पादन तथा उन्हें तट पर लाने के लिए साझा बुनियादी ढांचे के विकास का प्रावधान है। साथ ही एकीकृत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन स्थापित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। समुद्र मंथन केवल अन्वेषण तक सीमित नहीं है, इसमें डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, नई तकनीकों को अपनाने, क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए एक मजबूत और एकीकृत व्यवस्था तैयार करना है। इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट यानी MMTOE से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ने की संभावना है। इससे अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को गति मिलेगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अन्वेषण और उत्पादन से जुड़े पूरे क्षेत्र में निवेश बढ़ने, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने और नवाचार के नए अवसर बनने की भी उम्मीद है।
4: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की शुरुआत है। ये पहल देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय पर विस्तार से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
7: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी समुद्र के अंदर जो भारत की राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है, उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है देन प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन स्टार्ट इन अ मोर साइंटिफिक वे।
4: श्रोताओं, समुद्र मंथन की रूपरेखा जानने के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि ये योजना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है और देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच समुद्र मंथन किस तरह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बनकर उभरता है।
6: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं जिनका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा। पश्चिम एशिया में तनाव हो या रूस यूक्रेन संघर्ष, ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति दोनों पर असर पड़ता है। इसका प्रभाव भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत की ऊर्जा नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संदर्भ में अपतटीय यानी समुद्र के भीतर मौजूद तेल और गैस संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है। भारत के पास लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र और विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहां ऊर्जा संसाधनों की उल्लेखनीय संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन लंबे समय तक इन क्षेत्रों में खोज और उत्पादन अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले एक दशक में सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। लगभग पूरे अपतटीय क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोलना, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प लागू करना, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी को मजबूत बनाना और डेटा आधारित अन्वेषण को बढ़ावा देना ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। इन्हीं सुधारों की अगली कड़ी के रूप में समुद्र मंथन सामने आया है। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन बढ़ने का एक बड़ा आर्थिक लाभ ये भी है कि आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना के

0: इन पहलुओं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चलें, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए की, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जाकर के खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं निकला। तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है अगर, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पे होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
0: श्रोताओं, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच घरेलू संसाधनों के विकास, आधुनिक तकनीक के उपयोग और दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। समुद्र मंथन योजना इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा क्षमता को नई गति देना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त आधार तैयार करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशस्य भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुलाद्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-57 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्। अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरमस्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17-वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आंध्रप्रदेशः द्रुतगत्या अग्रेसरति। सहैव केन्द्रसर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूतसंरचनायाः औद्योगिकविकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आंध्रस्य अथ विकसितभारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्धो वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरं जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तन मार्गोर्जा क्षेत्राणि समेत्य 18,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः केन्द्र राज्ययोः एनडीए सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से

0: आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्र क्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः सहैव राज्यस्य यूनाम् आकांक्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामिवंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
0: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: अत्रावसरे केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरांध्र क्षेत्रं विकासस्य निवेशस्य उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानन्दस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं सञ्जीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरुराज्यस्य दीवान पदभूषितं सर् के शेषाद्रि अय्यर् इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागोनगरे आयोजितायां विश्वधर्मसंसदि भागग्रहणाय अमेरिकायात्रायै मैसूरुमहाराज्ञः श्री चामराजेन्द्र वोडियारवर्यात् वित्तीयसाहाय्याम् अलभत। अवसरेऽस्मिन् जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासम् अग्रे वर्धयन्ति।
0: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणे विवेकस्मारकस्य भ्रमणं कारितम्, यत्र सः स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिम्नि पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। अनेनैव सः प्रधानमन्त्री स्मारकप्राङ्गणे पादपारोपणमपि अकरोत्। सिक्किम राज्ये स्थितेन नाथुलापास इति माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः अद्य प्रातः पुनः प्रारब्धः, येन 6 वर्षाधिकस्य स्थगनस्य अन्तो भवत्। अस्य व्यापारस्य पुनः प्रारम्भः भारत चीनयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कश्चन सकारात्मकः संकेतः वर्तते। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्य प्रातः उभयोः देशयोः अधिकारिणः नो मेन्स लैंड इति क्षेत्रे परस्परम् अमिलन्। चीनपक्षस्य नेतृत्वं तिब्बत स्वायत्तक्षेत्रस्य प्रशासनिक प्रमुखैः सहैव तस्य वाणिज्य सीमा व्यापार विभागयोः प्रतिनिधिभिः कृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः अद्य पुणे नगरे आयोजिते एकस्मिन् समारोहे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। लोकमान्य तिलक स्मारक न्यासेन संस्थापितः एषः पुरस्कारः लोकमान्य बालगंगाधर तिलकवर्यस्य 60-तमे पुण्यतिथ्यवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रदत्तः। अत्रावसरे सम्बोधयन् अमितशाहः अवदत् यत् अजीत डोवालः भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सुदृढीकरणे असाधारणं योगदानं व्याहृतवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331 4444, 2371 7117, and 2331 0464. These are Delhi numbers, so listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, kyunki aaj shanivar hai, to isliye har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331 4444, 2371 7117 और 2331 0464 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें. लेकिन ज़रूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुनें सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन. सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स. एंड इंडियाज जीएसटी कलेक्शंस सर्जेस ओवर 2.11 लाख करोड़, मार्किंग 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन जुलाई.
1: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई. केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की. और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया. ये साल दर साल लगभग

0: लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है।
1: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार है उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया। फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 1258 अंक बढ़कर 78094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24883 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
1: Shishir, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Apache just read that the markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
2: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among in the last 3 months.
1: Yeah.
2: And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying that it has stopped.
1: Yeah.
2: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea and Taiwan, now that phase is over.
1: Yes.
2: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
0: Shishir, बाजार की विवेचना जारी रखेंगे, मगर उससे पहले हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं। इनका नाम है प्रेमजीत और ये हैं दिल्ली से। प्रेमजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, आप सारे टीम का अभिनंदन। प्रणाम शिशिर साहब।
2: प्रणाम प्रणाम
3: शिशिर साहब। अभी जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जब मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया और उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा, डू यू नो दिस, हाँ सर, लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है। ये हनुमान जी है और इनका गदा है, श्रीलंका का ये एरिया है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो वो गोल्ड का और ऑयल का ये सब सर्वे होता
1: है। प्रेम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ,
3: बाजार से वही आ रहा हूँ, सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का, हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर?
1: आप किस सर्वे की बात करें, अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके?
3: कमोडिटी की मैडम, जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना, तो उसकी एक सर्वे होती है मैडम जी, पहले जहाजों से, तो हम उन जहाजों पे काम करते थे, तो उस समय वो डाटा आता था, तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे, तो हमारी उत्सुकता शिक्षित साहब से वही जानने में है
2: जी।
3: मैं हमारे पास,
2: हाँ समझ गया प्रेम जी, जी आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं। अगर आप याद करें तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन, उसके दो हिस्से हैं, और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर, और दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को। तो देखिए, कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं, यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं, उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फायदा आपको नहीं देगी। तो ये सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ संभावनाएं हैं तेल की या गैस की, वो सर्वे काफी अहमियत रखते हैं। और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन, यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं। तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है, आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है।

0: क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं
1: जी. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, through the month, and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, U.S. markets were, in the month of July?
0: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level.
1: Yeah.
0: But one of the key concerns, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation, because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the U.S. at a very high tariff. Because U.S. imposed tariffs on number of countries, and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level, but they are also giving, or they are rather, I would use the word, they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate. And if it happens, it's not a good news for India, because when the U.S. takes Federal Reserve of U.S. takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country.
1: Yes.
0: And that is not a good news for us.
1: Right.
2: और आलोक कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रोताओं. आलोक जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी, आलोक जी कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ मैडम, गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग.
3: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मतलब मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए F&O सेगमेंट हो सकता है, या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं, या वो ज्यादा बेस्ट है. मतलब क्योंकि मैं नया था तो
0: आलोक जी, एक मिनट में रोकूंगा. आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई? आप
3: व्यक्तिगत निवेशक हूँ मैं, पर्सनल इंडिविजुअल हूँ मैं. और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था F&O सेगमेंट में, हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे F&O सेगमेंट में.
0: अच्छा,
3: तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे. अभी कि कोई मुझे कहता है कि नहीं F&O बहुत डेंजर सेगमेंट है, उसमें मत एंटर कीजिए.
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात समझ गए हैं. और ये बहुत ही आपने बेसिक, कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है, वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए. तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष्य में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो F&O डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा, या कैसे?
0: देखिए, सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने F&O में पैसा गंवाया है, और पैसा अच्छा खासा गंवाया है. क्यों गंवाया है? क्योंकि F&O या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और बहुत ही परिपक्व निवेशक के लिए है, और ये दरअसल नकदी बाजार से सुरक्षा मुहैया कराने का एक माध्यम है. आप नए हैं, आप एक व्यक्तिगत निवेशक हैं, आप नकदी बाजार में जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करिए, जहां पर आपके लिए आपने पैसे दिए, आपने शेयर खरीदे, डिलीवरी ली, अगले कुछ समय में जब भी आप चाहें आप उसको बेचिए, आप अपना पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है. आप यदि कुछ ज़्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जिसकी आपको समझ नहीं है. दूसरी बात, जो F&O मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है? इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपया पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं. लेकिन वो 95 रुपया आप नहीं भी पे कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है, और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है. तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक हैं, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नकद बाजार एक बेहतर विकल्प.

0: Let's go on to our next call. Again, coming in from Delhi, it's Tigrish is with us from Delhi. आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें.
1: हेलो जी.
0: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछें.
1: नमस्कार
0: जी, सवाल पूछें.
1: वो बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक एफडी बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
2: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं. और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. हाँ, याद रखिए, कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा. ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा.
0: पर शिशिर, यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
2: नहीं, नहीं कोई सीमा नहीं होती है. आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं. क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे, और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं. तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते हैं ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था.
0: बिल्कुल.
2: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है. बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहे.
3: शिशिर जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम, मैं उसमें से कितना पैसा कहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊँ. हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से. अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: अमित जी, सवाल पूछिए.
3: अमित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: जी, सवाल पूछिए.
1: हाँ, नमस्कार सभी को.
2: नमस्कार
1: सिन्हा सर, से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो हैं सर. हेलो.
2: हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं.
1: लेकिन सर, हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है, ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके और पूरे हैंड्स असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद.
2: अमित जी, देखिए, अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है, और हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे. देखिए, अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहाँ पर जो कल पुर्जे हैं, हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है. जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है. और निर्भरता कम हुई है, लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है. तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कल पुर्जे और खासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी.
3: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़े हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से. बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्कार जी.
3: जी नमस्कार.
4: ये अभी मैं सुन रहा था, किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है, IMA सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं, और काफी, और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है.

0: बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
1: चलिए, आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
2: हाँ, अब इनका सवाल जो था, क्योंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
3: प्रतिशत,
2: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप एटीएम से निकालते हैं, जब कोई कहता है ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम एटीएम कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाएं। अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30-40 साल से कम उम्र के हैं तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूँगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं। बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं, और फिर वहां पर जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि वो सुरक्षा है। क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं उनमें हम लगाएं, जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर ये हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपये तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं। तो एक हिस्सा अगर आप डाकघर बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है।
1: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस। शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: सर नमस्ते मार्केट मंत्र टीम को।
1: जी,
4: इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन डॉलर, सॉरी रुपीस हैज डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट एंड द बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। Is there any way or any other option available for retail investor like us who can invest probably in dollar deposit under LRS scheme? LRS scheme mein kya dollar deposit hum log ne available hai Indian resident Indian taxpayer ke liye? Because $2.5 lakh bahar bhej sakte hain but share khareed sakte hain kya, deposit hum de sakte hain kya, so that we get the benefit of that lower interest rate but dollar appreciation.
2: नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती है, और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप, जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज़्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कह सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फ़ायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप US में ही रख सकते हैं, और US की जो नियमन है, US की जो व्यवस्था है उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगियाँ हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है वो आपको, आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
3: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद

0: बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और दिल्ली से हम जोड़ रहे हैं राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: सवाल मेरा हटके है थोड़ा
0: जी।
1: आज के जो विशेषज्ञ हैं ये मिस्टर शिशिर सिन्हा है
2: जी, जी।
1: तो शिशिर सिन्हा साहब जर्नलिस्ट हैं क्या, मुझे बताएंगे, क्योंकि ये आकाशवाणी पे इंटरव्यू भी करते हैं।
2: आप सवाल पूछें, मेरा जो परिचय है मेरे ख्याल से प्राची ने शुरू में दे दिया था, पत्रकार ही
0: हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक बीच की पत्रकारिता करते हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: मैं पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता हूँ, इसलिए अपनी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता था। शुक्रिया
3: जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ अ 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी फ्रॉम टुडे। आफ्टर द प्राइस कट, द न्यू प्राइस ऑफ commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
0: और पुणे से हमारे साथ कुमार जुड़ रहे हैं। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी, गुड इवनिंग, नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई नए पर्सन हैं और अगर हमको अच्छी तरह से सीखना है शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से करें, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख सके, जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो या डिलीवरी हो या इंट्राडे हो, ये हम किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अच्छी तरह से सीख के एक्सपर्ट हो जाए।
2: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात ये कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे, कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग ABC सीखना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे BSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के जो है वहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। SEBI की वेबसाइट पे जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पर पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
0: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए, ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स के मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें।
3: या दैट्स राइट प्राचीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज टू 2,11,205 crore rupees, marking a 15.4% year-on-year increase from 1,83,065 crore rupees in July 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic revenue stood at 1,44,695 crores, up 10.1% from a year ago. GST collections from imports surged 28.8% to 66,511 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop up. Moving on, the Income Tax Department today said that over 5.9 crore income tax returns were filed for the assessment year 2026-27 by July 31st, 2026. Thanking taxpayers in a social media post, the department said that their trust and timely compliance provide the energy that fuels India's growth.
0: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम की अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम ज्वाल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: into effect from today. The decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Indian Army paid its final tribute to General Vishwanath Sharma, retired, a former chief of the Army staff. General Sharma's last rites were conducted with full military honours today in New Delhi. He passed away yesterday morning in New Delhi at the age of 97. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, India, Soman Rana won the gold medal in men's shot put F57 para-athletics with a best throw of 13.4 metre. India registered a double podium finish in the event as Shubham Juyal claimed silver, finishing just behind compatriot Soman Rana. And that is the end of this news bulletin.
1: Surkhiyon mein. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के एक दिन के दौरे पर थे। आपसे हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे जिनका उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया।
3: बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम रहा, उन्होंने कम से कम 18,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, लोकार्पण और देश को डेडिकेशन करने का आज कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्ट्स आज किए, उसमें सबसे बड़ा था विशाखापट्टनम का नया एयरपोर्ट जो भोगपुरम में है, जो विशाखापट्टनम के नजदीक विजयनगरम जिला में, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेट किया। और साथ में एक विजन सामने रखा जो एक कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर का, पूरे आंध्र प्रदेश कोस्ट है उसका, और उसके साथ साथ जो बंदरगाह हैं छोटे बड़े उस साइड में विशाखापट्टनम से लेकर कृष्णापट्टनम, उसके आधुनिकीकरण का भी प्रोजेक्ट का उन्होंने आज फाउंडेशन किया। और साथ में नए नए बंदरगाहों की भी बात आज पीएम ने किया कि मुलपेट और रामायपट्टनम करके, यानी पूरे जो ब्लू वाटर इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जिसमें फिशिंग की डेवलपमेंट हो, आपकी प्रॉन कल्चर, प्रॉन एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों की उस एरिया का एक बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम के उन्होंने आज हरी झंडी दिखाई है।
2: जी, इसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने आज लॉन्च किए, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहा।
4: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं, इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
2: शेखर जी, अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एयरपोर्ट की बात की, आप भी कह रहे थे कि उन्होंने विशाखापट्टनम के नजदीक भोगपुरम में एक एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। उत्तरी आंध्र इलाके में औद्योगिक विकास, रोजगार पैदा करने और कुल मिलाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट का क्या महत्व है।
3: देखिए, जो उत्तर आंध्र प्रदेश है वो आदिवासी इलाके है ज्यादातर, और उस इलाके में इस तरह की एक नया एयरपोर्ट खोलना, उसके उद्घाटन होना, वो सारे पीछे जो इलाके हैं उस एरिया का बहुत बड़ा एक अवसर खुलेगा जो डेवलपमेंट के लिए। इस एयरपोर्ट का नाम भी उस क्रांतिकारी का नाम पे रखा है, अल्लूरी सीताराम राजू।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को विरोध किए थे। वहां पे उनके नाम पे एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ था 1922 में। उसके बाद वो शहीद

0: गए थे, उनके नाम पे रखा है, क्योंकि अल्लूरी सीतारामा राव आदिवासी के लिए बहुत काम किए, उनकी पीड़ा और उनकी दर्द के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इस नया एयरपोर्ट का वहां पे उनके नाम पे रखने का भी एक बड़ा मैसेज जाता है आदिवासी इलाके में।
1: जी
0: और वहां से विशाखापट्टनम जिला, जो वहां से लेकर अरकू वैली करके जगह है, जो आज ईस्टर्न घाट्स जो है उसकी
1: जी
0: वहां पे है, ये वहां पे कोशिश किया है कि जो आदिवासी युवा हैं उनके लिए नए अवसर देना, उनको एक नया लाइफ का एक स्कोप बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है ये।
1: सरकार ने उड़ान और कनेक्टिविटी पहल के तहत एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया है। ये जो आज एयरपोर्ट उन्होंने उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो इसका आज इनॉग्रेशन किया है, वो इस विजन में कैसे फिट बैठता है?
0: देखिए, उड़ान का जो स्कीम है आप सब जानते हैं, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है,
1: जी
0: ये 10 साल का स्कीम है। अभी उसका एक मॉडिफाइड स्कीम अभी लॉन्च हुआ है, अभी जुलाई से शुरू हुआ है। ये स्कीम 10 साल का है, यानी 26-27 से लेकर 2035-36 के बीच में कम से कम 23,000 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि जहां जहां एरोड्रोम जो है, जो ये पुराने काल का हो या नए काल हो, उसको एक एयरपोर्ट करके बना के कम से कम 100 एयरपोर्ट की कल्पना की गई है। आज तो जितने एयरपोर्ट है पहले से 10 साल में बहुत एयरपोर्ट बने हैं, और भी 100 एयरपोर्ट बनाने की ये बात है ये। और इसमें आगे 8 साल में आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे जो एयरफील्ड है, एरोड्रोम है, उसको डेवलप करके एक प्रॉपर एयरपोर्ट करने की, क्योंकि एयरपोर्ट का डेवलप करना मतलब वहां पे एक आर्थिक एक्टिविटी एक बड़ी बूस्ट मिलती है। और ये जो छोटे एयरपोर्ट्स है उनके लिए क्या है, ऑपरेशन जारी रखना चाहिए, तभी जाके इनका ये होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है। साथ में हेलीपैड्स भी डेवलप हो रहे हैं।
1: जी
0: तो प्रधानमंत्री आज अगर इसके बात किया है कि ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा, जो अति गरीब परिवार है उनका भी एक सपना पूरा कि वो भी कभी उड़ान पे जा सकते हैं, वो भी फ्लाइट ले सकते हैं।
1: जी जी
0: और इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है कि किस तरह ये स्कीम जो सबसे गरीब है उनके तक विकास पहुंचाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की एक आधारशिला भी रखी और ये सुविधा पूरी होने पर हर साल लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगी। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात का असर हम सप्लाई चेन्स पर साफ साफ देख रहे हैं। ऐसे में ये जो सेमीकंडक्टर सुविधा जिसका आज प्रधानमंत्री ने जिसकी आधारशिला रखी है, भारत को इस तेजी से महत्वपूर्ण होते हुए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए कितनी अहम है?
0: तो बहुत अहम है इसमें अनुभव जी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने अभी गुजरात पे हाल ही में उन्होंने तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट खोला है। ये सेमीकंडक्टर जो है वो चिप्स है, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां चिप्स की जरूरत ना हो। अपने टेलीविजन से लेकर मोबाइल या आपके गाड़ी, आपके कोई भी हो,
1: जी
0: हर चीज में चिप्स लगता है। और ये चिप्स ज्यादातर भारत की रिक्वायरमेंट के लिए इम्पोर्ट होता है, जैसे जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इन। अब भारत भी उनमें जाके भारत वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने एक बड़ा प्लान रखा है,
1: जी
0: जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितना हम सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज ये करें, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एक मिशन मोड पे इस पे काम हो रहा है। और सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज जो अभी खोल रहे हैं उसमें टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, और उसकी बनाने का भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये जो प्लान है, इसमें हमारी नौजवान जो है ये नौजवान के लिए एक नया खोल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो है ये जहां हम ज्यादातर फोकस सॉफ्टवेयर रहा,
1: जी
0: ये हार्डवेयर पार्ट के अभी ध्यान दिया जा रहा है। और अभी जब प्रधानमंत्री हाल में गांधीनगर के पास एक सेमीकंडक्टर की तीसरी फैक्ट्री जब उद्घाटन किए थे, तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिट किया था उस प्लांट में, जो सेमीकंडक्टर प्लांट में पूरा भारत का वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव्स है, हर राज्य से हमारे नए यंग गर्ल्स एंड बॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, पूरी तालीम लेकर एक एडवांस्ड एरिया है, क्योंकि चिप की जो टेक्नोलॉजी है कोई कंट्री अब से शेयर नहीं करता,
1: जी
0: क्योंकि तो फ्रंटियर एरिया है जिसपे भारत अपनी R&D जारी रखे है। साथ में जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ टेक्नोलॉजिकल एक एक्सचेंज का भी प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री मानते हैं कि जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वैसे सेमीकंडक्टर एक एरिया है जहां फ्रंटियर एरिया माना जाता है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत इस सेमीकंडक्टर फील्ड में न केवल आत्मनिर्भर बने लेकिन एक एक्सपोर्ट हब बन जाए।
1: जी अपनी जनसभा के दौरान श्री मोदी ने भारत के युवाओं की प्रतिभा के बारे में भी बात की, चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है, सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवा

0: युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है।
1: अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं की प्रतिभा की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि देश को अपने प्रतिभाशाली युवाओं से फायदा मिले, इसके लिए सरकार अब सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के टेक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देश की युवा शक्ति और प्रतिभा का इस्तेमाल करने और उन्हें भारत की विकास यात्रा में शामिल करने के लिए केंद्र की, खासकर प्रधानमंत्री की ऐसी पहल को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, ये जो आज की जो इंडिया है और कल की जो इंडिया होगी, ये दोनों इंडिया हमारे युवाओं के कंधे पर चल रहे हैं। और जितना युवा भारत जो यंग नेशन है, उनकी जो टैलेंट्स को सामने लाने के लिए सरकार कई स्कीम्स, कई कार्यक्रम जारी रखी है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर ही नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, जो जाके यूनिकॉर्न तक बना दिया है और विश्व भर में एक अपने नाम और पहचान भी बना लिया है। तो प्रधानमंत्री का यही है कि यूथ फ्यूचर यूथ का है और भारत का फ्यूचर यूथ के ऊपर है। यूथ का विजन, यूथ का लीडरशिप, यूथ का डिसिप्लिन, सब कुछ इन पर निर्भर है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा एक रहा है कि यूथ पर फोकस रहे, उनको अवसर मिले और उनके टैलेंट डेवलप करने के लिए तो कार्यक्रम बने, ताकि सरकार की हेल्प भी रहेगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो उनको आर्थिक मदद देकर अपने आप पैर में खड़े होके जो सरकार की इतनी स्कीम्स हैं उसका सबका फायदा उठाए।
1: आज उद्घाटन किया गया एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे योगदान देंगे?
2: देखिए, ये हमारे लिए क्लाइमेट जो मामला है, तो क्लाइमेट चैलेंज जो आ रहा है, भारत इसको एकदम सीधा मुकाबला कर रहे हैं। वो सोलार विजन हो या आपकी जैसे हाइड्रोजन ट्रेन की अभी उद्घाटन हुई थी, आपने देखा
1: जी,
2: तो हर फ्रंटियर एरिया, ये भी एक फ्रंटियर एरिया टेक्नोलॉजी है, भारत इसमें बहुत कोशिश कर रही है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन इस बार सरकार का जो एक स्कीम है कि हर घर एक अपने आप को अपने लिए भी ऊर्जा बनाए का एक जो स्कीम है, सोलार स्कीम, और बाकी जो बचा हुआ है उनके बाद वो ग्रिड में वो दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ये कार्यक्रम लेकर सरकार ने बहुत इसके कदम लिया है, बहुत स्टेट्स भी इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कार्बन जो इमिशन की फुटप्रिंट, देखिए भारत एक देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, जब हमारी रिक्वायरमेंट गरीबी को लड़ाई के लिए काफी एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, फिर भी हम उस कमिटमेंट पर वचनबद्ध है जो पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उस हिसाब से जो नए नए प्रोजेक्ट्स किया जा रहे हैं, जहां पे कैसे जो फॉसिल फ्यूल हो उससे हम जाके कैसे शिफ्ट करके कैसे ये हम अल्टरनेटिव सोर्सेस पर जाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं, रेयर अर्थ के लेकर भी, कि रेयर अर्थ भारत में हो या विदेश में, उसका भी नए एग्रीमेंट्स बना रहे, जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारी इंडस्ट्री एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या ज्वाइंट वेंचर में बाहर जाके इसको एक्सप्लॉइट करने का भी कई समझौता हुआ है, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज के साथ, यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ, अभी जो हाल में जो पीएम की जितनी फॉरेन विजिट्स रही है इस दिशा में रही है।
1: आज आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट्स की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिये, ये जो कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है, देखिये प्राइम मिनिस्टर बार बार विकसित भारत की बात करते हैं
1: जी,
2: और प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक लक्ष्य है कि जब तक हर राज्य का पूरा पोटेंशियल जब तक सामने नहीं आएगा, तब तक भारत विकसित भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज आंध्रा में स्वर्ण आंध्रा की बात करी है, यानी गोल्डन आंध्र प्रदेश, उस दिशा में आज जो स्कीम्स है, जो फाउंडेशन लगाया गया है, और प्राइम मिनिस्टर का आज जितने कार्यक्रम रहे हैं, जो मतलब आप ले लीजिए जैसे विशाखपट्टनम से रायपुर एक्सप्रेस वे, वो एक उस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विशाखपट्टनम रायपुर के बीच में रेलवे लाइन तो है ही, जो ज्यादातर माइनिंग डिपॉजिट एरियाज है, वो जो ओडिशा को भी टच करते हुए जाता है, और जो कनेक्टिविटी बढ़ा के जो वहां के जो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है उसकी ठीक तरह से उपयोग करने की एक रास्ता खुला है
1: जी।
2: और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है, कि जैसे विशाखपट्टनम तो पुराना बंदरगाह है
1: जी जी,
2: और कृष्णपट्टनम पुराने बंदरगाहों को जिसको माना जाता है हेरिटेज पोर्ट्स है, उनकी आधुनिकीकरण वो भी एक बड़ा ये है। उसके साथ साथ में मैरीटाइम हब्स की बात की जा रही है, जहां जैसे मुलपेट है, रामायपट्टनम है, ये जगह सब या फिशिंग भी हो सकती

0: है और साथ साथ सी फूड की इंडस्ट्री वहां आ सकती है, ये भी सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है।
1: जी शिखर अय्यर जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर वक्त हुआ है 7:25 और ये वक्त कह रहा है कि आप जुड़िए उस महफिल से जिसका नाम है सांझ ढले। सांझ ढले की आज की इस महफिल में आपके साथ हूं मैं संजीव अग्निहोत्री।

0: जी, सावन तो आ ही गया है, सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और हम सबको इंतज़ार रहता है कि सावन की फुहारें हम सबके ऊपर पड़ें, बारिश हो, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही बारिश होगी। बीच बीच में बूंदाबांदी होती है, लेकिन जो इंतज़ार है बारिश का वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि बारिश होगी क्योंकि सावन का अभी महीना शुरू ही हुआ है। सावन के महीने में बहुत सी सावधानियाँ भी हमको रखनी पड़ती हैं। देखिए, शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और सड़कों पर उनके लिए वैसे तो अलग से मार्ग की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो काफ़ी दूर से पैदल चल करके यात्री आते हैं अपनी कांवड़ को लेकर के, तो इसलिए हमें बहुत सचेत होकर के सड़कों पर चलना होगा कि जिससे कि उनकी जो यात्रा है वो बाधित ना हो। और जब उनकी यात्रा बाधित नहीं होगी तो उनकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी, आपकी भी अपनी मनोकामनाएँ जो आपने मान रखी हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा बरसात का मौसम में बहुत सी सावधानियाँ और भी रखनी पड़ती हैं क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सी बीमारियाँ भी पनपती हैं। कहीं कहीं सड़कों पर पानी भर जाता है, कहीं कीचड़ हो जाता है, तो इसमें आपको बहुत संभाल के चलने की ज़रूरत है। घर से निकलें तो छाता लेकर निकलें, पीने का पानी अपना शुद्ध साफ साथ में रखें, और भी जो भी सावधानियां बरसात की होती हैं उनको अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस मौसम को एंजॉय कर पाएंगे।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना, ना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 सुन रहे हैं आप। 7:40 हो चुके हैं। महफिल चल रही है सांझ ढले की। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री।

फिल्म धर्म करम का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। सांझ ढले की महफिल का ये समझिए आखिरी गीत है और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। बने रहिए आप FM गोल्ड 100.1 पर। फिलहाल संजीव को इजाज़त दीजिएगा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ाई। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ PM उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा 1 अक्टूबर तक बढ़ाई। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना से मिलने वाली राशि सभी महिलाओं का आत्मसम्मान और सुदृढ़ करेगी, आत्मविश्वास को नई शक्ति देगी और जीवन की अनेक छोटी बड़ी जरूरतों को भी पूरा करेगी।
3: ये पैसा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज करना है, इसलिए इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई। ना तो ये पैसा उसे मिलेगा जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ना ही जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, ना ही ये पैसा ऐसी किसी वस्तु के लिए खर्च हो सकता है जैसे कि शराब, तंबाकू, लॉटरी इत्यादि। जैसा मैंने बताया है कि ये पैसा महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए यूज होना है, तो इसलिए जनता का पैसा है, बहुत सोच समझ के उन महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा जिसको सही मायने में इसकी जरूरत है, जिससे उनके जीवन में एक बेहतर सवेरा आ सके।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ होगा।
4: दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य

0: उपयोग की समय सीमा इस महीने की 16 तारीख तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे।
1: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये निर्णय स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली में सुचारू रूप से बदलाव लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी पात्र यात्री को असुविधा न हो। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और कंडक्टरों को जन जागरूकता अभियान तेज करने और महिला यात्रियों को संशोधित समय सीमा से पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने में सहायता करने का निर्देश दिया। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस महीने की 15 तारीख मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी भी महिला यात्री को मुफ्त यात्रा से वंचित न किया जाए। दिल्ली सरकार ने बताया कि आज तक कुल 17,04,042 पिंक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चल रहे उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ यानी पीएम उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। संशोधित कण पदार्थ उत्सर्जन मानक अब इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
2: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि कार्यान्वयन समय सीमा में बढ़ोतरी से उद्योगों के लिए नियमों का असरदार और एक जैसा पालन करना आसान हो जाएगा और इससे औद्योगिक उत्सर्जन कम करने का मकसद भी प्रभावित नहीं होगा। आयोग ने कहा कि संशोधित पीएम उत्सर्जन मानक तकनीकी रूप से हासिल करने योग्य है और औद्योगिक उत्सर्जन कम करने तथा इलाके में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, रेट्रोफिटिंग और जांच पड़ताल का काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना है ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कड़े पीएम उत्सर्जन मानकों का पूरी तरह पालन कर सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज NDCC कन्वेंशन सेंटर में मासिक सुविधा शिविर का आयोजन किया। सुविधा शिविर के दौरान कुल 80 जन शिकायतें प्राप्त हुई। इन्हें संबंधित विभागों द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर उनके समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। NDMC के अनुसार प्राप्त अधिकांश शिकायतें कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, उद्यान, जन स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक, कर और संपदा विभागों से संबंधित थीं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सदर बाजार के कुतुब रोड के तेलीवाड़ा अखाड़ा क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इससे वर्षा के दौरान पानी की निकासी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री आशीष सूद ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री सूद ने वर्तमान परियोजनाओं का जायजा लिया और बुनियादी ढांचे से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में आशीष सूद ने बताया कि बैठक में जनकपुरी के लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समय पर काम पूरा करने, गुणवत्ता के मानकों और आपसी तालमेल के साथ किए जाने वाले प्रयासों पर बल दिया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 38 अंग, ऊतक और शरीर दानदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया। ORBO ने पिछले महीने की 14 तारीख से लेकर आज तक अंगदान जीवन संजीवनी अभियान विषय के अंतर्गत अंगदान पखवाड़ा आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के प्रतिनिधि के तौर पर तैयार करना था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के अंतर्गत सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता एम्स नई दिल्ली में 1600 बिस्तरों वाले विश्राम सदन के डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और रखरखाव के लिए किया गया। एम्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विश्राम सदन एम्स दिल्ली परिसर में मरीजों के इलाज के दौरान उनके साथ आए लोगों के लिए किफायती, सुरक्षित और साफ सुथरी रहने की सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास विभाग ने एक गैर सरकारी संस्थान के सहयोग से आज

0: की हड्डी की चोट से प्रभावित मरीजों के लिए व्हीलचेयर वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की चोट से प्रभावित मरीजों को उपयुक्त गतिशीलता सहायक उपकरण यानी व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर उनकी गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली गेट चौक पर ट्रैफिक की पाठशाला नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षित ड्राइविंग और नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने यातायात के नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में यातायात पुलिस उपायुक्त निशांत गुप्ता ने कहा कि यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: ट्रैफिक पाठशाला के थ्रू हम लोग लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों के बारे में। जो लोग ट्रैफिक का वायोलेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेड लाइट जंपिंग हो, चाहे स्टॉप लाइन का वायोलेशन हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि सिर्फ चालान काटना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों को एजुकेट करने में भी अपना पूरा सहायता दे रही है। ऐसे वायोलेटर्स को हम लोग रोकते हैं और उनको ट्रैफिक पाठशाला के माध्यम से बताते हैं कि उनकी की हुई गलती से उनको और उनके परिवार को किस तरह की नुकसान भरना पड़ सकता है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं उनको छोटे छोटे उपहार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जनभागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा।
2: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए हो गई है। कोलकाता में 2,872.50, मुंबई में 2,691.50 और चेन्नई में 2,906 रुपए इसकी कीमत हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम द्वारा चल रहे अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट निपटान किया जा चुका है। श्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली के नरेला पॉकेट 11 में कर्मजीवी आवास योजना के अंतर्गत बन रहे फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉर्टपुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये रजत पदक नीरज चोपड़ा के शानदार सफर का एक और चमकदार अध्याय है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ी

0: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सैली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ाई। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ पीएम उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा 1 अक्टूबर तक बढ़ाई। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 और स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित धन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध

समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच

0: और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और YSR कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ NTA ही नहीं बल्कि UPSC रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani, a review of this week's Parliament proceedings read by Ashish Abraham. After the first week of monsoon session of Parliament was washed out, this week resulted in some productivity with the government able to push through the key legislation, enabling swift trial and stiffer penalties and sentence to deal with examination paper leak menace. Both houses approved other legislations as well, often without discussion, even as opposition continued to stall proceedings over police crackdown on students' protest and donation theft at the Ram Temple in Ayodhya. On Monday, government introduced a bill in the Lok Sabha to amend the anti-paper leaks law with stricter punishment of up to 10 years in jail and 50 lakh rupees fine. According to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, investigations into paper leak cases are to be completed within 2 months. Those involved in organized crimes of cheating face 5 to 10 years of imprisonment and a minimum fine of 1 crore rupee. The present law has provisions for a minimum of 3 to 5 years of imprisonment to curb cheating. The bill was introduced by Minister Jitendra Singh after the lower house met at 12 noon following an adjournment in the morning over opposition protest. After the introduction amidst the din, the chair again adjourned the house till 2 p.m. As soon as the house reassembled, Speaker Om Birla adjourned the house till 5 p.m., giving the government and opposition a 3-hour window to settle differences. When the House met after the third adjournment at 5 p.m., Presiding Officer Krishna Prasad Tineti tried to take up the Public Examinations Amendment Bill. However, opposition MPs were on their feet demanding withdrawal of FIRs filed against students. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing the debate on the bill. No discussion could take place on the bill as opposition refused to relent. In the Rajya Sabha, proceedings were adjourned on Monday without transacting any business, following opposition ruckus over police action on students protesting NEET paper leak. The upper house witnessed 4 adjournments before being adjourned for the day around 5:20 p.m. Addressing the opposition, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for discussion over the issue. Replying to this, Leader of the Opposition and Congress President Mallikarjun Kharge said before the discussion, the Home Minister should come and make a statement. Amidst the din, Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh, who was presiding the session, adjourned the proceedings for the day soon after. During the interim, when the Rajya Sabha met after lunch at 2 p.m., Deputy Chairman Harivansh, who was in the chair, allowed Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai to move the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 amid continuous protest by the opposition. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. On Tuesday, the Lok Sabha began discussion on the anti-paper leaks bill, marking an end to the week-long parliament logjam. Speaking on the bill, Union Minister Jitendra Singh described it as a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and the youth. RSP MP N.K. Premachandran urged the bill be circulated for stakeholder consultations till 1st December so that it can be made more fruitful. The bill was tabled in the Lok Sabha on Monday. Initiating the debate, Deputy Leader of Congress Gaurav Gogoi said, question paper leaks of public examinations have continued and existing law has proved to be a failure. Participating in the debate, BJP MP Bansuri Swaraj asserted that the Modi government has undertaken structural reforms to strengthen the examination system. Samajwadi Party Supremo Akhilesh Yadav attacked the government for outsourcing a crucial body like the National Testing Agency. NDA allies, TDP and Shiv Sena urged the government to conduct NEET UG examination multiple times a year instead of just once. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra claimed that the examination system has

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स सेन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स सेन के साथ खेल की हर बात।

0: शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन आज भारत ने 3 स्वर्ण सहित अब तक 7 पदक जीते। बॉक्सिंग में आज 7 और भारतीय खिलाड़ी फाइनल में उतरेंगे। भारत की तनुष शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम 5वें स्थान पर रही और गुवाहाटी में डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ शुरुआत की।
1: खेलों के आज 10वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में अब तक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। पैरा शॉटपुट के F57 वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का
3: भारतीय मुक्केबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत मिली। महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड देश को दिलाए। पहले प्रीति पवार और फिर जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्डन पंच लगाए। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीती। SEC हॉल 5 में पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। एक ओर प्रीति के हर एक पंच में दम दिख रहा था तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे। तीसरे राउंड में फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया। उन्होंने इस गोल्ड को खास बताया।
4: I am really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely, I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India. Thank you so much everyone for supporting me and motivating me. Keep supporting, keep motivating me.
3: वहीं जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आइलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला राउंड 3-2 से जैस्मीन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मीन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आई और 5 जजों ने फैसला उनके पक्ष में दिया। जैस्मीन ने तीसरा राउंड भी 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को 7वां गोल्ड दिलाया। उन्होंने ये पदक देश को समर्पित किया।
4: I want to dedicate to my country India and the people who supports me throughout my whole journey. This is first time in Commonwealth Games and we create a history. We all are well prepared for this moment and we did this for our country. We are very happy. My aim is to go in Olympics.

0: एंड आई विल गिव माय बेस्ट देयर एंड आल्सो वन मेडल फॉर माय कंट्री।
1: लेकिन पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह मानदेन गबम का जादू ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर जॉय डिस्किन के खिलाफ नहीं चला। जादूमणि ने अच्छी शुरुआत की और पहले राउंड में 3-2 से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर ने 5-0 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में एक बार फिर विरोधी मुक्केबाज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस हार से जादूमणि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: उधर आज रात महिला 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है लवलीना ने फाइनल मुकाबले से पहले।
3: फाइनल के लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ तो फाइनल और भी ज्यादा टफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार गोल्ड लेके जा सकती हूँ क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है तो जरूर इस बार गोल्ड ले पाएंगे।
1: एथलेटिक्स में भी आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। दिन का तीसरा गोल्ड एथलेटिक्स से ही आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहे, शुभम को 13.28 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की लंबी छलांग भरते हुए रजत पदक पे अपना नाम लिखाया। उधर सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। हम आपको बता दें कि पैरा स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य समेत 6 पदक झोली में आए। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 1 गेम्स रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड बनाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
4: और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को बॉक्सिंग में अभी और स्वर्ण पदकों की उम्मीद है। महिला वर्ग में कुछ ही देर में साक्षी 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रिंग में उतरेंगी। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। पुरुषों के वर्ग में सचिन 60 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगे। पुरुषों के पोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम पदक जीतने की कोशिश करेगी। जूडो में उन्नति शर्मा महिला 63 किलोग्राम और हर्ष टोकस पुरुष 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। बॉल्स में महिला सिंगल्स के सेक्शनल ग्रुप सी के सेक्शन सी में नैनमोनी सैकिया दक्षिण अफ्रीका की ब्रिजेट हर्सेल मान से मुकाबला करेंगी।
5: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वां दिन भी भारत के लिए बेहद यादगार रहा। खासकर जूडो खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इंजरी से वापस लौटे नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
6: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का इंतजार था। इस लंबे इंतजार को आखिरकार अस्मिता डे ने खत्म किया। त्रिपुरा की 23 वर्ष की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गंवाया और पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रचा। अस्मिता ने बताया कि उन्हें गोल्ड जीतने का पहले से भरोसा था।
7: मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
6: जूडो में ही 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड जीतने के बाद हर्ष काफी उत्साहित थे।
8: आई वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे फॉर टू विन गोल्ड हियर।
6: महिलाओं के

0: किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सका, लेकिन मैच में तीसरी वार्निंग मिलने के कारण यामिनी को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर तक भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज संतुष्ट नजर आए।
1: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बढ़ाए।
0: इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कठिन मुकाबले के बीच कांस्य जीत कर भी यशवीर खुश दिखाई दिए।
2: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज्यादा खुशी है, सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने।
0: एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर ने 10 अलग अलग इवेंट्स वाले डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो कॉमनवेल्थ में इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी बातों से इस मेडल का महत्व समझा जा सकता है।
3: Feels pretty good actually. Obviously special. 4 years ago I had a bronze at the high jump and 4 years later to be able to win a medal in decathlon. I think it's just a dream come true. There's a lot of scope for improvement and between now and LA, that's the goal, is to try and you know fix those events, get them up to standard and hopefully be competitive there.
0: हम आपको बता दें कि 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ वाले सभी इवेंट के आधार पर टोटल रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग के टॉप 3 प्लेयर्स को मेडल दिए जाते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
4: उधर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
5: और प्रशांत, अब कॉमनवेल्थ गेम्स से चलते हैं दूसरे खेलों की तरफ। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में यू सुन को हराया। वे टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन की नई उम्मीद तन्वी ने BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज ताइपे अरेना में दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी ने अपनी सी काफी ऊंची रैंकिंग वाली 5वीं वरीयता प्राप्त वांग यू सुन पर सिर्फ 33 मिनट में आसानी से 21-17, 21-11 से जीत हासिल की और शान से खिताबी मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। खिताब के लिए कल उनकी टक्कर वियतनाम की गुयेन थुई लिन से होगी। अंतिम चार के मैच में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आई और उन्होंने यू सुन पर एक बार जो पकड़ बनाई तो फिर विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही तन्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। खासकर पिछले 2 वर्षों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले साल वे ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज खिताब भी जीता था।
4: और अब धर्मेंद्र स्क्वॉश पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 5वें से 6वें स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमिसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सानवी कलंकी ने ईव पार्किंग पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में 4 स्थानों पर कब्जा किया। अब सभी अंतिम 4 मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के 4 स्थान पर कब्जा कर लिया।
4: और अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पिछले विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ के शुरुआती मुकाबले में बोडोलैंड एफसी को 6-0 से हराया। विजेता टीम के लिए अलाउद्दीन अजराई ने हैट्रिक लगाए। बेहतरीन प्रदर्शन किया है धर्मेंद्र गुवाहाटी में खिलाड़ियों ने।
5: जी, और अब तो समय यह भी कह रहा है कि श्रोताओं।

से विदा लेने का वक्त हो चला है। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे साथी प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 800

0: 2023 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.newsonair.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा

0: Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की. 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे. आज ये संख्या 166 है. एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी. एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है.
0: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों

तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़प न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़प न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थीं, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी। अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल

0: सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मनसा थी, वह मनसा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की। और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, और लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त

0: पड़ी थी। तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमरकृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
0: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रप्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
0: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की भी स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को

0: उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
2: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
3: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
4: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
3: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
5: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्के दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
4: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
3: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
6: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
4: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
3: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। सिक्किम में नाथू ला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्द्रा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई भविष्य पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई इस पहल के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीते। मुक्केबाजी में साक्षी, प्रिया, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग में पदक देश के नाम किया। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किया। अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। उधर जूडो के 63 किलोग्राम स्पर्धा में उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to

0: बढ़ती संख्या के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सेना पर दमन का आरोप लगाया। फ्रांस में जंगल की भीषण आग पर काबू, हजारों लोग अपने घर लौटे। दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक में हिमस्खलन से निधन। और राष्ट्रमंडल खेलों में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलीट सोमन राणा ने पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। स्पेन ने कहा है कि मोरक्को से लगी सियूटा सीमा पर प्रवासी संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। इनमें समुद्र में डूबने वाले और सीमा पार करने की कोशिश के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग शामिल हैं। इसके बाद स्पेन ने सियूटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी अवरोधक दीवार लगाने की घोषणा की है।
1: इस सप्ताह 50,000 से अधिक प्रवासी सियूटा में दाखिल हुए थे। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से अधिकांश लोगों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है और दोनों देशों के अधिकारी स्थिति को सामान्य बनाने तथा राहत कार्यों में जुटे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपीय संघ से इस मुद्दे पर सदस्य देशों के गृह मंत्रियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि स्पेन ने 48 घंटे के भीतर सीमा पर नियंत्रण फिर से स्थापित किया, राहत सहायता उपलब्ध कराई, अधिकांश प्रवासियों को वापस भेजा और उन्हें यूरोप के अन्य हिस्सों में जाने से रोका। इस संकट के बीच इटली ने भी स्पेन से लगती सीमाओं की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका असर दोनों देशों के बीच हवाई और समुद्री सेवाओं पर पड़ेगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ये प्रतिबंध आज से 1 महीने तक लागू रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकीला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार करीब 6 वर्ष बाद फिर से शुरू हो गया है। किन्नौर जिले के पुह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नवग्या में आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने छुपन ट्रेड मार्ट का उद्घाटन किया और 17 व्यापारियों के दल को सीमा पार व्यापार के लिए रवाना किया। कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 से ये व्यापार बंद था। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में लगी जंगल की भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद करीब 1,98,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। हालांकि दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से फिर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी अब भी 240 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों में आग के बचे हुए हिस्सों और सक्रिय स्थानों पर काबू पाने में जुटे हैं। ग्रीस में एथेंस के पश्चिम में प्रोटो जर्मनो तटीय क्षेत्रों के पास तेज हवाओं के कारण जंगल में आग फैल गई। करीब 300 लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। फ्रांस और स्पेन में लगी जंगल की आग के कारण अब तक करीब 3,30,000 लोग अपने घरों और पर्यटक स्थलों से विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात की और इस हफ्ते की शुरुआत में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक पर चर्चा की, जिसे उन्होंने सकारात्मक और सार्थक बताया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का 43 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया है।
1: निर्मल पुर्जा ने महज 6 महीने में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करके ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। निर्मल पुर्जा उन 10 सदस्यीय अभियान दल का हिस्सा थे जो ब्रॉड पीक पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे, तभी 30 जुलाई को हिमस्खलन आ गया। उनके निधन की पुष्टि आज अभियान कंपनी एलीट एक्सपेड ने की। पाकिस्तानी पर्वतारोहण अधिकारियों ने बताया कि कल पर्वत से 4 शव बरामद किए गए थे। विश्व दर्पण के लिए भारती।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीते। मुक्केबाजी में साक्षी, प्रिया, प्रीति पवार, अरुधन्ति चौधरी और जैस्मिन लिम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग में पदक देश के नाम किया। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। अरुधन्ति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। उधर जूडो के 63 किलोग्राम स्पर्धा में उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। एथलेटिक्स में सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सिल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 11 स्वर्ण, 15 रजत और 8 कांस्य समेत कुल 34 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हसून को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्पेन के स्वीटा सीमा में मृतकों की संख्या बढ़कर 67 हुई। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सीमा पर दमन का आरोप लगाया। फ्रांस में जंगल की भीषण आग पर काबू, हजारों लोग अपने घर लौटे। दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतरोही निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक में हिमस्खलन से निधन। और राष्ट्रमंडल खेलों में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Ashish P. Abraham with the World News. Death toll rises to 67 in Spain's Ceuta border crisis as migrant surge triggers new security measures.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज़, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 13 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। हर सिंगार एक ऐसा फूल जो रात की खामोशी में महकता है और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशबू बिखेर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे। वक्त गुजर जाता है लेकिन उनकी महक, उनकी कशिश और उनका एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। तो आइए यादों की इस खुशनुमा महफिल का आगाज करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें मोहब्बत की रोशनी, मुलाकात की तासीर और दिल की धड़कनों की नर्म सी आहट सुनाई देती है। साल था 1971 का, जब फिल्म महबूब की मेहंदी ने संगीत प्रेमियों को एक बेहद खूबसूरत युगल गीत दिया। इस दिलनशीन नगमे को अपनी मखमली आवाज से सजाया मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। दोनों महान गायकों की आवाजें जब एक साथ मिलती हैं तो हर लफ्ज में मोहब्बत की नरमी और जज्बात की गहराई महसूस होने लगती है। गीत के अल्फाज लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जो साधारण शब्दों में भी दिल की सबसे खूबसूरत कैफियत बयां करने का हुनर रखते थे। वहीं इसे अपने मधुर धुनों से अमर बनाया हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही वजह है कि पांच दशक बीत जाने के बाद भी ये गीत अपनी ताजगी और कशिश बरकरार रखे हुए हैं। जब भी ये नगमा सुनाई देता है यादों की एक नर्म सी दस्तक सीधे दिल पर दस्तक देती है। तो आइए हर सिंगार की महक के साथ सुनते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी का ये सदाबहार नगमा, इतना तो याद है मुझे, रवि साहब और लता जी की आवाजों में, आनंद बख्शी के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के बेमिसाल संगीत के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म महबूब की मेहंदी से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार या

वो महफिल जहां सदाबहार नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। मैं हूं आपके साथ फिरोज, और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर सिनेमा के उस सदाबहार गीतों की खुशबू, उसके अल्फाज और उसकी धुनों का सफर तय करेंगे। दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुपरहिट नहीं होते, वो अपनी एक दास्तान भी साथ लेकर आते हैं। और आज की कहानी है एक ऐसे नगमे की जिसे मंजिल तक पहुंचने में पूरे 9 साल लग गए। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की मखमली आवाज़ और मदन मोहन के बेमिसाल संगीत का जादू आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल पर राज करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सदाबहार गीत जो मैं लेकर आया हूँ आज की इस महफिल में, अगला नगमा तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है एक दो नहीं बल्कि 3 बार रिजेक्ट हो चुका था। इस नगमे का सफर शुरू हुआ 1964 में, जब इसे फिल्म हकीकत के लिए तैयार किया गया, लेकिन किसी वजह से ये गीत फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। फिर आया साल 1966, चेतन आनंद अपनी फिल्म आखिरी खत पर काम कर रहे थे। उस दौरान मदन मोहन विदेश में थे और फिल्म की शूटिंग तेजी से पूरी करनी थी। नतीजा ये हुआ कि ये खूबसूरत नगमा एक बार फिर किनारे कर दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1970 में फिल्म हीर रांझा के लिए भी इस गीत पर बहुत विचार हुआ, बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिल्म का देहाती परिवेश और इस गीत की वेस्टर्न शैली एक दूसरे से मेल नहीं खा सकी, और एक बार फिर ये शाहकार कागज के पन्नों में ही कैद रह गया। मगर कहते हैं ना, नायाब हीरे की चमक ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। आखिरकार 1973 में फिल्म हंसते जख्म आई और इस गीत को उसकी सही मंजिल मिल गई। जैसे ही सिनेमा घरों में तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है गूंजा, पूरा माहौल जज्बात से भर उठा। कई दर्शकों की आंखें नम भी हो गईं। नवीन निश्चल और प्रिया पर फिल्माया गया ये गीत रफी साहब और लता जी की ऐसी दिलनशी आवाज में सजा कि हर लफ्ज सीधे रूह में उतरता चला गया, और जब उस पर मदन मोहन साहब के सुरों से सजी धुन मिली तो एक ऐसा कालजयी नगमा जन्म लिया जिसे वक्त की धुंधली ताकत भी नहीं रोक पाई। इस गीत ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि सच्ची कला कभी रिजेक्ट नहीं होती, उसे बस सही वक्त का इंतजार होता है। आज भी अगर बारिश की फुहारों में किसी लंबे सफर पर या तन्हाई के किसी लम्हे में ये गीत बज जाए, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी रूहानी आवाज़ में सीधे दिल से गुफ्तगू कर रहे हों। तो आइए अब उस अमर एहसास को फिर से जीते हैं। पेश है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में मदन मोहन साहब के संगीत से सजा ये फिल्म हंसते जख्म का सदाबहार नगमा, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है।

0: ये लगता है कि यहाँ मिल गया।
1: मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म हंसते जख्म से, जिसे लिखा था कैफी आज़मी साहब ने और मदन मोहन साहब का बेहद खूबसूरत संगीत था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। हर सिंगार जहाँ हर शाम महकती है उन सदाबहार नगमों से जो वक्त की गर्द से भी असर होकर आज भी दिलों में उसी शिद्दत से बसते हैं जो अपने दौर में बेहद मशहूर थे। दोस्तों, मोहब्बत का भी अपना एक मौसम होता है। जब फिजाओं में बहार हो, हवाओं में नरमी हो और किसी की एक मुस्कान पूरी दुनिया को हसीन बना दे, तब दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। हिंदी सिनेमा ने भी ऐसे ही अनगिनत जज्बातों को सुरों में ढाला है और कुछ गीत ऐसे बने जो हर दौर में इश्क की जबान बन गए। आज की महफिल का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें पहली मोहब्बत की हल्की सी खुमारी है, मिलने की बेताबी है और दिल की धड़कनों की मीठी सी सरगम भी। ये गीत है वर्ष 1971 में प्रदर्शित फिल्म शर्मिली का। शर्मिली एक ऐसी फिल्म जिसने अपने संगीत, कहानी और कलाकारों के शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, और जब संगीत की कमान सचिन देव बर्मन जैसे महान संगीतकारों के हाथों में हो तो हर धुन अपने आप एक अनमोल याद बन जाती है। गीत के खूबसूरत बोल लिखे हैं बेहद जज्बाती शायर नीरज ने, उनके अल्फाजों में शायरी की नज़ाकत भी है और प्रेम की मासूमियत भी, और फिर जब इन अल्फाजों को सुरों की रूह बख्शी हो दो महान आवाज़ों ने, किशोर कुमार साहब और लता जी ने, तो यकीनन एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो पीढ़ियां बदलने के बाद भी दिलों पर राज करता है। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है हर सिंगार की, सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। और सदाबहार की इस महफिल में, सदाबहार गीतों की इस महफिल में ये नगमा था किशोर कुमार साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म शर्मिली से। और यह फिल्म आई थी 1971 में, जिसे लिखा था नीरज ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन साहब ने। तो हर सिंगार की इस महफिल में आज इतना ही, मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण, और उसके बाद ठीक 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, जिसमें सुनहरे दौर के उन खूबसूरत नगमों को लेकर मैं हाजिर रहूंगा जो आपके दिल के बेहद करीब है। फिलहाल दीजिए इजाजत और सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया

0: लगाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा
1: राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधन्ति चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: numbers 2331 4444 2371 7117 and 2331 0464. These are Delhi numbers, so listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, kyunki aaj shanivar hai, to isliye har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331 4444 2371 7117 और 2331 04 6 4 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें, लेकिन जरूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन. सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स. एंड इंडिया जीएसटी कलेक्शंस सर्जेस ओवर 2.11 लाख करोड़ मार्किंग 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन जुलाई.
1: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई. केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की. और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया. ये साल दर साल लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार हैं उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया. तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया. फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई. सेंसेक्स 1,258 अंक बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24,883 पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई. रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
0: Shisha, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Apache just read that the markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
2: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among in the last 3 months.
0: Yeah.
2: And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, I mean, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying that it has stopped.
0: Yeah.
2: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea and Taiwan, now that phase is over.
0: Yes.
2: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
1: Shishir, bazaar ki vivechna jari

0: देखेंगे, मगर उससे पहले हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं। इनका नाम है प्रेमजीत और ये हैं दिल्ली से। प्रेमजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: जी, आप सारे टीम का अभिनंदन, प्रणाम शिशिर साहब।
2: प्रणाम प्रणाम
1: शिशिर साहब। अभी का जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जब मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया, उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा, डू यू नो दिस, सर लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, बाकी हनुमान जी है और इनका गदा है, श्रीलंका का ये एरिया है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो गोल्ड का और ऑयल का ये सब सर्वे होता
3: है। प्रेम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ,
1: बाजार से वही आ रहा हूँ, सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का, हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर?
3: आप किस सर्वे की बात करें, अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके तो।
1: कमोडिटी की मैडम, जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना, तो उसके एक सर्वे होती है मैडम जी, पहले जहाजों से, तो हम उन जहाजों पे काम करते थे, तो उस समय वो डाटा आता था, तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे, तो हमारी उत्सुकता शिशिर साहब से वही जानने में है
2: जी।
1: मैं हमारे पास,
2: हाँ समझ गया प्रेम जी, आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं। अगर आप याद करें तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन, उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर है, और दूसरा डेटा, दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को। तो देखिए, कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं, यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं, उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फायदा आपको नहीं देगी। तो ये सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ संभावनाएं हैं तेल की या गैस की, वो सर्वे काफी अहमियत रखते हैं। और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन, यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं। तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है, आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं।
3: जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, in the, through the month, and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, U.S. markets were, in the month of July?
2: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level.
3: Yeah.
2: But one of the key concern, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation, because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the U.S. at a very high tariff. Because U.S. imposed tariffs on number of countries, and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level, but they are also giving, or they are rather, I would use the word, they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate, and if it happens, it's not a good news for India, because when the U.S. takes Federal Reserve of U.S. takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country, and that is not a good news for us.
0: Right. और आलोक कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, श्रोताओं, आलोक जी अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
0: जी, आलोक जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ मैडम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
4: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए F&O सेगमेंट हो सकता है, या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं, या वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं नया था तो
2: आलोक जी, एक मिनट में रोकूंगा, आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई?
4: व्यक्तिगत निवेशक हूँ मैं, पर्सनल इंडिविजुअल हूँ मैं, और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था F&O सेगमेंट में, हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे F&O सेगमेंट में। तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे। अभी कि कोई मुझे कहता है कि नहीं एफ एंड बहुत डेंजर सेगमेंट है उसमें मत

0: एंटर
1: नहीं
0: कीजिए
1: नहीं
0: आप
1: बिल्कुल
0: अपना।
1: बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। और ये बहुत ही आपने बेसिक, कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारा हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष्य में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे, वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो FNO डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा या कैसे?
2: देखिए सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने FNO में पैसा गंवाया है, और पैसा अच्छा खासा गंवाया है। क्यों गंवाया है? क्योंकि FNO या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और बहुत ही परिपक्व निवेशक के लिए है, और ये दरअसल नकदी बाजार से सुरक्षा मुहैया कराने का एक माध्यम है। आप नए हैं, आप एक व्यक्तिगत निवेशक हैं, आप नकदी बाजार में जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करिए, जहां पर आपके लिए आपने पैसे दिए, आपने शेयर खरीदे, डिलीवरी ली, अगले कुछ समय में जब भी आप चाहें आप उसको बेचिए, आप अपना पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है। आप यदि कुछ ज्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा जिसकी आपको समझ नहीं है। दूसरी बात, जो FNO मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है? इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपया पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं। लेकिन वो 95 रुपया आप नहीं भी पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है, और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक है, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नगद बाजार एक बेहतर विकल्प।
3: लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉल, अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, इट्स टिग्रिशस विद अस फ्रॉम दिल्ली, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें।
4: हेलो जी।
3: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछें। जी सवाल पूछें।
4: तो बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक FD बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
2: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं, कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं, और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, याद रखिए, कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा, ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा।
3: पर शिशिर यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
2: नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे, और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं, तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते हैं ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था।
3: बिल्कुल।
2: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है। बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहें।
1: शिशिर जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम मैं उसमें से कितना पैसा कहां पर किस तरीके से डिवाइड करूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊं। हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: अमित जी सवाल पूछिए।
1: अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो
2: जी, सवाल पूछिए।
4: हाँ नमस्कार सभी को।
2: नमस्कार
4: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो है सर। हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
4: लेकिन सर हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट

0: सकती है, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके पूरे हैंड असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद
1: अमित जी। देखिए अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। देखिए अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहां पर जो कल पुर्जे हैं हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है। जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है और निर्भरता कम हुई है लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले दो से तीन वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कलपुर्जे और खासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी।
2: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार।
3: ये अभी मैं सुन रहा था किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है, आई एम सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं और काफी, और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है, बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
2: चलिए आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ, अब इनका सवाल जो था, क्योंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
2: प्रतिशत,
1: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं, तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप ATM से निकालते हैं, जब कोई कहता है ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम ATM कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाएं, अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30 से 40 साल से कम उम्र के हैं तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूंगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं, बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं, और फिर वहां पर जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि सुरक्षा है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं उनमें हम लगाएं, जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर यह हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं। तो एक हिस्सा अगर आप डाकघर की बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
2: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस, शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: सर नमस्ते मार्केट मंत्र टीम को।
2: जी,
4: इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन डॉलर, सॉरी रुपीस हैज डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट एंड इट बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। Is there any way or any other option available for retail investor like us? who can invest probably in dollar deposit under LRS scheme. LRS scheme में क्या dollar deposit हम लोगों के available है क्या Indian resident Indian taxpayer के लिए, क्योंकि ढाई लाख डॉलर बाहर भेज सकते हैं but share खरीद सकते हैं क्या, deposit हम दे सकते हैं क्या, so that we get the benefit of that higher interest, sorry lower interest rate but dollar appreciation.
1: नहीं देखिए ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती है, और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कह सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप यूएस में ही रख सकते हैं, और यूएस की जो नियमन है, यूएस की जो व्यवस्था है, उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगियां हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है वो आपको आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
2: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं, इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
5: Let's move on to the next story. Oil marketing companies have reduced the price of a 19 kilogram commercial LPG from today. After the price cut, the new price of commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
2: और पुणे से हमारे साथ कुमार जुड़ रहे हैं। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: जी गुड इवनिंग, नमस्कार।
1: नमस्कार
6: जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई नए पर्सन हैं और अगर हमको अच्छी तरह से सीखना है शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से करें, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख सके, जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो या डिलीवरी हो या इंट्राडे हो, ये हम किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अच्छी तरह से सीख के एक्सपर्ट हो जाए।
1: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात यह कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे, कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग एबीसी सीखना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे बीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के जो है वहां पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। सेबी की वेबसाइट पे जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पर पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
2: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए, ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स की मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें।
5: या दैट्स राइट प्राचीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज टू 2,11,205 crore rupees, marking a 15.4% year-on-year

बजकर 41 मिनट और 5 सेकंड और ये वक्त है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत की वो महफिल जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हैं आपके अपने इस पसंदीदा महफिल में। मैं हूं आपके साथ फेरोज, तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के यानी 1945 से लेकर 1965 और 68 के दरमियान के नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं और ये वो नगमे हैं जो अमर हो गए। इस महफिल में सबसे पहला नगमा फिल्म CID से। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी ये फिल्म आई थी 1956 में, जिसमें मुख्य किरदार में थे देवानंद, वहीदा रहमान, केएन सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को बेहद खूबसूरती से लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब और साथ ही साथ जानिसार अख्तर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, ये नगमा है फिल्म संगम से और यह फिल्म आई थी 1964 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर साहब, रणधीर कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, इफ्तिखार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, ललिता पवार, हरीश शिवदासानी और अचला सचदेव वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। पर मैं जो नगमा आपके लिए लेकर आया हूँ उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें हैं मुकेश और वैजयंती माला की।

संगम फिल्म का यह नगमा था मुकेश साहब और वैयंती माला की बेहद खूबसूरत आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत के इस बेहद खूबसूरत महफिल में, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और भी बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं। और अगला गीत एक ऐसी ही फिल्म से जो आई थी 1958 में, जिसका नाम था परवरिश। एस बैनर्जी के निर्देशन में बनी

फिल्म के लेखक थे एसएम अब्बास और सागर उस्मानी, और इस फिल्म के निर्माता थे महिपात्र शाह। इस फिल्म में राज कपूर साहब, माला सिन्हा, महमूद, नासिर हुसैन, ललिता पवार वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और मन्नड़े साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और बहुत ही खूबसूरत संगीत है दत्ताराम वाडेकर का।

इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद सुरभि रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने आज कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम

0: दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आज रात ही नरेंद्र बेरवाल पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के दमार थॉमस से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Viveka Smaraka, in Mysuru yesterday. The PM emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS and increasing medical seats as well. Delhi BJP yesterday lodged a complaint against leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. Independent MP Rajesh Ranjan, alias Pappu Yadav, SP MP Avdhesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting Hindu religious sentiments in the parliament complex yesterday. The BJP delegation led by New Delhi MP Bansuri Swaraj demanded registration of an FIR against the opposition leaders. Ms. Swaraj alleged that the opposition has mocked the

आकाशवाणी एफएम गोल्ड दिल्ली 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को कहीं छू जाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी क्षितिज, जिसे लिखा है शीतल शाह ने।

0: कुछ भी नहीं।
1: किसी शायर की इन पंक्तियों ने मेरा दिल छू लिया। कहां सुखाऊं तुम्हारी यादें, बारिश बाहर भी है और भीतर भी। उनके इस ख्याल के साथ मैंने अपनी बात भी जोड़ दी। ये तो जमी की फितरत है कि हर चीज सोख लेती है, वरना हमारे आंसुओं का भी एक समंदर होता। क्या मेरा नाम भी सोच समझ कर रखा गया था? अवनी, अवनी यानी जमीन, धरती, जो सब कुछ अपने में समा लेने की क्षमता रखती है।

अवनी कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करे, आकाश को छू पाती है भला, नहीं ना। ये सब मैं डायरी के पन्नों पर उतार रही हूँ। शायरी की बातों को अपना हमदर्द माना है और इन पहाड़ियों की बुलंदियों को अपना हमसाया।

हर रोज अपने कलम की स्याही के जरिए मैं अपने दिल के तूफान को बाहर उबरने का रास्ता देती हूँ, लेकिन आज उलझे से जज्बातों का सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। तभी दीवार पर घड़ी ने ऐलान किया, सुबह के 7 बज गए हैं। कैलेंडर पर नजर फेरी, आज का दिन तो बहुत खास है, 1 दिसंबर।

हर साल की तरह आज का दिन मैं बस अपने साथ बिताना चाहती हूँ। आज का हर लम्हा गुजरे जमाने का अक्स बनाकर अपनी रूह में उतार लेना चाहती हूँ। एक कामयाब करियर और बुलंद हौसलों वाली डॉक्टर दीदी हूँ ना मैं ऐसे किरदारों से अब दूर रहना चाहती हूँ और बीते 18 सालों में अपने अस्तित्व का हिस्सा बने उस मुखौटे को आज के दिन बस मैं उतार कर रख देना चाहती हूँ और बैठना चाहती हूँ आईने के सामने फुर्सत के साथ। साल के बाकी दिनों में ये मौका नहीं मिलता मुझे। क्षितिज पर सूरज के आने से पहले मैं अस्पताल के राउंड शुरू जो कर देती हूँ और बादलों में लुका छिपी खेल रहे चांद के आने के बाद ही वापस लौटती हूँ। अस्पताल में तो मसरूफियत ही रहती है। मरीजों को राहत देना ये मेरा पेशा नहीं जुनून है। और किसी शायर की नजरिए से कहूँ तो दर्द दिल की दवा में अपने किसी पुराने जख्म का मरहम ढूंढ लेती हूँ। जाहिर सी बात है ऐसे में मुझे न अपनी सांसों का एहसास रहता है न अपने दिल की धड़कनों की मौजूदगी का पता। 18 सालों से बस यही क्रम चलता है। सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सालों से यही रवायत रही है कि 1 दिसंबर का दिन मैं अस्पताल के पीछे बने यतीम खाने में बच्चों के लिए न्योछावर करती हूँ। वहाँ बच्चे भी शिद्दत से मेरा इंतजार करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट लंच और शाम के कल्चरल इवनिंग हम सब साथ रहते हैं, डांस सेलिब्रेशन करते हैं और बच्चों को डांस सिखाना तो सिर्फ बहाना होता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, जी भर कर नाचती हूँ। खुद भी बचपन में कथक सीखती थी लेकिन जिंदगी मुझे कहीं और लेकर गई। हालात ने कथक का शौक छीन लिया और मीठी मुस्कानों और चाशनी सी बातों से लबरेज ये दिन मेरे लिए मानो सहरा की तपिश में ओस की बूंदों जैसा राहत देता है। बात ये नहीं है कि उस नन्हे फरिश्तों को मेरी दरकार है बल्कि सच बताऊं मैं खुद ही इन यतीम बच्चों की मासूमियत में सुकून के पल जीती हूँ। हिमाचल की हसीन वादियों में बसा ये छोटा सा गाँव, ये अनाथल है, ये मेरा दूसरा घर था और पहला घर वो तो अस्पताल है ना। कस्बे के पहाड़ी लोगों से रूहानी रिश्ता बन गया था और ये लोग हैं मेरे लिए मेरी छोटी सी दुनिया। आज सुबह मैं जल्दी तैयार हो गई क्योंकि बच्चों के पास जाने से पहले केक भी तो लेकर जाना था। गौरी से पूछा, गौरी केक का ऑर्डर तो दे दिया था ना? हाँ दीदी केक तैयार है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। गौरी ने उठाया और जवाब में कहा, हाँ हाँ वो अभी यही है, जी देती हूँ। दीदी एमरजेंसी वार्ड से फोन है। कलाई पर घड़ी बांधते हुए मैंने रिसीवर उठाया। सामने से संदेश था, वार्ड में भर्ती युवती के सर पर चोट लगी है, खून काफी बह गया है। ड्यूटी डॉक्टर ने फोन करके सहायता के लिए निवेदन किया। मैम शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे कदम फौरन वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। सामने बेड पर बेहोश और लहू लुहान मरीज की ड्रेसिंग की जा रही थी। ड्यूटी डॉक्टर ने अपडेट देते हुए बताया, ये मेडिकल स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें भाग लेने आई थी ये युवती। सर और पीठ पर गहरी चोट आई और मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैंने नर्स से पूछा, साथ में कौन है? बताया गया कि 2 क्लासमेट्स हैं। मैंने युवती का चेहरा देखा और ब्लड प्रेशर नापना शुरू किया और स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा। पर ये क्या, एक पल के लिए लगा जैसे मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन रही हूँ। इस वक्त दिल में ये कैसी कश्मकश चल रही है। एक डॉक्टर की तरह तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही। आखिर क्यों इतनी जज्बाती हो रही हूँ? मैंने उस युवती की ओर ध्यान लगाने की कोशिश की। फिर ख्याल आया, इस वक्त तो मुझे बच्चों के बीच होना चाहिए था केक काटते हुए, पर मौके की नजाकत है, इस बच्ची का इलाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी मरीज की दोनों क्लासमेट्स वहां आ गईं। परी कैसी है? इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी फैमिली में कोई और साथ है? ये पूछते हुए मैंने ऑपरेशन के लिए निर्देश दे दिए। करीब 12 बजे तक ऑपरेशन करके बाहर आ गई। पहली बार इतने सालों में मुझे अपने हाथों में कंपन महसूस हो रही थी। क्यों इतनी नर्वसनेस हो रही थी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या उन बच्चों के पास जाने की इतनी तलब थी कि काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी? तभी इंटरकॉम पर गौरी को निर्देश दिया, प्लीज गौरी तुम केक बच्चों तक पहुंचा देना और ऐसा करना गिफ्ट्स भी ले जाना, मैं लंच तक वहां पहुंच जाऊंगी। वार्ड में जब मैं लौटी तो दोनों क्लासमेट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। मैंने पूरी जिंदा दिली के साथ कहा, नॉट टू वरी, शी वुड बी बेटर सून, थैंकफुली देर इज नो इंटरनल इंजरी। नर्स से मरीज की केस शीट मांगी और उन दोनों से पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहाँ से आए हो तुम? मैं पूर्वी और इसका नाम खुशी है, हम परी के क्लासमेट्स हैं, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ इंटर कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए हैं। परी को कथक डांस का बहुत शौक है और परफॉर्मेंस के वक्त जो ये टेम्परेरी स्टेज बना था ना, इसका हिस्सा गिर गया
और परी फिसल गई। तभी खुशी की इमोशनल आवाज सुनाई दी, आज परी का बर्थडे भी है, हम लोग तो उसको शाम को सरप्राइज पार्टी करने वाले थे। ओह, केशी ठात में ली। दोनों ने गुफ्तगू जारी रखी। डोंट वरी, शाम को आप यहीं पर हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं, बस इंस्टेड ऑफ केक आप उसे एंटीबायोटिक्स खिलाना। और आप अभी ऐसा करो, दोनों कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा लो, आपकी दोस्त को तो होश में आने के लिए समय लगेगा। इट्स ओके मैम, क्योंकि अंकल परी के पापा थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे, उनको साथ ही ले जाएंगे। ये बात कानों में जाए उससे पहले मेरी नजर मरीज की केस हिस्ट्री पर पड़ी। परी रायजादा, पिता का नाम आकाश रायजादा, जन्म तारीख 1 दिसंबर, और घर का पता, ओह माय गॉड, मुंबई। हाथों में कंपन, दिल में तूफान और आंखों में आंसुओं का सैलाब, मन में कश्मकश। ये महज इत्तेफाक है या गहरी नींद में गुजर रहा सपना या किस्मत का कोई बेहुदा मजाक?

0: अपनी दुविधा में जूझती हुई गला साफ किया और पूछा, वो परी के मम्मी पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया है ना?
1: यस डॉक्टर, सुबह ही अंकल को बता दिया था। इनफैक्ट वो तो यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे।

मैं बुत सी बैठी रही। तभी ड्यूटी डॉक्टर और नर्स आए, बोले, मैडम पेशेंट को होश आ गया है। किसी मरीज के होशमंद होने की खबर अमूमन मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, मानो बारिश की बौछार के बाद सूरज की लाली पाकर इंद्रधनुष सा खिल गया हो। लेकिन इस वक्त ये बात मेरे सीने में मानो कोई जलजला पैदा कर गई। नर्स के साथ आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम बोझिल सा महसूस हो रहा था। अंदर गई तो देखा सामने परी थी, पर दिल में उलझन थी। सामने लेटी मरीज, ये मेरा अतीत है या मेरा वहम? जिस मरीज के शरीर से बहता लहू मैंने रोका था, क्या यह मेरा खून है?

ड्यूटी डॉक्टर ने पैरामीटर चेक किए और परी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो बोली, आई एम फाइन। मैं बस उसको देखती रही, तय नहीं कर पा रही थी कि एक डॉक्टर की हैसियत से ड्यूटी अदा करूं या 18 साल पहले जिस ममता को दफनाने की कोशिश की थी ना मैंने, उस चिंगारी को हवा दूं, जिस बेटी को किस्मत ने बेरहमी से मुझसे छीन लिया था। क्या आज तकदीर उसे मेरे पास ले आई है? क्या क्या ये वही परी है?

क्या ये वही परी थी? सोचते हुए मैं बाहर निकली तो वेटिंग लाउंज में नजर डाली, सामने थे आकाश रहजादा मोबाइल पर किसी से बात करते हुए। 18 साल बाद भी उनका चेहरा पढ़ पा रही थी मैं। फर्क इतना आया था कि आकाश की गहरी आंखों के आगे अब चश्मे लगे थे।

इससे पहले कि हम दोनों की नजरें टकराएं, मैंने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का प्लेकार्ड लगा दिया। और उसके बाद न जाने कितनी यादों की बिजलियां ज़हन में एक साथ टूट पड़ी।

मेडिकल कॉलेज के वो दिन, आकाश, शियाना और मैं, तीनों के अलग मिजाज। मैं चुपचाप और पढ़ाई और करियर के लिए जान देने वाली, शियाना हलमस्त नामी गिरामी रईस खानदान की इकलौती वारिस। आकाश और शियाना स्कूल के दिनों से ही फैमिली फ्रेंड्स थे और कॉलेज में दोनों एक कपल के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वक्त वक्त के समीकरण बदलते हैं, कुछ घटता है तो कुछ जुड़ता है। उस दिन शियाना ने कहा भी, अवनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींच रही हो, देखो ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बदला लूंगी, शरारती अंदाज में उसने कहा तो कुछ सच सा झलक रहा था उसमें। वो मेडिकल कॉलेज का आखिरी साल था। आकाश ने उस दिन मेरी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर कहा था, पूछा था, अवनी बनोगी मेरी हमसफर, मेरी राह में हजार दुश्वारियां हैं, कामयाब डॉक्टर बनने का जुनून है मुझ पर तुम्हारा साथ पाकर मैं कुछ भी कर लूंगा। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में संजीदगी थी। उन आंखों में अपना अक्स देखकर कहीं खो सी गई थी मैं और नजरें झुकाकर हाँ कर दी थी। फाइनल परीक्षा के बाद हम विवाह के बंधन में बंध गए थे।

शियाना ने जब सुना तो बोला, अवनी तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का अपहरण कर ही लिया ना। और मैंने अपराध बोध में सर झुका लिया था। सासू माँ भी इस विवाह से खुश नहीं थी, घर में तनाव सा रहता था। मैंने बहुत कोशिश की, सोचा आकाश के लिए मैं समझौता कर लूंगी। समय बीता, उस शाम आकाश ने खबर सुनाई, उन्हें यूएस का वीजा मिल गया था। तुम जानती हो ना अवनी, ये यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सासू माँ ने तभी याद दिलाया, आकाश शियाना भी तो वही है ना। माँ, मेरे रिसर्च के काम का, मेरी स्कॉलरशिप का शियाना से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पर जा रहा हूँ। सासू माँ बोली, ओहो कोई बात नहीं, चलो पुराने दोस्त की कंपनी तो रहेगी। न जाने क्यों मेरे हाथ पर सुन पड़ने लगे थे और वहाँ आकाश वो बहुत खुश था, जोश और जुनून से तैयारी में लगा था, और मैं किसी और मोड़ पर खड़ी थी। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इधर मैंने एक नए जीवन की आहट महसूस की, मैं माँ बनने वाली थी। और उधर खबर पाई मेरे पापा को कैंसर था।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: दिल पर पत्थर रखकर आकाश के जाने की तैयारी की, उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी का वो मोड़ जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। मेरी नन्ही परी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और फिर प्रैक्टिस छोड़कर मैं गृहस्थी और बीमार पापा की देखभाल में जुट गई। इधर नन्ही परी और उधर अकेले पापा।

डॉक्टर ने उन्हें मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। मैं परी को सासू माँ के साथ छोड़कर मुंबई ले गई थी पापा को। वही पापा जिनकी उंगली पकड़कर चली थी मैं, उनका हाथ पकड़कर थेरेपी के लिए ले गई मुंबई। वो कसौटी का क्षण था। इस बीच आकाश आए थे यूएस से इंडिया। सासू जी बहुत बीमार जो थीं, हम दोनों ने बातचीत की और यही निर्णय लिया कि आकाश माँ और परी को लेकर यूएस चले जाएंगे। सोचा था बाद में मैं भी चली जाऊंगी। सोचा परी के पास तो उसकी दादी हैं, उसके पापा आकाश हैं, यहाँ मेरे पापा के लिए तो सिर्फ मैं ही थी।

आकाश सासुमा और परी को लेकर चले गए थे यूएस। ये बात 18 साल पहले की है। वो जमाना था जब ट्रंक कॉल और लैंडलाइन का दौर था। विदेश के लोगों से पत्राचार में भी लंबा वक्त लगता था। यूएस जाने के बाद आकाश के पूरे 2 खत आए थे, जबकि मैं हर सप्ताह उन्हें खत लिखती थी। मैंने ये सोचकर दिल को समझा लिया था कि वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, पर मैं तो एक माँ थी ना, नन्ही बेटी के लिए दिल मचल मचल जाता था। उस दिन मैंने फोन लगाया, सासू माँ से बात भी हुई, पूछा, मम्मी परी कैसी है? अरे मजे में है वो तो, शियाना और आकाश उसे थीम पार्क घुमाने लेकर गए हैं। ओह, तो शियाना भी थी वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ। और मैं यहाँ अकेली थी। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, प्लीज आकाश को मुझसे बात करने को कहो ना बेटी। अरे वो अपने किसी महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है, खत्म होगा तो फुर्सत से बात कर ही लेगा।

मैं मन महसूस कर रह गई। इधर पापा की थेरेपी का अंतिम सेशन चल रहा था। बहुत डर सा लगता था उन दिनों। आकाश को बहुत मिस करती थी। जी चाहता था उसके कंधे पर सर रख कर रो दूं।

अपने गुरूर को ताक पर रखकर फिर फोन लगाया। हेलो हेलो, हाँ अवनी। आकाश, मैंने पिछले दिनों तुम्हें कितना याद किया, कितने सारे कॉल लगाए, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। ओ सॉरी सॉरी अवनी, रियली आई एम गेटिंग वेरी लेट। शियाना नीचे कार में इंतजार कर रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और हम दोनों को कैलिफोर्निया के लिए निकलना है। सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक ओवरसीज कवर भेज रहा हूँ, तुम वो देख लेना, एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। ये कहकर आकाश ने फोन रख दिया और कुछ दिन बाद मुझे वो लिफाफा भी मिल गया। उसमें मेरे नाम $20,000 का चेक था, साथ में थे तलाक के कागजात। सब कुछ क्लियर हो गया था। प्यार नाम की एक पट्टी जो मेरे आंखों पर चढ़ी थी, वो पट्टी अब हट चुकी थी। मेरी खुददारी को इससे बड़ा तमाचा नहीं मिलता। मैंने फौरन फोन लगाया। सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी। मम्मी जी, मुझे आकाश से बात करनी है। क्या हुआ, पैसे कम लगे क्या? पैसे? वो चेक तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया है माँ, लेकिन ये तलाक के कागजात, ये कागजात कैसे? तुम्हें अगर बात करनी है तो वकील से करनी होगी। आकाश वो अब शियाना के साथ बसना चाहता है, यानी मेरा शक सही था। लेकिन परी मेरी बेटी, मुझे तो परी चाहिए। देखो अवनी, बच्ची की कस्टडी के लिए तुम्हें वकील से बात करनी होगी, यहाँ के कानून सब अलग हैं। वैसे भी बच्ची की कस्टडी का दावा करना बेकार है, क्या तुम केस का खर्चा झेल पाओगी? और माना परी की कस्टडी तुम्हें मिल भी गई, तो क्या तुम अपने बलबूते पर उसकी परवरिश कर पाओगी? क्यों आकाश की खुशियों के बीच आ रही हो, वो शियाना के साथ बहुत खुश है। मैं अचकचा कर रह गई।

इससे पहले कुछ बोलती लाइन कट गई थी और वो ही वो मनहूस दिन था जिसने पापा को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उस परिस्थिति का भी अकेले सामना किया था मैंने। पापा का मनपसंद गाना था

अब मैं बेटी का हक मांगना चाहती थी, जरूरत पड़े तो यूएस तक जाना चाहती थी। मैंने आकाश को फोन लगाया, किसी अमेरिकन व्यक्ति की आवाज थी। जवाब में पता चला कि आकाश रायजादा तो परिवार सहित कहीं चले गए हैं। वो लोग नए अमेरिकन किराएदार थे। वो लम्हा जब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार, ना प्रैक्टिस, ना नौकरी, ना पैसा। बेटी परी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सारे प्रयास विफल हो गए। फिर क्या करती? अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गई, पहाड़ों के आगोश में। वहां से अपने आप को संभाला।

छोटे से अस्पताल में मैंने अपने आप को भूलने की कोशिश की। वो दिन और आज का दिन, 18 लंबे साल बीत गए, पर आज उस लड़की को देखकर जैसे सब जिंदा हो गया। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। सामने आसमान के बदलते रंगों को देखती रही मैं, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। खामोशी के तालाब में जैसे किसी ने कंकड़ मार दिया हो। डॉक्टर अवनी रायजादा? अवनी? वो ही गहरी दिलकश आवाज जिसे सुनकर मेरे हृदय के तार गुनगुनाने लगते थे। सामने खड़े थे डॉक्टर आकाश रायजादा। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर लगा बरसों की प्यासी धरती पर ओस की बूंदें पड़ी हो जैसे। अवनी इस बार एक और कदम आगे बढ़ा। आकाश इतने पास थे कि कहां कहां नहीं तलाशा तुम्हें, हर शहर हर अस्पताल, और तुम यहां हो। तुम्ही ने तो वो कागज भिजवाए थे आकाश, माँ से मेरी बात भी हुई थी। ओह नो अवनी, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। ढलते सूरज की रोशनी ने आकाश की आंखों में तैरती बूंदों का पर्दाफाश कर दिया। अवनी कुछ भी कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मरने से पहले सब सच बता दिया था मुझे। सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और मेरा बदन कांप रहा था जैसे डाली पर सूखा पत्ता थरथरा रहा हो। अवनी, आकाश बोलने लगे,

मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे। काश उस समय ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ये दूरियां ना होती। लेकिन आकाश, तुमने मुझे ओवरसीज कवर भेजा था ना, उसमें चेक था और थे तलाक के कागज। अवनी, मैंने एक चेक पर साइन किया था बस, क्या किसी कागज पर मेरा साइन था? माँ माँ शियाना को पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि अवनी बार बार फोन कर कर पैसों की तंगी के बारे में कहती है, बहस करती है, बस इसीलिए वो चेक भेजा था तुम्हें। पर तुमने कहा था उसे पढ़कर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो तो तलाक के पेपर्स थे। नहीं अवनी, मैंने तुम्हें अपने रिसर्च और नए घर का पता और नंबर भेजा था। आकाश की बातों से बेबसी झलक रही थी। जब वापसी में तुमने तलाक के पेपर्स भेजे तो मैं टूट गया, बहुत गुस्सा आया था तुम पर। 10 साल पहले जब माँ की किडनी फेल हुई तो मौत सामने पाकर माँ ने सब सच सच बता दिया था। उसके बाद तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश की। माँ तुमसे माफी भी मांगना चाहती थी। सर्दी से मेरी आवाज थरथराने लगी। मैं तो अब परी को लेकर वापस आ गया हूँ इंडिया में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बदन कांपने लगा।

ठंड बढ़ गई थी। अपनी हो सके तो मुझे माफ कर दो, गलती मेरी भी थी आकाश। शियाना का नाम सुनकर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे कांपते हाथों को आकाश ने थाम लिया था। अपनी नूरानी रोशनी बिखेर कर सूरज ढल चुका था और क्षितिज पर अवनी और आकाश गले मिले।

0: ये थी कहानी क्षितिज, जिसकी लेखिका थी शीतल शाह।
1: निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती।
0: और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर

0: प्रति 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके छोड़ने पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई भविष्य पेंशन स्वीकृति तथा ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said, "The capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions." Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS, and increasing medical seats as well. Delhi BJP yesterday lodged a complaint against leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, independent MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, SPMP Avdesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting Hindu religious sentiments in the parliament complex yesterday. The BJP delegation led by New Delhi MP Bansuri Swaraj demanded registration of an FIR against the opposition leaders. Ms. Swaraj alleged that the opposition has mocked the faith of Hindus, ridiculed Sanatan culture and insulted the saint community during the protest held near the Makardwar of the parliament complex. Ms. Swaraj asserted that such actions would not be tolerated. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी की रफ्तार के बीच कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो दिल को सुकून दें और होठों पर मुस्कुराहट ले आए। कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमों की महफिल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपके बीच, और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, जहां हर धुन एक याद है, हर बोल एक एहसास, और हर गीत दिल के बेहद करीब है। तो आइए संगीत के इस खूबसूरत कारवां को शुरू करते हैं, और पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म है काली चरण, लता मंगेशकर की आवाज में।

मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो कभी एक ही जबान में नहीं बोलती, कभी आंखों से बात कहती है तो कभी खामोशी से जाहिर होती है, तो कभी ये मोहब्बत धड़कनों में उतर जाती है। रात की तरह, या ये कहा जाए कि चांदनी रात की तरह, प्यार भी धीरे धीरे दिल पर अपना उजाला बिखेरता है। और यकीनन जब दो दिल एक दूसरे को सच में महसूस करने लगते हैं तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं, एहसास बाकी रह जाते हैं सिर्फ। इन्हीं अनकहे जज्बात, मीठी तड़प और सच्ची मोहब्बत की खुशबू लिए पेश है एक नया, एक ऐसा सदाबहार नगमा जो सदियों से दिल को छूता आया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
0: हाँ।
1: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

गीत संगीत के कई सारे रूप हैं, प्यार के भी कई सारे रूप हैं। और जीवन में प्यार हो जाता है, कई बार वो प्यार पूर्ण होता है, कई बार अधूरा रह जाता है। वैसे देखा जाए तो हर गली सिर्फ एक रास्ता नहीं होती और हर चौबारा सिर्फ एक आंगन नहीं होता। वहाँ बचपन की हंसी, अपनों की आवाज़ें और अनगिनत यादें बसी होती हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ जगह हमेशा दिल में अपना घर बना लेती हैं, और जब वो यादें आती हैं तो मन भी उसी पुराने आंगन में लौट जाना चाहता है, जहाँ रिश्तों की गर्माहट और अपनापन देख कर हम बड़े हुए, या फिर वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करते थे। और इन्हीं खूबसूरत यादों और भावनाओं को समेटा जाता है कुछ गीतों में और नगमों में। कुछ गलियां और चौबारे ऐसे भी होते हैं जहां इश्क पनपता है, प्रेम पनपता है, भले ही वो पूरा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन होता तो वो प्रेम ही है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है प्रेम रोग।

0: कुछ मुलाकातें सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहती कि वे याद बनकर हर आने वाले दिन को खूबसूरत बना दें। कल की मुस्कान, एक नज़र और कुछ अनकही बातें आज भी दिल में वैसे ही महकती रहती हैं। कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। मोहब्बत की यही तो खूबसूरती है कि एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की मुस्कान बन जाती है। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं, मैं तमाम दिन का थका हुआ तू तमाम शब का जगा हुआ, ज़रा ठहर जाए इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी

0: हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके को छोड़ने पर विचार करें। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाज और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि शुभम जुएल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the 7 affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received the first installment of SDRF for the financial year 2026-27. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, technology partners and other stakeholders involved in conducting the examination. The flood situation in Odisha continues to remain grim, with the Mahanadi and its tributaries in spate posing a fresh threat to low-lying areas of Katak, Puri, Jagatsingpur, Kendrapada and Khorda districts. 10 downstream districts remain on high alert as Hirakud Dam continues releasing flood water through 22 gates. More than 8 lakh people have been affected, while over 2 lakh 7,

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप, दिल भी मिला के देखिए किसी से आप, मिलने को रोज तो मिलते हैं यूं तो सभी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।
1: आ जा के आ गई रुत।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अगला गीत आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, किस हुस्न का है हुस्न अदा किस अदा की है, अंदाज मुझसे और है दुश्मन से और ढंग, अंदाज मुझसे और है दुश्मन से और ढंग, पहचान मुझको अपनी पराई कजा की है, दुश्मन के घर से चल के दिखा दो जुदा जुदा, ये बांकपन की चाल ये नाजो अदा की है, ऐसा बना दिया तुझे कुदरत खुदा की है, किस हुस्न का है हुस्न अदा किस अदा की है।

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई सुरभि के साथ। जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया, पोशाक बहारों ने बदली, फूलों ने महकना छोड़ दिया, जब से वो समंदर पार गया, गोरी ने संवरना छोड़ दिया, और जब प्रेम इश्क मोहब्बत में ऐसी स्थिति आती है तो दिल बस यही पूछता है

जब सावन का मौसम आता है और पहली फुहार धरती को छूती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता बल्कि दिल का मिजाज भी बदल जाता है। भीगी हवाएं, बारिश की खुशबू और हाथों पर सजी मेहंदी जैसे कि मोहब्बत को एक नया रंग दे रही है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है प्यार की मिठास उतनी ही गहरी होती है। और जब सावन की रिमझिम में किसी अपने का साथ मिल जाए तो हर पल खूबसूरत बन जाता है। तो चलिए सुनते हैं इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

रात सुरमई में अब चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम गीत फिल्म का गीत, आवाज़ है अनुराधा पौंडवाल की।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और आप सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन

और FM गोल्ड पर आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त हमराही कार्यक्रम में युगल गीतों को सुनवाने के लिए। आवाज़ के साथ तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। साहिर लुधियानवी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, जब आपका कोई चाहने वाला आपके बिना रह नहीं पाता तो बेचैनी ऐसी ही होती है। काश इस दौर में भी आपकी भावनाओं को समझने वाले साथी ऐसे ही मिलें।

सच में जब दिल उदास होता है ना, तो कोई ना कोई ज़रूर आसपास होता है, चाहे प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई कण भी क्यों ना हो। आपने ये गीत सुना सीमा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और शारदा का गाया हुआ। गुलजार ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आंधी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ आपको सुनवा रहे हैं। गुलजार ने गीत को लिखा, संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।

दोस्तों, बहुत बार आप जो भी गीत सुनते हैं उसकी धुन पहचान कर या उसके बोल देखकर जान जाते हैं कि भाई तो इस फिल्म से था, और आपने सही पहचाना। प्यासा सा

वन फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। अगला गीत आप सुनेंगे मस्ताना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, मान लो अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको बहुत खुशी मिले, तो वो प्रतिक्रिया आपके चेहरे पर भी आएगी और आप कहेंगे वाह।

ससुराल फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। शैलेंद्र की बोल थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है FM गोल्ड, और FM गोल्ड में गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग, और कार्यक्रम चल रहा है हमराही। दोस्तों, बहुत बार आपसे कोई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनका साथ पाकर आप अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं, होता है ना ऐसा, और फिर उनका साथ छोड़ने का मन भी नहीं करता। कभी एक दिन ना मिले तो ऐसा लगता है पता नहीं कुछ अधूरा रह गया है।

सच में दोस्तों, जिनका साथ अच्छा लगे आपको उनका साथ छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कार्यक्रम में, यानी हम रही कार्यक्रम में आपको आखिरी गीत सुनवाने का। जुआरी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ गीत आपको सुनवा रही हूँ। आनंद बख्शी की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई

करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमरीका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता

और अब 4:10 और 55 सेकेंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों का आनंद उठाने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ, आपकी दोस्त वंदना चौक।

दोस्तों, वाकई में ही ये ज़िंदगी तो प्यार से चलती है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसा करते हैं। ये गीत आपने सुना सौतन फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। और अब अगली रचना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और अरुणिमा कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सफर फिल्म से, मन्ना डे का गाया हुआ, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: दोस्तों, बहुत सारे गीत हमारी ज़िंदगी में बहुत से संदेश लेकर आते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस तरह एक चींटी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन वो रास्ते को पा ही लेती है। और गीतों को सुनवाएंगे, पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सीता और गीता, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना, फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज है। राजा मेहती अली खान की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

और देखिए प्यार एक दिन हो जाएगा वाकई में ही दोस्तों, जब आप यूं ही प्यार बांटते रहते हैं और फिर प्यार हो ही जाता है। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम सब उस्ताद हैं फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, असद भोपाली की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और अरुणिमा। कार्यक्रम में गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

गीत गाता चल। इस फिल्म से आपने गीत सुना जसपाल सिंह की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। दोस्तों, हम आपसे पल भर के लिए बात करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी, और ऐसे ही जीवन में रिश्ते पल भर में दूर हो जाते हैं, और अगर मिठास हो तो पल भर में उन्हें नजदीक आके सब समय भी नहीं लगता।

कभी कभी इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मुकेश का गाया हुआ साहिर लुधियानवी का गीत था और धुन तैयार की थी खयाम ने। कार्यक्रम में अगली और आखिरी पेशकश आप सुनेंगे इस गीत के माध्यम से, मेरी जंग फिल्म से शब्बीर कुमार की आवाज है। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर आपको एक नया मकाम हासिल होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है।

दोस्तों, और इस जंग में हमें जीतना ही होगा। इसके साथ ही आज का रूनी माँ कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने बैठक में परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से कराने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक है। परीक्षा एक ही पाली में लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो जाएगा। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाज

पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लिम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश बघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में

दोस्तों सुबह हो चुकी है और अब कार्यक्रम भोर सुहानी। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चूक।

सच में कौन है किसी का सिवाय उसकी, और वो बैठा है सबका पालनहार। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में जावेद, आइए आपने रचना सुनी, और जावेद अख्तर की रचना थी और ए आर रहमान का संगीत। अगला गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं सुषमा श्रेष्ठ और साथियों के आवाज में। साहिल लुधियानवी ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

अरब अगली रचना पुकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और ए आर रहमान का संगीत। दोस्तों, ईश्वर के लिए कहना चाहूंगी कि तुझ पर ही तो भरोसा है, और फिर तूने कभी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियां भी आई, लेकिन तूने हमेशा अपने आप ही संभाला। तभी तो ये जीवन सौंप कर मन को धैर्य मिलता है।